0: Talks with Ketan.
1: Welcome back, Kira, Namaste, Sastrikal, Salam Alaikum Bula. Welcome back to Hummer Radio 104.2 FM and welcome to Lunchbox. Naya show, nayi jaan, nayi baatein, naye damdaar gaane. बस प्यार वही सेम जो हम पे मिलता है आपको हमेशा 104.2 FM के जरिए आप हमें सुनते हैं, रोवा ऐप के जरिए भी हमें सुनते हैं, नहीं सुनते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? स्पेस, साइज, डेटा, ये सब तो छोटी छोटी बातें यार, एंजॉय करिए हमें रोवा ऐप पे कहीं भी अगर मुझे इंडिया जाना है, मुझे स्टिल हम सुनना है तो मैं रोवा ऐप के जरिए कहीं भी कभी भी सुन सकता हूँ एज लॉन्ग एज मेरे फोन में डेटा है। डेटा तो चाहिए ना भाई यार, लेकिन आजकल टाइम ही ऐसा आ चुका है दैट यू विल गेट डेटा एवरीवेयर। चाहे आप मॉल जा रहे हो, चाहे आप कहीं और जा रहे हो, यू कैन लिसन टू अस एनी टाइम, यू कैन एक्सप्लोर द फीचर्स जो रोवा ऐप में होते हैं, उसके बारे में और भी बात होगी। बट यस, मेरा नाम केतन है और बने रही अभी से लेकर 3 बजे तक बहुत सारी बातें होने वाली है। तो एक से बढ़कर एक दमदार गाने चलेंगे, दिल धक धक करता है। राज बर्मन एंड साक्षी होलकर की आवाज से पहला गाना हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद अलीशा शिनॉय, यू नो हु इज शी, ऑफ कोर्स बहुत ही ओजी फीमेल सिंगर है अलीशा शिनॉय, काफी इन्होंने पॉप गाने दिए हैं, तो यस वो चलाता हूं, एंजॉय करें मेरे साथ आज के दिन, ट्यूजडे इट इज। बट प्यार बरकरार,
0: बचाओ क्या

भांग रहा बिस्तर, अलीशा चिनॉय की आवाज में सुनील चौहान ने भी अपनी आवाज दी है इस गाने में। पर चलिए, होम सिक रेमेडीज के लिए फोन लाइंस ऑन हो चुकी है। यूजुअली मैं इनमें ज्यादा यू नो रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ टू कॉल मी, बट यस आई वांट यू टू कॉल मी नाउ 0800-004-86 पे और बताइए कुछ ऐसी चीज जो सच में आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मैं एक्चुअली पता है क्या है, एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, वो है मेरी मम्मी के हाथों के गट्टे की सब्जी। बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ, लाइक लिटरली। आई नो यहाँ पे है काफी रेस्टोरेंट है यहाँ पे जो गट्टे की सब्जी बनाते हैं, बट वो काफ़ी इवॉल्व हो चुका है अकॉर्डिंग टू यहाँ के जो लोगों को केटर करना, बिकॉज आई एम श्योर जितना मैंने सुना है नॉट एवरीवन लव्स गट्टे की सब्जी। मोस्टली इट वुड बी समवेयर अराउंड, हो सकता है राजस्थानी एंड देन सम ऑफ यू नो गुजराती, दे लव इट। बट ऑनेस्टली मेजॉरिटी केसेस में मैंने ना ही सुना है व्हेनेवर आई हैव आस्क्ड कि यार वहाँ चले क्या, उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में गट्टे की सब्जी मिलती है, बट दे जस्ट सेड नो। सो या दैट्स वाई यू नो माय अंडरस्टैंडिंग विथ व्हाट आई हैव आस्क्ड पीपल, और उसके बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि गट्टे की सब्जी माइट बी जस्ट फेवरेट फॉर राजस्थानीज और गुजरातीज। यहाँ पे है कोई जिसे पसंद है गट्टे की सब्जी? और अगर ऑफकोर्स उसके अलावा अगर और कुछ आप मिस करते हैं यहाँ पे तो बताइए क्या वो ऐसी चीज़ है, इवन दो यू हैव द ऑप्शन ओवर हियर बट यू डोंट गेट द सेम टेस्ट ओवर हियर। सो यस, मुझे बताइए, आप कॉल करिए 0800-004-86 पे और मुझे बता सकते हैं आप। आई बी वेटिंग यार, एक्चुअली आई बी वेटिंग बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया, किसी से बात नहीं हुई है। कुछ मैसेजेस आए हैं मीनवाइल, तब वो पढ़ लेते हैं। देव भाई कहते हैं आई मिस रोड साइड चाय स्टॉल्स, टी ऑलवेज टेस्टेड बेटर। भाई यहाँ तो वो पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे तो भाई ट्रैफिक ही जाम हो जाएगा, बट देर आर फ्यू प्लेसेज ओवर हियर जहाँ पे आप जाके, और यू नो आई एम नॉट श्योर कौन सी साइड आप रह रहे हैं। अच्छा पापोगुरा वहाँ पे भी तो है शायद, आई थिंक काफ़ी फूड ट्रक्स हैं वहाँ पे जो शायद देते होंगी चाय, वहाँ पे ट्राई कर सकते हो आप। बट अगर आप नए हैं तो लेट मी जस्ट रिक्वेस्ट माय लिसनर्स कि अगर आप पापाकुरा में रहते हैं तो कहाँ पे है वो यू नो फूड ट्रक, तो आप मुझे बता दी ताकि मैं इन भाई साहब को, देव भाई साहब को मैं ये बता सकूँ कि पापाकुरा में किस जगह एग्जैक्टली मिलता है। अंजलि कहती है माई होम सिक रेमेडीज मेकिंग मम्स दाल रेसिपी एवरी वीकेंड। दैट्स सो क्यूट। राकेश भाई कहते हैं हेंडरसन से आई मिस फैमिली पिकनिक्स वेयर एवरीवन ब्रॉट वे टू मच फूड। ये पॉइंट है बिकॉज बाकी चीज तो क्या है जैसे तैसे करके हो सकता है, लाइक चाय और ये कवर हो सकता है, बट फैमिली पिकनिक पे जाना एंड देन यू नो सभी खाना लेके आना, वो चीज़ तो ऑब्वियसली यार वो मतलब बहुत ही मिस करेंगे। अभी देव भाई का वापस मैसेज आया, आई हैव बीन लिविंग इन पापाकुरा सिंस लास्ट 11 इयर्स एंड देयर आर फ्यू ट्रक्स बट दे डोंट टेस्ट लाइक इंडियन चाय स्टॉल्स। रियली मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो ऑफ कोर्स आई कांट जज और आई कांट टेल, बट यहाँ पे है कोई जो कहेगा बताएगा मुझे कि पापाकुरा में सबसे बेस्ट चाय कहाँ पे मिलती है, अगर वहाँ पे मिलती है तो, अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, बट ऑब्वियसली मिलती तो है क्योंकि तो वही देव भाई बोल रहे हैं कि मिलती तो है बट इट डजंट टेस्ट लाइक इंडियन चाय स्टॉल्स। सो यस, मुझे मैसेज करिए 5599 पे और बताइए इफ यू नो एनी परफेक्ट प्लेस टू लेट हिम गो एंड ट्राई ओवर देयर। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हम कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
5: The meatbox.co.nz, the meatbox. That's what I said. I don't want anything else instead. The meatbox.co.nz.
6: The meatbox delivers restaurant quality meat right to your door. And in July, all purchases go in the draw to win free meat for a year. That's a prize worth over $5,000. T's and C's apply.
5: The meatbox.
6: TheMeatBox.co.nz. Fresh meat delivered fresh to your door.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
8: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... Now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
9: Contact supportive promo not applied. T's and C's and fees apply.
10: And then Mrs. Singh se maine pucha, "Enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho?" Boli, "Bas, mera focus hai."
11: "Achha,
10: batao. Tuhanda focus. Sada kuch nahi."
11: Mrs. Singh.
12: Arey Pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne.
13: Modern classic chic style kitchens. Focus Kitchens, Unit K 33 Wansley Road, Otahuhu. Call 0928130500 or visit focuskitchens.co.nz.
14: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
15: Lunchbox with Ketan.
16: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
15: Hum. Office shout out.
17: चलिए आज किसी ऑफिस की शाउट आउट करते हैं यहाँ पे. सो यस, इफ यू आर हैविंग लंच, ब्रेकफास्ट नहीं, लंच अगर आप कर रहे हैं, अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कहाँ आप कर रहे हैं लंच. तो यहाँ पे यू नो वी गोना टॉक अबाउट कि आपने कहाँ लंच कर रहे हैं, कहाँ से ऑर्डर किया है, वेदर इट इज़ फ्रॉम होम और समवेयर आउट. आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं. 0800-004-866 इज द नंबर. चलिए फोन उठाइए और वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेल मी अबाउट योर ब्रांड. अगर आप अपने ऑफिस में खा रहे हैं तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं यहाँ पे 0800-004-866 पे आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं. बट यस, हियर इज द थिंग, कुछ मैसेजेस आए हैं मुझे. दे आर ऑलवेज ऑन टाइम, लाइक यू नो उनको पता है कि क्या बात यहाँ होने वाली. जैसे कि बर्थडे ग्रीटिंग्स हैं, ये भी आ जाते हैं. किसी का कॉल आ रहा है, उठा लेते हैं. Hello. Hi Priya, how are you? Hello. अरे फोन ही कट गया. Anyways, चलिए वापस इनका फोन आता है तब तक मैसेजेस पढ़ लेते हैं. Office today bought a kebab for lunch. My favorite cuisine is Turkish. इमरान ने ये मैसेज किया है माउंट रसल से. थैंक यू सो मच इमरान भाई. अंजलि का मैसेज आया है, वर्क फ्रॉम होम टुडे, मम मेड राजमा चावल फॉर लंच, माय फेवरेट कुजीन इज इंडियन. ईथन ने मैसेज किया है, डैड पैक्ड सुशी फॉर मी, माय फेवरेट कुजीन इज जापानीज. वाओ यार, मेरे को ट्राई करना है जापानीज खाना, मैंने कभी ट्राई नहीं किया. व्हाट इज दैट वन थिंग जो ऑब्वियसली वेज में सबसे बेस्ट होती है जापानीज का, कि ये तो खाना ही चाहिए. प्लीज डू लेट मी नो. यहाँ पे आई नो दैट मेनी पीपल हैव मस्ट हैव ट्रैवल टू जापान एज वेल, और मे बी दे मस्ट हैव विजिटेड टू जापानीज रेस्टोरेंट एज वेल. तो आप मुझे बताइए. मैंने थाई खाया है, थाई का मेरे को स्टर फ्राई बहुत ही पसंद है. लाइक लिटरली आई एम लाइक, किसी भी दिन यू आस्क मी आई विल बी ओपन फॉर दैट. यस, बट आप मुझे बताइए जापानीज का सबसे गुड टू गो वाला फूड कौन सा है, लाइक यू नो विच आई शुड ट्राई और अगर कोई सवाल भी हो तो मैं यू नो डायरेक्टली कि दिस इज यार ये खाना तो खाना ही पड़ेगा ऐसा, बट ऑब्वियसली वेज में ऑप्शन बताता हूँ. आई नो इट माइट बी बिकॉज मैंने सुना है कि शायद वेज ऑप्शन जो होते हैं उनके पास बहुत कम होते हैं, बट आप मुझे बताइए. 5599 पे टेक्स्ट भेज सकते हैं. उनका कॉल तो वापस आया नहीं है जिन्होंने कॉल किया था, बट कुछ आवाज़ नहीं आई. प्रिया नाम था उनका. जी हाँ, वो इसलिए ऑफकोर्स उन्होंने बोला था बट आगे कुछ बोल नहीं पाए वो. सो यस, आप मुझे बताइए. 5599 पे टेक्स्ट भेजिए और बताइए कि द बेस्ट थिंग टू ट्राई फॉर जापानीज फूड क्या होगी मेरे लिए.
14: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, कोई कॉल कर रहा है थोड़ी देर में नहीं उठा ही लेता चलिए हेलो
1: हेलो हाय इज दैट केतन
0: यस स्पीकिंग एंड यू आर लाइव ऑन एयर राइट नाउ
1: हाय केतन ओ आई एम कॉलिंग बिकॉज मैंने आपका वीडियो देखा
0: Oh, okay, okay.
1: Sapphire 2.0 on YouTube.
0: Haji, haji.
1: And I'm just calling to say how I'm in awe of the video and the way you've sung and picturized it. It is simply beautiful.
0: Oh, wow. Thank you.
1: So, very, very, very well done.
0: Thank you
1: मेरा
0: so
1: नाम
0: much.
1: है श्वेता
0: श्वेता जी
1: एक्चुअली मेरा बेटा भी आपके वीडियो में है
0: Oh, really?
1: He is part of the खोटे सिक्के group.
0: Oh, cool.
1: जो ऑकलैंड डोमेन में सो देयर वर टू बॉयज इफ यू रिमेम्बर वन वॉज विहान एंड अदर वन वॉज समीर
0: राइट
1: सो समीर इज माई सन एंड वी हैव बीन वेटिंग टू सी द वीडियो और अभी हमने देखा एंड आई एम जस्ट कॉलिंग टू से दैट इट इज अमेजिंग very very well done and I wish you a very very bright future ahead
0: thank you so much you actually made my day but please do share with family friends
1: I've already done with my immediate family and I hope to share it on Facebook and Insta and everywhere
0: perfect thank you so much thank
1: awesome.
0: You so much
1: thank you All thanks right. Ketan for making Shabani. The video
0: thank you
1: bye
0: wow I wasn't expecting that, but thank you, Shweta ji ne mujhe call kiya aur ye batane ke liye that the video has been so good. So please, agar aap bhi aapne bhi agar nahi suna hai, to aap jaiye. Main apna gaana chalaunga thodi der mein yahan pe bhi. But aap jaiye YouTube pe, aap Sapphire 2.0 search kar sakte hain. Sapphire 2.0 Ketan ke naam se ya fir इवन अगर आप सिर्फ केतन कुमार भी नाम सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वो भी आ जाएगा बट आई एम प्रिटी श्योर यार आपको बहुत पसंद आएगा काफ़ी मेहनत हुई है एक साल की मेहनत उस गाने के पीछे सो या शी एक्चुअली मेड माय डे बट यस जो मैं बात बताने वाला था वो था 14 जुलाई 1853 को आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ मैं आज के दिन न्यूजीलैंड की पहली जनरल इलेक्शन जो है वो शुरू हुई थी सबसे पहले हग कार्लटन बिना किसी अपोजिशन के रसल बे ऑफ आइलैंड से इलेक्ट हुए थे और उस टाइम ट्रैवल और इलेक्शंस ऑफिशियल की कमी की वजह से इलेक्शन एक ही दिन में नहीं हुआ पूरी इलेक्शन प्रोसेस लगभग 2.5 महीने तक चली और इस इलेक्शन में 37 मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 6 प्रोविंशियल सुपरिटेंडेंट्स और 87 प्रोविंशियल काउंसिल्स मेंबर्स इलेक्ट किए गए हर जगह पब्लिक इंटरेस्ट अलग था कुछ एरियाज में इलेक्शन शांत रहा जबकि ऑकलैंड में प्लेसेस में काफी कंपटीशन और करप्शन के एलिगेशन भी लगे और ये इलेक्शन न्यूजीलैंड की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की शुरुआत थी और नए एमपीज ने अपने पहले पार्लियामेंट मीटिंग 1854 में ऑकलैंड में की थी जी हाँ तो ये थी हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड बताएंगे सो मच अभी आप बने रहिए बिकॉज मैं अपना भी गाना चलूंगा बट अभी हाल फिलहाल तो एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना जिसका नाम है आज के बाद

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Bro, तू वेस्ट सिटी GWM हैवेल गया था क्या?
2: हाँ भाई, जिमी टेलर और टीम ने फुल रॉयल ट्रीटमेंट दिया। जूलियन हाइब्रिड, क्लासी, H6 हाइब्रिड, बॉस लेवल और टैंक 300, टोटल बीस्ट। डील क्या मिला? 4.95% फाइनेंस डील और वो भी सिर्फ वेस्ट सिटी GWM हैवेल में।
3: जिमी टेलर और टीम के साथ पाओ अपनी नेक्स्ट एडवेंचर मशीन। विजिट वेस्टगेट या हेडिसन शोरूम या चेकआउट westcityautogroup.nz। वेस्ट सिटी GWM हैवेल, वेयर नेक्स्ट एडवेंचर बिगिंस।
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: Parents, I see you. You need to make a quick pop to the shops. Then boom! One kid has a last minute birthday invite, another kid has gum in their hair, and you've got work calls up the wazoo. That quick trip to the shops? Not happening. Don't go out. Tap in. Get prezzies, cards and hair stuff from the warehouse, and dinner from your local, delivered to your door with DoorDash. Now that's a good call. Dash!
7: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
8: Please use your imagination for the following ad.
9: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by
8: imagine winning $28 million this Wednesday. Play in store or online.
10: Lunchbox with Kathan.
11: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
12: चटनी शॉट्स.
13: चटनी शॉट के सेगमेंट में आपका स्वागत है. यहाँ पे हम फटफट से कुछ न्यूज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है सामने, उस पर थोड़ी नजर डाल देते हैं. वेल, ये वो खबर है

ट्रबलिंग इन्वेस्टिगेशन का उसको फेस कर रही है, लेकिन इसकी वजह से सेल्स काफी गिर चुकी है। देव लिटेले ने कहा है कि उनका मेन गोल है 35 एम्प्लॉयज की जॉब बचाना और कंपनी को उसका ट्रस्ट फिर से जितवाना। उन्होंने बताया कि सबसे पहले वो स्टाफ, सप्लायर्स और कस्टमर से मिलकर प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर कंपनी को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव भी करेंगे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पर कमेंट करने से मना किया है, लेकिन कहा कि अगर गलतियां हुई है तो उन्हें ठीक भी किया जाएगा। ये उनके लिए सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि लोगों की लाइवलीहुड बचाने का एक बहुत ही बढ़िया मिशन है। दिल्स

0: चेतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगी ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हालचाल, 18 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10% चांस दिखा रहा है वैसे तो, बट 8 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला, सनसेट होगा 5:23 पीएम पे, लेकिन यस इवनिंग में आप थोड़ा सा क्लाउड फॉग एक्सपेक्ट कर सकते हैं।

नमस्ते सस्त्रीकाल सलाम वालेकुम, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत अंगे खूबसूरत शो में, लंच बॉक्स शो जिसका नाम है वेल यस बातें और भी होने वाली है, बट यस जस्ट टू रिमाइंड यू दैट आप रोवा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू आप बहुत सारा कंटेंट जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। साथ में एक और खास बात यह है दैट आप AI स्पेशलिस्ट जो हमने रिकॉर्ड किया है पॉडकास्ट दर्शित पांड्या, मीन वाइल इफ यू आर ड्राइविंग तो आप बस मुझे ड्राइव टेक्स्ट भेज दीजिए बिफोर यू ड्राइव, और या फिर अगर आपके फोन में AI है तो जस्ट आस्क यू नो द AI असिस्टेंट टू जस्ट सेंड अस द टेक्स्ट ऑन 5599 जहाँ पे ड्राइव लिख के भेज दीजिए हमें, और आपको एक लिंक मिल जाएगी, वो लिंक बेसिकली पॉडकास्ट है रिगार्डिंग AI एजुकेशन को लेके कि कैसे आप AI को यूज करके यू कैन मूव फॉरवर्ड, यू कैन ग्रो योर बिजनेस, यू कैन हेल्प इन मेनी वेज। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको या तो एक्स्ट्रा टाइम फिजूल का खर्चा करना पड़ता है या फिर आपको यू नो यू नीड टू पे समवन फिजिकली, बट यहाँ पे आई नो जॉब्स का ये है कि दैट ऑफकोर्स यू गोना टेक समवन जॉब, बट एक तरह से अगर देखें तो जॉब जो है उन्हीं की जाएगी जो AI से परे हैं, यानी कि अगर आपको AI की नॉलेज है तो डेफिनेटली इट गोना बी अ वेरी गुड प्लस पॉइंट जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे जॉब्स या फिर जहाँ पे भी स्विच करने का सोच रहे हैं। सो ये पॉडकास्ट जो है आप डेफिनेटली सुनिए। ChatGPT Gemini के अलावा भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं जहाँ से जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं फोटो या वीडियो के बियॉन्ड। जी हाँ, सिर्फ फोटो वीडियो को ही एनहांस करना इज नॉट द AI थिंग, एक्चुअली हाउ यू कैन हेल्प यूजिंग AI अपने बिजनेस में लेके अपने जो यू नो ईमेल्स होती हैं वो सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल आप हैंडल करवा सकते हैं। सो 5599 पे ड्राइव लिखिए, लिख के हमें भेज दीजिए, एंड यस आप उसके साथ और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे कि बिट्स एंड कन्वर्जेशन बाय विजय एंड पूजा, उनका भी ब्रेकफास्ट शो में जो भी कन्वर्जेशन हुई है उसको सुनना है तो आप हमें BF लिख के 5599 पे भेज सकते हैं। बचाओ क्या

0: स्वागत करता हूँ फिर से बेलियस। अभी आप लंच टाइम रेंट लाइन के लिए मुझे मैसेजेस भेज दीजिए यहाँ पे। बेलियस मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ कि द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं यहाँ पे ऑकलैंड में फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं बहुत सारी एक से बढ़कर एक कवालीज, कुछ सूफी गाने एंड ऑफ कोर्स एक से बढ़कर एक बॉलीवुड और अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री के गाने जो उन्होंने गाए हैं अपने पूरे लाइफ एक्सपीरियंस में। वेल यस, द ट्रस्ट एरिना ऑकलैंड में होने वाला है 25 जुलाई को, प्रेजेंटेड बाय JK Star Productions, Goat Live, Dreams Entertainment, Simran Productions and Shehzada Production. टिकट जो है आप खरीद सकते हैं dryticketscom पर जाकर, dryticketscom पर जाकर आप टिकट खरीद सकते हैं। बट यस, लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आप मुझे 5599 पे टेक्स्ट भेज दीजिए।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा, Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.

0: नंबर यार.
1: क्यों, क्या हुआ?
0: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
3: What if your next holiday wasn't just a holiday,
2: but the adventure everyone talks about?
3: Imagine chasing waterfalls,
2: wandering lush rice terraces,
3: catching unforgettable sunsets,
2: and relaxing at iconic beach clubs.
3: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
2: discovering incredible temples,
3: tasting world-famous street food.
2: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.

0: sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūruki. All together, Auckland.
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: लंच बॉक्स विद केतन।
5: मुझे पसंद है लड़का।
4: हम Lunchtime Rantline.
6: Welcome back. You are listening to Lunchtime Rantline के सेगमेंट में स्वागत करता हूँ. लंच बॉक्स इट इज. वेल यस, कुछ मैसेज आए. आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके भी बता सकते हैं इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर थिंग जो आपको इरिटेट की हो मीन वाइल. सो यस, आप मुझे कॉल कर सकते हैं. बट यस, अभी के लिए कुछ मैसेजेस हैं, उन्हें पढ़ लेता हूं मैं. वेल यस, कैन वी रेंट अबाउट पीपल हु स्टार्ट पैकिंग देयर बैग्स बिफोर द प्लेन हैज इवन स्टॉप्ड. रिलैक्स, द डोर इज नॉट ओपनिंग एनी फास्टर. ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट विथ अस, बट एक्चुअली ये देखा है मैंने, काफ़ी लोग होते हैं जो सच में जैसे खड़े हो जाते हैं, जैसे उनको रश है, रश है, रश है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाद में निकलने को नहीं मिलेगा. अरे भाई, थाम जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? प्लेन में वैसे आप जल्दी आए हो, इससे तेज अगर जाना है तो फिर तो रॉकेट में ट्रैवल कर लो. बट यस, सेकेंड मैसेज आया है मोहन का. वो कहते हैं, I want to ask a question to those who keep saying I'm almost there when they are actually still getting ready at home. ये भी बहुत ही बड़ा सवाल है, पूरी, मैं तो कहता हूँ पूरी you know community को पूछना चाहिए. What community? ये तो आप बताओ. मेरे को लगता है कि हर एक community में, हर एक you know country में इस तरह के लोग हैं जो सचमुच इस तरह का जो plan है वो use करते होंगे. जो बोलता है बस बस बस बस आया मैं, दो मिनट दूर, बट एक्चुअली वो घर पे ही है. जैसे कि आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, लेकिन मेरे वीडियो में तो उल्टा हुआ है. मेरे वीडियो में मैंने बोला बस 5 मिनट में आया, लेकिन एक्चुअली मैं 2 सेकंड में पहुंच गया. तो ये होना चाहिए टैलेंट. इस तरह का अगर टैलेंट आपके पास हो तो मुझे बताइएगा. बढ़िया, अगर आपको नहीं पता मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देखिए. हम पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक आर्टिकल भी शेयर किया है और वहीं पे आपको मिल जाएगा. अगर नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे जाके सफायर 2.0 केतन ये सर्च करिए और आपको वीडियो मिल जाएगा. स्टार्टिंग में ही है कि मैं मनप्रीत भाई को कहता हूँ फोन पे बस 5 मिनट में आया, बट एक्चुअली मैं 2 सेकंड में पहुंच जाता हूँ. एक और मैसेज आया अभी जस्ट, वो कहते हैं व्हाई डू सम पीपल रिटर्न बोरोड थिंग्स ओनली आफ्टर यू आस्क देम 3 or 4 times, इफ इट्स नॉट योर्स जस्ट गिव इट बैक. ये 3-4 नहीं, ये तो बहुत बार हो सकता है. 3 or 4 times नहीं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है. बट टोटली मेक सेंस यार, आज के जो भी रिस्पॉन्स आए, एक्चुअली आई कैन रिलेट बिकॉज आई हैव ऑल्सो फेस्ड एंड वन ऑफ द थिंग मैंने भी किया है. सो यार, बट यहाँ इनमें से कोई अगर आपने किया है तो मुझे बताइए, और या फिर अगर आप भी फेस कर रहे हैं ये सिचुएशन तो मुझे बता सकते हैं आप 5599 पे. बट कॉल करते तो अच्छा होता है, कॉल पे सुनना, कॉल पे समझना is very nice, like it's good to talk to you ऐसे possibly like face to face तो नहीं, but हाँ voice to voice.
4: Lunch ke munch pe
7: hoi hoi hoi hoi,
4: top hit of the hour brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

0: चलिए बात करते हैं एक लेटेस्ट खबर की सोलर एनर्जी, यानी कि आप अगर अपने घरों के ऊपर सोलर लगाते हैं, सोलर पैनल, तो उसके बारे में न्यूज़ आई अभी जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। सोलर ज़ीरो के कई कस्टमर्स अपने 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर परेशान हैं। कंपनी 2024 में लिक्विडेशंस में चली गई थी, लेकिन कस्टमर्स को कॉन्ट्रैक्ट अब भी SZ सर्विस के थ्रू चल रही है। कुछ कस्टमर्स का कहना है कि उनके प्रॉमिस्ड लो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके मंथली पावर बिल्स काफी इंक्रीज हो चुके हैं। कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट से बेहतर बाहर निकालने के लिए हजारों डॉलर्स देने को बोला गया है, और घर बेचना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करना पड़ता है। यूटिलिटीज डिस्प्यूट्स को सोलर जीरो से जुड़ी कंप्लेंट्स में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और SZ सर्विसिंग का कहना है कि प्राइस चेंज कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और मार्केट कंडीशन के हिसाब से किए गए थे, और वो अफेक्टेड कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? अगर यहाँ पे है कोई तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी टिप्पणी वहां पर। बस यस, एक अपडेट मैं लेके आया हूँ अलीज फार्म के बारे में। जी हाँ, अगर आप फ्रेश क्वालिटी हलाल मीट देख रहे हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल और अनबीटेबल प्राइसेस में मिल रहा है, जी हाँ, तो आपको पता ही है अलीज फार्म ऑकलैंड और अबेटोय और बुचर काफ़ी ट्रस्टेड वाले हैं। सो यस, लाइसेंस भी उनके पास डेफिनेटली, तो आप खरीदिए उनके वहाँ पे जाके। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल प्राइसेस में मिल रहा है। होल गोट आपको मिलेगा सिर्फ 15 डॉलर पर किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा। स्प्रिंग लैम्ब कर्केसेस आर 17.5 पर किलोग्राम। शीप ओवर 30 किलोग्राम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ साढ़े बारह डॉलर पर किलोग्राम है, और सभी मीट हलाल सर्टिफाइड है यहाँ पे। जी हाँ, और MPI के हिसाब से इन्होंने सर्टिफाइड प्रोसेस भी किया है, और एज होल ये बेच भी रहे हैं होल केयर केसेस के साथ। जी हाँ, तो अगर आपको कुछ और भी चाहिए, जैसे कि अगर आपको कटिंग करवानी है, कटिंग करके करीब पीसेस के हिसाब से चाहिए, तो वो भी वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई ओवर देयर, बट अगर आप जाना चाहते हैं तो 1319 एल्फ्रिस्टन रोड एल्फ्रिस्टन पे पहुंच जाइए, 1319 एल्फ्रिस्टन रोड एल्फ्रिस्टन में, या फिर उन्हें कॉल कर दिए 0275311175 पे।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: हाँ।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
4: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Earn Pro Reward dollars on eligible items to redeem off future purchases. The more you spend on qualifying items, the closer you get to that next level of rewards. Unlock tiered benefits to access fuel discounts with mobile card. Plus get exclusive member gifts, offers and loads more. Minimum spend limits and exclusions apply. See website for eligibility and all T's and C's. Sign up to PowerPass Pro Rewards today.
5: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
6: Sorry about that.
5: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
7: Please use your imagination for the following ad.
8: If I won Powerball, the first person I'd tell would be... and would surprise all our friends by...
7: Imagine winning $28 million this Wednesday. Play in store or online.
9: The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
10: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
11: Lots.
10: Will their word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
11: Probably.
10: Am I paying for this free coffee?
11: Definitely.
10: Will they talk me into an upgrade?
11: Oh.
10: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
12: True Midas.
13: Lunchbox with Ketan.
14: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
13: इसके पीछे
15: हम
13: लंच के मंच पे।
16: वेलकम बैक। वेल, आज बॉलीवुड की खबर भी लेके आ चुका हूं मैं। अभी एक्टर शेखर सुमन, आपको पता ही होगा, मूवर्स एंड शेकर्स, ये इनका शो है। शेखर टुनाइट उनका जो टॉक शो है, वहां पे आमिर खान की रिसेंट शादी गौरी स्प्रॉट से होने पर थोड़ा मजाक किया और अंदाजेदार उन्होंने कमेंट किया है। वेल, उन्होंने ये कहा है कि हमारी सरकार डबल इंजन से चलती है, लेकिन आमिर ट्रिपल इंजन चला रहे हैं जो उनकी तीसरी शादी की तरफ एक ह्यूमरस रेफरेंस था। वैसे शेखर ने पॉलिटिकल सटायर और कॉमेडी को मिक्स करते हुए आमिर की पर्सनल लाइफ पर हल्का फुल्का जोक किया है और पॉलिटिशियंस को भी उसे अलायंस बनाना सीखने की बात कही है। वैसे ये कमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि ह्यूमर के लिए भी काफ़ी है और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है ये। और खैर, नेगेटिव कमेंट्स तो इसमें आने चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स खुद सलमान खान, शाहरुख खान, उन्होंने भी इस चीज़ को हल्के हल्के फुल्के मजाक किया। और खुद आमिर खान को भी, मेरे को नहीं लगता उनको कोई दिक्कत है, बिकॉज ही नो दैट ही गॉट मैरिड, दिस इज द थर्ड टाइम। बट द मेन थिंग व्हाट वी नीड टू लर्न इज दैट ही स्टिल हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद द एक्स वाइफ्स। अब यहाँ पे यू नो, अब वो कैसे करते हैं वो तो उन्हीं से जाके पूछना पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन किसी के साथ आए, बट द थिंग इज कि जोक है, उसको जोक ही लीजिए। और आई एम प्रीटी श्योर जिसके ऊपर मारा है उन्हें भी कोई दिक्कत

किरण नमस्ते सस्काल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में फिर से। Well, yes, आप बस बने रहिए बिकॉज इस आर में भी आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ। कुछ गरबा के इवेंट से यहाँ पे ऑफ कोर्स गरबा होने वाला है तो उसके बारे में आपसे बात होगी, बट साथ में कुछ और भी चीज़ें होने वाली है। जैसे कि आपको एक गाना इस आर में चलाने वाला हूँ, करण औजला का। जी हाँ, करण औजला का एक गाना चलेगा, तो जैसे ही चलेगा यह गाना आपको फट से मुझे KA लिख के 5599 पे भेज देना है उस गाने का नाम, यानी कि जैसे आप सुनते हैं तो उसी के साथ आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। और वो ड्रॉ में शामिल होकर अगर आप जीतते हैं तो आप जीत सकते हैं डबल पास। बट गेस, अभी के लिए आप एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना पलट मेरी जान और डोला रे डोला।

0: sportsfans.co.nz.
1: फुटबॉल के अपडेट्स ले लेते हैं. इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में अब तक सिर्फ चार बार ही सेमीफाइनल में पहुंचा है. वेल, पहली बार 1966 में हुआ था जब इंग्लैंड ने पोर्चुगल को हराकर फाइनल में जगह अपनी पक्की करी थी और अपना पहला और अब तक का इकलौता वर्ल्ड कप भी जीता. 1990 में जर्मनी से पेनल्टीज में हार मिली थी और 2018 में क्रोशिया ने एक्स्ट्रा टाइम में इंग्लैंड को हरा दिया था. अब 2026 में वर्ल्ड कप में इंग्लैंड फिर से सेमीफाइनल में आ चुकी है, जहां उनका सामना अर्जेंटीना से होगा, द जायंट अर्जेंटीना. वेल, फैंस को उम्मीद है कि इस बार फिर से थ्री लायंस अपनी 60 ईयर्स की वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार खत्म करेंगे और हिस्ट्री दोबारा लिखेंगे. 60 ईयर्स, कैन यू बिलीव इट, 60 ईयर्स हो चुके हैं अभी तक और उनका वर्ल्ड कप नाम नहीं हुआ है. बट यस, ऐसे देखें तो काफ़ी ऐसी कंट्रीज है जो बहुत सालों से इंतज़ार कर रही है. व्हाट डू यू थिंक, इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? मुझे लगता है, देखो ऑब्वियसली देखो इंग्लैंड इज एक्चुअली प्लेइंग सो गुड और कल मैंने सैंडी से भी, बिकॉज सैंडी काफ़ी फॉलो कर रही मैचेस और ये सब, तो वो कह रही थी कि अर्जेंटीना अपना बेस्ट नहीं खेल रही है. बट व्हाट इफ अर्जेंटीना ने ये जो आखिरी के दो मैचेस हैं वो बेस्ट खेल लिए, क्या लगता है आपको? बट यस, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये भी होने वाला है, दैट प्ले ऑफ भी होने वाला है थर्ड प्लेस के लिए. बट ऑफकोर्स एक बार बाहर होने के बाद आप उसी के लिए लड़ोगे कि यार चलो ठीक है थर्ड प्लेस तो आ जाए. बट लेट्स सी क्या रहता है रिजल्ट. पहला मैच होने वाला है कल, जी हाँ, फ्रांस वर्सेस स्पेन के बीच, और उसके ठीक अगले दिन यानी कि परसों होगा इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना का मैच.
2: लंच बॉक्स विद केतन.
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
4: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
5: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से।
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: हाँ। अच्छा
2: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं?
3: मिसेस सिंह
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in।
6: करण औजला ब्रिंग्स हिज पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू न्यूजीलैंड। ऑकलैंड स्पार्क अरेना दिस ऑगस्ट। टिकट्स एट livenation.co.nz। डोंट मिस करण औजला लाइव।
7: Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vogue 442-litre side-by-side fridge freezers, $699. Midea heat pump dryers, $499. Comfy 12-place dishwashers, $299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
8: Being fussy is just knowing what you want, so be more fussy.
9: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches, because your cat deserves meals created just for them. Meow! Fussy Cat is made with the meaty taste cats love, delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough, serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat, be more fussy.
10: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277 6644. T's and C's apply.

0: लंचबॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: चलिए बात करते हैं गरबा नाइट विद राज गढ़वी। जी हाँ, वो आ रहे हैं ऑकलैंड में परफॉर्म करने, जिन्हें लाया जा रहा है बाय लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांची ग्रुप। जी हाँ, जो कि प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं द मोस्ट अवेटेड कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर, गरबा विद राज गढ़वी। जी हाँ, काफी इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस होने वाली है। आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, बहुत ज्यादा डांस करोगे, रिदम वाइब्रेंट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और ऑफ कोर्स उनकी जो आवाज है राज गढ़वी की, बहुत ही अनफॉर्गेटेबल है। वेल यस, सैटरडे 1st of August अपने कैलेंडर में डाल दीजिए, द महात्मा गांधी सेंटर में होने वाला है, जहां पे डांस सेलिब्रेशन, म्यूजिक और ट्रेडिशन, ये सारा कुछ का कॉम्बिनेशन एक साथ देखने को मिलेगा। वेल यस, इवेंट्स tickets.co.nz पे जाइए और टिकट खरीद लीजिए। इवेंट्स टिकट न्यूजीलैंड जो कि है eventstickets.co.nz 0222-439-4736 ये स्वप्निल शाह का नंबर है, आप इन्हें कॉल भी कर दीजिए जस्ट इन केस अगर आपको कोई सवाल उनसे करने हो तो।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

Well, आपके पास सचमुच में सिर्फ और सिर्फ आखिरी मौका है, बिकॉज अभी कुछ ही दिन बचे हैं और 18 जुलाई को होने वाला है ऑकलैंड का सबसे बड़ा बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडी इवेंट ऑफ द ईयर, जहां पे आ रहे हैं बॉलीवुड के ऑफकोर्स जाने माने चेहरे कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर। जी हाँ, कॉमेडी नाइट्स अपने कपिल शर्मा के साथ उन्होंने देखा ही होगा स्टेज कैसे शेयर करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे बताने वाले हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आ रहे हैं तो कपिल शर्मा के बारे में थोड़ी बहुत तो बातें होगी। द ग्रेट कॉमेडी नाइट जो कि प्रेजेंटेड बाय इवेंट्स ट्रिविजन इवेंट्स की तरफ से ये शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आप आइए और एंजॉय करिए। अगर आपने टिकट ले लिए हैं तो बहुत ही लकी हो आप, जिन्होंने नहीं लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, बिकॉज शो मेरे को लगता है आज या कल हाउसफुल हो ही जाएगा। जी हाँ, आप आफ्टर पे भी के थ्रू भी खरीद सकते हैं टिकट, bookmyevent.co.nz इज द वेबसाइट जहाँ पे आप टिकट खरीद सकते हैं। सो यस, 18 जुलाई विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ऑकलैंड में ये होने वाला है, काफ़ी नॉन स्टॉप लाफ्टर, हिलेरियस लाइव परफॉर्मेंसेज, काफ़ी इंटरेक्टिव ऑडियंस मूवमेंट्स भी होने वाले हैं और मेमोरीज जो आप सचमुच में बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से स्टोर करेंगे। बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास, आइए विटनेस करिए एक वन ऑफ द काइंड शो एंड वन ऑफ द बेस्ट शो जो होने वाला है, कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव ऑन स्टेज एट द ग्रेट कॉमेडी नाइट।

0: वेल, अभी की न्यूज ये है कि ऑकलैंड के ओरिजिनल मैकडॉनल्ड्स बिल्डिंग को अब 32 स्टोरी स्टूडेंट अकोमोडेशन टावर में बदला जा रहा है, जो कि क्वीन स्ट्रीट पे है। एंड आई थिंक आई नो, आई हैव बीन देयर, जब मैं बहुत वेरी वेरी फर्स्ट टाइम जब सिर्फ घूमने आया था, जिसमें लगभग 680 स्टूडेंट्स रह सकेंगे। और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि बिल्डिंग को हिस्टोरिक हेरिटेज फैकेड प्रिजर्व किया जाएगा, ताकि उनकी पुरानी पहचान बनी रहे। और ये बिल्डिंग सिर्फ मैकडॉनल्ड्स के लिए ही फेमस नहीं थी, बल्कि 1884 में ये ऑकलैंड सेविंग बैंक्स का हेड ऑफिस भी हुआ करता था। मैकडॉनल्ड्स यहाँ 1977 से 2020 तक चला, और उसके बाद नियर बाय शिफ्ट भी हो गई। वैसे अब इस रीडेवलपमेंट का एम ऑकलैंड में स्टूडेंट हाउसिंग की डिमांड को पूरा करना है, साथ ही सिटी के हिस्टोरिकल हेरिटेज को भी बचा कर रखना है।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: मुझे पसंद है लड़का।
3: 80s के रेट्रो गाने।

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
5: Now's the time to book your next tour with House of Travel. Save $500 per couple on Globus small group tours to Japan, Vietnam, South Africa and more. See the very best of every destination without the stress. Talk to our team today only at House of Travel. TNCs apply.
6: Whites separated. Pockets checked. Cold wash. Gentle cycle. Powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland.
7: Non-stop Bollywood.
8: Hum.
7: Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
9: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
7: इसके पीछे
8: हम.
7: TikTok.
10: टिकटॉक की बात कर लेते हैं. रूटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 की सेकेंड क्वार्टर में ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट जो है वो करीबन 11% गिर चुकी है, जो 2013 के बाद सबसे लोएस्ट है, यानी कि लोएस्ट सिंस 2013. इसके सबसे बड़े जो रीज़न बताए जा रहे हैं वो है मेमोरी चिप की जो शॉर्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसकी काफ़ी वजह की वजह से फ़ोन जो है वो बनाने की कॉस्ट और प्राइसिंग दोनों बढ़ती नज़र आ रही है. महंगे स्मार्टफोन्स की वजह से कंज्यूमर्स कम खरीद रहे हैं, और इस स्लोडाउन की वजह से एप्पल जो है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है, यानी कि पूरे जो स्मार्टफोन है बाकी सारे वो सब गिर रहे हैं, बट एप्पल की जो परफॉर्मेंस है वो 3% बढ़ गई है शिपमेंट में, जिससे कंपनी ने लगभग 20% ग्लोबल मार्केट शेयर हासिल किया है. और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर मेमोरी चिप सप्लाई जल्दी नॉर्मल नहीं हुई तो स्मार्टफोन प्राइस और बढ़ सकती है, और इस मार्केट में काफ़ी प्रेशर बन सकता है.

0: μας κουνζίδι. Throwback.
1: All right. ये था आज की बातें और of course आप बस बने रहिए because थोड़ी देर में Sandy will be joining for the coffee break. मैं निकलता हूँ and I'll see you guys tomorrow. But yes, as I always remind you कि आप AI से related जितनी free में knowledge आप consume कर सकते हैं उतनी कर लीजिए. जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं Roa app पे. जल्दी से आप मुझे drive लिख के भेज दिए 5599 पे ताकि आपको जो podcast हमने record किया है उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल सके. And treat it as educational and not as an entertainment. Because आजकल के time पे तो लग रहा है कि जिसके भी CV में AI specialist की बातें अगर लिखी हुई तो definitely कहीं ना कहीं तो advantage मिलेगी. क्योंकि वो कहते हैं ना डायलॉग, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जॉब अगर गई तो उन लोगों की नहीं जाएगी. AI कभी आपकी जॉब नहीं लेगा. वो पर्सन होगा जो AI को जानता है आपसे बेहतर. तो जितना हो सके जितना आप नॉलेज ले सकते हैं, जस्ट डोंट स्टिक योरसेल्फ विद फ़ोटो को एनहांस करना या फिर अपने आप को बगल में किसी सेलिब्रिटी के खड़े करना, वहीं तक लिमिट ना रही है. एंड लिटरली एक्सप्लोर मोर. क्योंकि अगर आपका खुद का एक बिजनेस है या फिर आप खुद यू नो एक ईमेल्स पे या फिर इनवॉइसिंग पे, ये तो मैं खैर एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ, बट इस तरह के काम भी करते तो वहाँ पे भी AI आपकी बहुत हेल्प कर सकता है. सो यस, ड्राइव लिखिए 5599 में, भेज दीजिए ताकि आप तक ये लिंक पहुंच जाए. एंड बिफोर वी टेक इट अवे फ्रॉम द रोआ ऐप, आप अभी सुन लीजिए. वैसे और भी कंटेंट है रोआ पे, आप जाके कहीं भी कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो यस, डाउनलोड टुडे फ्रॉम योर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से. बट दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3. तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: If you don't play Instant Kiwi, it's just another day. If you do play Instant Kiwi, you have absolutely no idea what could happen next. Instant Kiwi, you never know. Play at your local lotto store or online today. R18.
2: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
3: Good afternoon, I'm KM Adams with the latest at 3. Donald Trump says the US is officially back at war with Iran. The US president has notified Congress saying things are moving fast.
4: We are just going forward. We're attacking them tonight. And we're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait.
3: Oil prices continue to rise amid the latest developments. Brent crude has leapt up to just under $85 per barrel, having been recently as low as $71. David Seymour believes Paul Henry will give the ACT Party a boost this election. The veteran broadcaster is standing as a list-only candidate. The ACT leader expects the party board to rank Henry highly.
5: I'm confident that he will be in an electable and respectable position and he will be in Parliament in 116 odd days.
3: Corrections has settled a case filed by a transgender employee. The staff member, who identifies as a man, had filed a claim under the Human Rights Act, alleging sex-based discrimination after being barred from performing prisoner searches in a way consistent with their gender. The settlement includes an apology from Corrections and a confidential compensation payment. All Blacks second five Geordie Barrett sat out training today, management saying it was merely precautionary after he took a leg knock. And in Super Rugby Pacific, Highlanders first five Cam Miller is on the move to the Blues, rugby with shift four. And Jaden Lennox has turned in the third best ODI performance by a New Zealand spinner, 5 for 19, as the Black Caps beat the West Indies by 5 wickets. The five-match series is tied at 1-1.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
6: मौसम के हालचाल मेड सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 16.4 डिग्रीज है और आज को ओवरनाइट 7 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम आज का ऑलमोस्ट फाइन, इट्स अ ब्यूटीफुल डे आउट देयर। सनसेट आज का 5:24 पर।
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड
7: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: Coffee break with Sandy.
6: 3:01 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है। यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में। और 4 बजे के बाद मेरा साथ आपके साथ यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा ड्राइव शो में, और मेरा साथ रुजबे के साथ हो जाएगा। सो कैसे है आप? आपका डे आज का कैसा जा रहा है सो फार? How's it going? It is 14 July. अगर आज आपका बर्थडे है, very happy birthday to you. अगर आज आपकी एनिवर्सरी है, a very very happy एनिवर्सरी to you. Well, जुलाई के मंथ में भी ढेर सारे इवेंट्स हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और नेक्स्ट मंथ में भी बहुत कुछ हो रहा है। देखा जाए तो हमारे सुपर सिटी एक बार फिर से हैपनिंग भी हो चुकी है, और रिसेंट रिपोर्ट से पता चलता है कि हमारी इंडियन कम्युनिटी ने, साउथ एशियन कम्युनिटी ने एक्चुअली में बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है यहाँ की इकोनॉमी में। सो दैट्स गुड वन एज वेल। तो यू नो, सिटी जब अप एंड रनिंग होती है तो एक्चुअली में अच्छा ही लगता है। सो एनीवे, आप भी बताइएगा कि अगर आप के पास कोई आइडिया होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो होनी चाहिए, लाइक ऑकलैंड में वो चीज़ होनी चाहिए जो अभी तक मिसिंग है। कई बार हम कहते हैं ना कि यार बैक होम जाते हैं तो ये चीज़ सिर्फ आपको वहाँ पर मिलती है, ये यहाँ पे नहीं है, वो ऐसा क्या है, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 5599 पर।

0: keep calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 इयर्स।
3: फेस इट, यू गुड इन ग्रुप्स, सो व्हाई नॉट टर्न योर सुपर पावर इनटू गेटिंग अ ग्रुप ऑफ ब्लड बडीज टुगेदर। Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
4: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
5: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ, अच्छा
5: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: White separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland.

0: 3:15 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पर सुन रहे हैं। वैसे ऑकलैंड पुलिस ऑफिसर जो है, इनको अभी रिसेंटली इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो क्या हुआ है कि ही थ्रू अ लार्ज बैग ऑफ सीज्ड कैनबस इनटू अ स्किप बिन बिकॉज उसको रिक्वायर्ड पेपर वर्क नहीं करना था। ही वॉज फीलिंग बिट लेजी, ये हो रहा था। उसके पास सीज्ड कैनबस थी जो उसने स्किप बिन में फेंक दी ताकि उसको पेपर वर्क ना करना पड़े। सो ही स्टिल सर्विंग इट न्यूजीलैंड पुलिस। जो इंसिडेंट है वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाई इंडिपेंडेंट पुलिस कंडक्ट अथॉरिटी विच फाउंड कि जो ऑफिसर है उसने जानबूझ के डिस्पोज किया था कैनबिस इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ ऑफिशियल एविडेंस हैंडलिंग प्रोसीजर। बिकॉज एक काम होता है, एक प्रोसीजर होता है जो करना पड़ता है। ऑफिसर को चार्ज किया गया है विद परवर्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस होता है बेसिकली ये। हाउएवर जो चार्ज है वो लेटर विदड्रॉन बिकॉज प्रोसिक्यूटर्स प्रूव नहीं कर पाए बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट कि हिज एक्शंस वॉज इंटेंडेड टू ऑब्स्ट्रक्ट द जस्टिस। एंड उन्होंने बोला कि सिंपली वो एक एडमिन काम जो है उसको अवॉइड कर रहा था आउट ऑफ लेजीनेस, वो उसका रीज़न था, एक एविडेंस को खराब करना उसका रीज़न नहीं था। ऑल्दो उन्हें जो ऑकलैंड पुलिस ऑफिसर है उसने कन्विक्शन अवॉइड की है, बट वो अभी भी इंटरनल एक्शन जो है वो फेस करने वाला है। ही विल रिमेन एम्प्लॉयड बाई न्यूजीलैंड पुलिस तो, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो है अभी इस ऑफिसर को हैंडल करनी पड़ेगी बिफोर ही गेट बैक टू हिज बिजनेस। आपका क्या टेक है इसके बारे में? आपको लगता है कि ये एक डेलिब्रेट एक्शन था या फिर आउट ऑफ लेजीनेस इस पुलिस ऑफिसर ने ये किया? एंड आपने कभी ऐसा किया है आउट ऑफ लेजीनेस? आपने कोई काम है जो आपने ऐसा इग्नोर कर दिया कि भाई ये जो आपके सामने कुछ काम करने वाला है जो विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, बेसिकली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है और आपने उसको ऐसा इग्नोर कर दिया, अंडर द कार्पेट कर दिया कि आपने देखा ही नहीं। जैसे कोई बच्चा आँखें बंद कर लेता है कि शायद किसी को पता नहीं चला और आपने भी वैसे ही कर लिया। ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ है बिना नाम बताए, वैसे आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे 0800 हम पर 0800 4866 पर मैसेज कर सकते हैं 5599 पर। और आज थोड़ी देर में हम अपना नया पॉडकास्ट जो है ये भी रिलीज करने वाले हैं। सो इफ़ यू आर ऑन रोवा, आप रोवा के ज़रिए हमें सुन रहे हैं, यू द फर्स्ट वन जो जाके इस पॉडकास्ट को चेक कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में जो हमने इस बार सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है और जिससे हमने बात की है, इस टॉपिक के ऊपर मुझे नहीं लगता कि हमने ऑन एयर भी कभी बात की होगी। नेवर एवर डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक ऑन एयर। सो प्योर ये जो टॉपिक है ये अनफिल्टर्ड है वहाँ पे जाके जो आपको मिलने वाला है। सो अगर आप रोवा पे हैं वहाँ पे अनफिल्टर्ड विद सैनी रुजबे सर्च करेंगे तो ये टॉपिक आप हमारे बताने से पहले ही आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बट थोड़ी देर में व्हेन रुजबे विल बी हियर तब इस पॉडकास्ट के बारे में और बात करेंगे।
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ। मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 3:28 हुए हैं। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ड्राइव शो में।
1: अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रुजबे, कैसे हो तुम?
0: यार दो दिन से आप ना आपका माइक के साथ कोई पंगा ही चल रहा है।
1: आई नो,
0: एक दिन माइक ऑन कर देते हो आप बीच गाने, फिर जब बात करनी होती है तब मोबाइल ऑन कर देते हो, मतलब क्या हो रहा, क्या
1: मोबाइल ऑन नहीं
0: था, तेरा ध्यान किधर है? लोगों के हेट कमेंट्स पे रिप्लाई करने पे ध्यान जा रहा है क्या आपका?
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो वो इतना तवज्जो नहीं देती।
0: मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आ रही है, एंड आई वांट टू एड्रेस दिस इशू स्टार्टिंग ऑफ द शो ओनली। मेरे को ये चीज से बहुत बुरा लगा है कि एक हमने कोई पोस्ट शेयर की है और उसके ऊपर
1: हमने कल बात की थी
0: एंड उसमें हमारे ऊपर इल्जाम ये आ रहा है कि हम हेट न्यूज स्प्रेड करते हैं, एंटी इंडिया न्यूज स्प्रेड करते हैं एंड इंडिया के अगेंस्ट जो भी चीज है। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, क्या ये रियली ये ऐसा परसेप्शन है?
1: जिसने कमेंट किया वैसे तो फेक प्रोफाइल है वो।
0: हाँ, वो फेक प्रोफाइल तो है और वो ऊपर से हमको बोल रहे भी दूसरे कमेंट्स पढ़ लो जो बाकी के 2-3 ही कमेंट है और बट आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ इंडिया से भाई, मैं तो हर जगह इंडिया को सपोर्ट करता हूँ।
1: इंडिया इंडिया है,
0: गाने में इंडिया
1: के सुना रहा हूँ। लेकिन अगर इंडिया में हम एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं किसी को अगर नहीं पता है, वी वर टॉकिंग अबाउट सोनम
0: वांगचुक के बारे में। मैं हमेशा बात करता हूँ और
1: उनके बारे में हमने कल बात की
0: और ये मैं पहले भी बात करता हूँ। उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं एंटी इंडिया बात कर
1: रहा हूँ। हमने बात की थी कल की वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, सो एग्जाम्स में कुछ लीक हुआ था जिसकी वजह से से अपनी जान गवाई थी, तो उनको ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं एंड ही इज आस्किंग फॉर द ओपन इन्वेस्टिगेशंस एंड रेजिग्नेशन। एंड वहां पे किसी ने सवाल भी पूछा वहां पे कि अगर कोई रिजाइन कर देगा तो उसका ये क्या सलूशन होता है। मुझे आंसर बड़ा अच्छा लगा। आंसर ये था कि आप अपनी जॉब पे अभी एक गलती करते हो, आपको वार्निंग दी जाती है, दूसरी गलती करते हो वार्निंग दी जाती है, तीसरी गलती भी कर दोगे तो आपकी जॉब रहेगी आपके पास या नहीं रहेगी, आपको जॉब में से मे बी निकाल दिया जाएगा बिकॉज आप मल्टीपल टाइम गलतियां कर रहे हो वहाँ पे।
0: आई थिंक रेजिग्नेशन का मतलब ये होता है अकाउंटेबिलिटी।
1: अकाउंटेबिलिटी, एंड उन्होंने बोला कि अभी क्या है कि कुछ पोजीशंस को लेके अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो अगर ये होना शुरू हो गया तो हर कोई भी चीज होने से डरेगा, वो अभी डर नहीं है किसी के अंदर। तो ये उनका आंसर मेरे को अच्छा लगा बिकॉज जॉब्स जो है वो भी एक बहुत बड़ी जॉब होती है और बहुत ही, मैं कहती हूँ, मुश्किल जॉब है, हर कोई नहीं कर सकता। बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर इट्स नॉट इजी। सो या ये उनका वहाँ पे था, तो अगर वो बात उन्होंने वहाँ पे की है और वो बैठे और हंगर स्ट्राइक पे वो जैसे दिखाई दे रहे हैं, उनका फोटो डाला है, जब वीडियो डाला है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। इट्स नॉट अबाउट किसी इश्यू के बारे में बात करना, उस कंट्री के बारे में अगेंस्ट बात करना नहीं होता है, मैं ये समझाना चाहती हूँ।
0: और आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि कोई इश्यू के बारे में बात हो रही है? हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसने एक धरना लिया है और वो भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, ऐसे भी नहीं कि कुछ कहीं पे तोड़फोड़ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके बारे में हम दो शब्द नहीं कह सकते। मतलब इतना भी नहीं कर सकते हम कि कोई बंदा भूखा अगर रह रहा है, कोई भी कॉज हो, कुछ भी हो,
1: 16 दिन हो गए ना, 16 डेज कुछ नहीं,
0: तो उसके ऊपर हम उसका जिक्र भी ना करें।
1: अभी अगर US में कोई बैठा होता, वो अगर 14 डेज 10 डेज ऐसे हंगर स्ट्राइक भी होता तो वो हेडलाइन में आता, हम उसके बारे में बात करते। अब वो बंदा इंडिया में बैठा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज डूइंग समथिंग।
0: आई रियली वांट सम कॉल्स राइट नाउ, 0800-004-866 ये टाइम है, क्योंकि देखो 4 बजे के बाद बहुत हमारा बिजी हो जाता है शो, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है बात करने का। दिस इज द टाइम, 0800-004-866। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, I really want to understand this. कहाँ पे ऐसा लग रहा है, just because we share a news about someone doing some protest somewhere, how does that equate to being against India or spreading hate news? I just want to understand that one.
1: इसमें logic क्या है? मेरे को वो समझ भी नहीं आता है। कोई भी न्यूज़, अब न्यूजीलैंड को लेके हम एवरी डे रुजबे एवरी आवर न्यूज़ शेयर करते हैं, ये हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ शेयर की कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसने एंटी न्यूजीलैंड थोड़ी ना है वो। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट।
0: व्हाई आर यू डूइंग दिस एंडी यार?
1: सो कोई न्यूज़ आती है उसके बारे में बात करना इज लाइक बात करना, डिस्कशंस नहीं होगी, डिबेट्स नहीं होगी, तो लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी गाइस?
0: 0800-004-866 आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। प्लीज़ यहाँ पे कॉल कीजिए और आप शेयर की और एंड आई थिंक यू कैन शेयर डिफरेंट साइड्स एज वेल।
1: क्या
0: आपने
1: totally.
0: भी कभी आपने भी कभी क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आपने कुछ भी कहा है और सडनली आपको एक टैग पड़ गया है उसके पीछे? एंड टैग्स आजकल बहुत इजीली स्प्रेड हो रहे हैं, बहुत इजीली मिल रहे हैं हर किसी को,
1: एंटी नेशनल बन जाते हैं जब कि आप वहां के नेशनल भी नहीं हो.
0: नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो यू गेट अदर साइड लाइक यू गेट डिफरेंट टैग्स. अगर आप कुछ और करते हो तो उसमें आपको फिर एक अलग दूसरे पार्ट दूसरे लोग दूसरा टाइप का टैग भी देते हैं. सो या वी आर टॉकिंग अबाउट टैग्स टुडे, प्लीज गिव अस अ कॉल. टैग्स नहीं, टैग्स
1: के बारे में हमें बात नहीं करनी, टैग्स के बारे में हमें बात करनी है यार.
0: वेल डेफिनेटली दीस टैग्स आर मोर टैक्सिंग देन द टैक्स, बट या 0800-004-866 इज द नंबर, आप यहां पे कॉल कीजिए. कुछ मैसेजेस आपके लिए सुना रहे रोवा पे, अगर आप हमें सुन रहे तो आप भी कॉल कर सकते हैं हमें राइट नाउ. हाय, स्वागत है आपका.
2: हाय, स्वागत है आपका. हेलो
0: जी.
1: जी
2: हाय रुजबे
0: जी.
2: आपका अभी आई एम कॉलिंग फर्स्ट टाइम. ये आपका डिबेट सुन रहा था कि आपके
0: डिबेट तो हो रहा ही नहीं है हमारे से यहाँ पे. डिबेट तो कोई करना ही नहीं चाह रहा है.
2: रीजन बताऊं क्या है? बहुत रीजन बताऊं क्या है, क्योंकि इंडिया में सारा मीडिया जो है ना वो खरीद लिया गया है, तो दे डोंट टॉक अबाउट विच इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट. और अब ये आई थिंक समबडी इज डूइंग द न्यूजीलैंड, कि अगर कोई मीडिया किसी बारे में बात कर रहा है तो दे डोंट वांट यू टू गाइस डिस्कस अबाउट दैट देन. दैट वाज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू मी.
0: और हमारा तो कोई स्टैंड भी नहीं ले रहा है तो हम बस गाली खा रहे हर जगह.
2: दैट इज नॉट फेयर, क्योंकि एज व्हाट वी हम इतनी दूर बैठ के क्या हमें पता लग रहा है कि इंडिया के अंदर जितना भी मीडिया चैनल न्यूज़पेपर हैं वो सब गवर्नमेंट ने खरीद लिए हैं कि वो उनके अगेंस्ट कोई बात ना कर सके. और जब भी कहीं भी और आउटसाइड इंडिया अगर कोई क्वेश्चन उठा रहा है तो लोग उसको बोल रहे हैं कि इट्स एंटी इंडियन कमेंट. दैट इज नॉट फेयर.
0: देखो आपने यहाँ पे अभी कॉल किया, मैं आपको आपका नाम नहीं पूछूंगा ठीक है, लेकिन आपने अभी ये जो बात की है आप ये कर सकते हो. अगर यही बात अगर मैं आपकी ये बात से अग्री करूँ ना जो आपने बोला है कि इंडिया की मीडिया खरीदी गई है और गवर्नमेंट चला रही है,
2: तो आप अगर बोलोगे तो आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे.
0: हाँ, तो इसलिए मैं आई कैन नाइदर अग्री और डिसअग्री. आई डोंट नो वहाँ पे क्या चल रहा है, मेरे को यही बोलना है. अभी
1: आजकल आई थिंक इट्स अ सोशल मीडिया टाइम, सोशल मीडिया के जरिए हमें कुछ चीजें जो है ये और दिखाई दे पड़ती है. मतलब मैं तो कोई और चैनल वहां का नहीं देखती.
0: आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई हैव वी लॉस्ट द राइट टू क्वेश्चन यार. दैट इज द बेसिक राइट दैट वी शुड हैव टू क्वेश्चन.
2: सॉरी फॉर आई एम बीइंग एन इंडियन, लेकिन इंडिया इज गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक सिंस दैट द करंट गवर्नमेंट इज देयर फ्रॉम लास्ट 10 11
0: इयर्स. नीदर अग्री नॉट डिसएग्री विद दिस.
2: नॉट डेफिनेटली यार, यू आर ऑन दैट प्लेटफॉर्म वेयर यू कांट से एनीथिंग.
1: रिस्की जगह पे
0: है. ओके
2: हां हां, बट दैट इज व्हाट हैपनिंग, व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर. वेरी रॉन्ग, इंडिया गोइंग इन रिवर्स. वहां का फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है. नोबडी कैन से एनीथिंग. अगर आप बोलोगे तो आप वो एंटी नेशनलिस्ट का टैग आपको लग जाएगा, जो न्यूजीलैंड में आपको लगना शुरू हो गया. इंडिया की बात छोड़िए, आप इंडिया में कुछ भी नहीं बोल सकते.
0: आई विल नीदर अग्री और डिसएग्री ऑन दिस फैक्ट,
1: बट टोटली गेट योर पॉइंट एंड टोटली गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से.
0: या थैंक्स फॉर शेयरिंग.
2: बट
1: थैंक्स फॉर योर कॉल.
2: ऑल गुड. थैंक यू.
0: हाय, आपका भी स्वागत है.
3: हेलो
0: जी, नमस्कार.
3: नमस्कार. मैं डिबेट, ये आपका जो डिस्कशन चल रहा है वो सुन के ही फोन किया मैंने भी. लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि पॉलिटिक्स क्या चल रहा है. पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियंस जो बैठे हैं गवर्नमेंट, राइट, नो कमेंट्स अबाउट इट. कि समवेयर मैं भी वॉट एवर इज कवर करंट गवर्नमेंट इंडिया में जो चल रहा है उसके सपोर्ट में बोलती हूँ. बट एट द मोमेंट वॉट वी आर डिस्कसिंग हियर इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, नॉट अबाउट एनीथिंग. इट्स अबाउट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग जो हो रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, राइट?
0: नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने प्रोटेस्ट के बारे में यहाँ पे शेयर किया. हमारे सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने जाके काफी हेट कमेंट्स लिखे और बोला है कि तुम्हारा स्टेशन रेडियो स्टेशन, उन्होंने लिटरली रेडियो स्टेशन के बारे में ऐसा बोला.
3: नहीं नहीं नहीं, सो बेसिकली
1: अबाउट शेयरिंग द न्यूज.
0: हमने ये न्यूज शेयर किया है, उसमें बोला है कि हमने
1: वो नहीं लिया कि वो सही है या गलत है.
3: वही ना, कि जो आपने शेयर किया दैट इज अबाउट द प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, और जो न्यूज आपने शेयर किया है दैट इज जस्ट योर थॉट. एंड हमारा थॉट इस पे, लोगों का थॉट क्या है वो हमें पता चलेगा. रेडियो स्टेशन ऐसी चीजें डिस्कस करेगा तभी हमें पॉइंट ऑफ व्यू ओपन जनरल पब्लिक के पता चलेंगे, राइट?
0: राइट.
3: इफ वी आर नॉट डिस्कसिंग एंड हम बोल रहे हैं कि नहीं बिकॉज इट इज अगेंस्ट इंडिया या इंडिया का न्यूज है तो हमें नहीं चलाना है, दिस इज स्टूपिड पीपल. मैं नहीं बोलूंगी कि इट इज अगेंस्ट इंडिया. यू वॉट एवर यू आर शेयरिंग, यू आर जस्ट गेटिंग पीपल्स व्यू, यू आर नॉट गिविंग एनी कंक्लूजन,
0: राइट?
1: 100%
3: जनरली आपके जर्नलिज्म
1: मैं भी इसमें ही खो जाती हूँ, डोंट वरी.
0: जर्नलिज्म
3: में भी यही होता है कि यू गेट पीपल्स व्यू, पीपल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. कंक्लूजन पे किसी को आने की जरूरत नहीं है, इसमें पता चलेगा कि क्या चल रहा है, किसी किसके दिमाग में क्या चल रहा है. वेदर या नो बडी इज परफेक्ट, मिनिस्टर भी परफेक्ट नहीं है, प्रोटेस्ट करने वाले जिसने सुसाइड किया वो लोग भी परफेक्ट नहीं है, बट वी वांट टू गिव राइट डायरेक्शन
0: टू अवर परफेक्ट है, ऐसा नहीं है.
1: है क्या?
0: हाँ हाँ काफी है ऐसे यार, ऐसा थोड़ी है.
1: अभी नहीं मुझे आइडिया नहीं है कोई.
0: नहीं आपको नहीं पता?
1: नहीं.
0: क्या बात कर रहे हो, वीकेंड पे आपने ऑफ रखा था क्या सोशल मीडिया?
3: ऐसे बोलना चाहिए कोई परफेक्ट नहीं होता, बट इन करंट सिचुएशन करंट टाइम में व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद पता चलेगा कि इसी चीज को यूथ कैसे ले रहा है, इसी चीज को 80 इयर्स एडल्ट कैसे मींस जो सीनियर्स है वो कैसे ले रहे हैं, whether we are right or not and what improvement is needed. So debate, ये जिसने भी comment किया है, मैंने comment नहीं पढ़ा है honestly आपके social media page पे, but if somebody is saying a discussion is just about Indian or against Indian, anti-Indian आप spread कर रहे हो तो that is not right. Even about New Zealand या किसी भी organization का कोई भी question ले लो, you are not going against organization. या आप किसी means अपना ही ले लो कि आप अपना हम के अंदर कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आप एंटी हम हो गए. मैं अभी जहाँ पे काम कर रही हूँ
1: देखो ना, अभी देखो रुजबे आए दिन यहाँ पे क्वेश्चन करता रहता है, हम ये नहीं कर रहे, मुझे नहीं मिल रहा पास, हर टाइम क्वेश्चन करता है.
0: हाँ, मैं बहुत क्वेश्चन करता हूँ, विजय बहुत तंग भी आ जाता है मेरे से, लेकिन कभी.
3: हाँ, और दिस इज जस्ट फ्यू पीपल वॉन्ट टू हैव एजेंडा ऑफ करंट लाइक हम इंडियन है, हम इंडियन है, इंडियन इज नॉट, इंडियन इज बिगेस्ट कंट्री जो डेमोक्रेसी ऐसी है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है और उसके हमें प्राइड है, तो वी शुड नॉट टेक दिस कमेंट एज नेगेटिव. प्राउड ऑफ वॉट एवर यू गाइज आर डूइंग, रेजिंग योर वॉइस, एंड वी ऑल शुड डू दैट, अदरवाइज वी विल एंड अप इनटू अ कंट्री वेयर वी जस्ट वी आर showing our kids like putting an example that we have to be slave.
0: Exactly.
3: Slave kya hua ki we have to listen to whatever our higher level is saying. I don't agree with this.
0: Exactly. And I think that is what we always teach our kids, right? Like if you don't understand, you ask a question.
1: Yeah.
0: And we should be able to answer those questions as well. Yeah.
1: Chupi kyun baithna hai? Yeah.
3: सॉरी रुजबे, इफ आई से ये ओनली इंडिया का या वो सोशल मीडिया पेज का प्रॉब्लम नहीं है, इट इज एवरीवेयर एट द मोमेंट. इफ यू क्वेश्चन यू आर रॉन्ग, यू आर गोइंग एंटी,
0: इट्स नॉट
3: यू आर क्वेश्चनिंग फॉर क्यूरियोसिटी.
0: एंड आई कंप्लीटली अग्री, बिकॉज नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, पहले एक जमाने में ना एक सेंट्रिस्ट करके एक कंसेप्ट होता था जहाँ पे यू आर नाइदर लेफ्टिस्ट नॉर राइटिस्ट, यू आर अ सेंट्रिस्ट. अब यू आर सेंट्रिस्ट है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है वो, यू आर आइदर लेफ्ट और यू आर राइट.
3: इफ यू आर क्वेश्चनिंग आपको ऐसे ये मींस पॉलिटिक्स हो गए हर एक जगह पे, आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ऐसी ऐसी जगह से मींस प्रेशर किया जाएगा कि यू हैव टू अग्री विद देम, वेदर इट इज इंडिया, एंटी इंडिया, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इवन सोशल वर्क भी होता है ना, उसमें भी सभी जगह पे कम्युनिटी वर्क सभी जगह पे ये चीज कॉमन हो गई है. सो आई एम अगेंस्ट इट, वॉट एवर यू आर डूइंग बोथ ऑफ यू, यू आर डूइंग द राइट थिंग एंड कीप डूइंग इट.
1: थैंक यू सो मच.
0: नो
1: थैंक यू, हैव अ गुड वन. Thank you, bye.
3: You too, bye. Non-stop Bollywood. Poochon ke karte shiddat ke saath karte hain. Hum playing Bollywood's biggest hits. Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer. Showerdome.co.nz. 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार.

0: यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आज कॉल्स काफी आ रहे हैं हमारे साथ, तो इनसे भी बात कर लेते हैं. हाय, आपका भी स्वागत है.
1: ऑनलाइन ऑन एयर नहीं बात करना है,
0: ऑन एयर नहीं बात करना है आपको. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप होल्ड कीजिए दो मिनट.
2: पहले होल्ड कीजिए. एंड ऑल्सो 4 बजे के बाद रुजबे, आज हम अपने पॉडकास्ट के बारे में भी बताने वाले हैं. हमने नया पॉडकास्ट जो है ये आज रिलीज
0: अच्छा,
2: कर रहे हैं.
0: यस,
2: 4 बजे के बाद इसके ऊपर बात करेंगे हम.
0: और थोड़े इवेंट्स हो रहे हैं हमारे सुपर सिटी में, जिसके डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे आज 4 बजे के बाद. एंड गाने
2: And
0: तो
2: सुनते रहेगा. करण औजला का गाना कभी भी प्ले हो सकता है. जैसे ही गाना सुनेंगे, यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन अ डबल पास.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Feels like 16 degrees, 15.8 actual temperature. Overnight temperature is going to be as low as 7 degrees tonight. 5:24 pe aaj hone wala hai sunset. Ekada odd showers ho sakte hai aur kafi jagho pe fog develop hone wala hai raat ko. To gaadi sambhal ke chalana.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: 4:02 hue hai, you're listening to The Drive Show. Good afternoon. Hi Sandy, good afternoon.
4: Good afternoon Rusbe, kaise ho tum?
1: Mujhe aaj aisa lag raha hai ki main aaj pange wale mood mein hu.
4: Tum pange wale mood mein ho aaj?
1: Mujhe aisa lag raha hai aaj, pata nahi kyun. Aur mujhe lag raha hai aaj safe bhi rahega panga lena.
4: Kyunki
1: kal se breakfast show mein hu na main.
4: Haan, to aur risky hai na.
1: Kyun?
4: Haan, subah aisa ho gaya koi bahar mil gaya tumhe.
1: Kaun bahar mil gaya? Excuse me. भाई क्यों ऐसा डरा रहे हो मेरे को यार?
4: वही ना. एनीवे गाइस, कैसे हैं आप और आपका डे कैसा जा रहा है? तुम्हारा डे कैसा जा रहा है रुजबे?
1: मेरा डे रॉकिंग जा रहा है एकदम.
4: कल रुजबे को आप मॉर्निंग शो में सुनने वाले हो, बिकॉज विजय पूजा विल बी अवे फॉर अ वीक. सो एक हफ्ते के लिए रुजबे विल बी इन द मॉर्निंग शो. Also, he will try to be in the drive show.
1: I will also try. I will try.
4: Yeah.
1: Try my level best.
4: Yeah.
1: Yeah.
4: So anyway guys, podcast के बारे में बात कर रहे हो अभी?
1: Oh yeah, podcast release हो गया already.
4: Yeah, podcast हमारा release हो गया है. इस बार जो podcast हमने किया है, हमने एक बहुत ही powerful conversation की है actually में शनी लाल के साथ. शनी लाल ये actually में ये काफ़ी famous रहे हैं. इन्होंने conversion therapy के ऊपर यहाँ पे actually में काफ़ी काम किया था. So he talked about LGBTQ community, उनके rights के बारे में, conversion therapy के बारे में, identity के बारे में.
1: मुझे तो पता भी नहीं था conversion therapy होता क्या है.
4: मुझे भी नहीं पता था कि conversion therapy क्या होता है. So वो अपने आप को identify करते हैं as a transgender, and इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की है. And he been young New Zealander in 2024, I guess, ki 23, he was young New Zealander in 2023, and us samay par inko ye award mila tha. And bahut sari cheezon mein ye bejhijhak hoke awaaz uthate hain. Abhi recently unhone itni awaaz uthayi ki unka page kuch countries mein aisa ban ho gaya.
1: Kya baat kar rahe ho?
4: हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या?
1: नहीं, मुझे नहीं पता.
4: ओवर द वीकेंड. सो
1: ओ माय गॉड,
4: उनकी पोस्ट जो थी कुछ कंट्रीज में ऐसा बैन हो गई.
1: ओ माय गॉड, एंड व्हाट अ टाइम वी आर लॉन्चिंग दिस पॉडकास्ट ओवर यार. एक तो हमें पहले ही टैग मिला है, ऊपर से अभी हम ये भी कर रहे हैं. क्या यार,
4: ये हमने महीने पहले रिकॉर्ड किया था.
1: हमें नहीं पता था.
4: हमें नहीं पता था. बट एक्चुअली में उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा था. ही जस्ट टॉक्ड अबाउट कि व्हाट इज हैपनिंग देयर. सो तो उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी, एंड क्या है कि ऑटोमेटिकली उसमें कुछ वर्ड्स है
1: जो बैन कर दिया,
4: जो कुछ कंट्रीज में दिखाने अलाउड नहीं है.
1: ओह वाओ, ओके.
4: सो ऐसे है. सो वो हुआ उनके साथ, तो ही पोस्टेड अबाउट इट एज वेल. सो एनीवे गाइस, शनी लाल जो है, इनके बारे में जो हमने इनके साथ जो हमने कन्वर्सेशन की है, सो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, पोलिटिकल डिबेट्स भी इन्होंने थोड़ी सी की हमारे साथ यहाँ पे. एक बहुत ही ऑनेस्ट एंड आई ओपनिंग कन्वर्सेशन थी, आइडेंटिटी के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, एंड राइट टू बी योरसेल्फ. मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी से अगर आप हो तो आपको काम पे रखने के लिए जो क्वेश्चन किया जाता है, ऐसी चीज़ें भी इन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर की है.
1: Yeah, it is a very nice listen.
4: थोड़ी देर में हम थोड़ा बिट भी आपको सुनाएंगे.
1: थोड़ा बिट सुनाएंगे, and it's been a conversation जो is basically meant for unfiltered only. क्योंकि काफी ऐसी चीजें जो मेरे को पता भी नहीं थी यार.
4: 100% नहीं पता था. एंड हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको थोड़ा एक बिट सुनाते हैं, so that you can listen more.
1: सवाल पूछे भी है उनको वहाँ पे, एकदम ऐसा बेझिझक होके थोड़ा, you know, we you know, one fear that I have is that our generations to come are going to forget the meaning of debate. क्योंकि वो एक स्टैंडिंग पॉइंट रहा है काफी टाइम से कि डिबेट्स बहुत कम होते हैं, होते नहीं है. अभी इलेक्शन का टाइम आएगा तब एक कोई टीवी पे आके डिबेट होगा जो काइंड ऑफ आधा स्क्रिप्टेड ही है,
4: पॉलिटिकली हैंडल की जाती है जो.
1: तो जनरल डे टू डे में लास्ट आपने डिबेट कब किया था ये मुझे आज जानना है आपसे.
4: क्या आपके यूजुअल टॉपिक्स वो सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं? कैन बी एनीथिंग.
1: कुछ भी हो सकता है. डिबेट अबाउट शाहरुख एंड सलमान ये भी हो सकता है डिबेट.
4: ये पहले होती थी जब से दोनों ने दोस्ती कर ली डिबेट ही खत्म हो गई. पहले होता था टीम शाहरुख खान टीम सलमान खान खुश थे सब लेकिन दोनों गले मिलने के बाद तो सभी खत्म हो गया.
1: आई एम सेइंग कि कोई भी डिबेट कभी हुआ है क्या? मतलब आपका लास्ट डिबेट कब हुआ है? आपको याद है आपका लास्ट डिबेट कब हुआ है?
4: मेरी डिबेट्स होती रहती है.
1: आप तो बहुत करते रहते हो मेरे साथ. हां हां
4: मेरी होती रहती
1: है. कल कुछ लोगों ने सुन भी लिया था.
4: वो तो गॉसिप सुनी थी.
1: हाँ, कि कैसे आप कितना बोलते हो. और मेरे साइड से कुछ नहीं होता. मैं लिटरली शांत बैठा रहता हूँ.
4: एनीवे आप भी शेयर कीजिए. लेकिन ये पॉडकास्ट अगर आपको सुनना है ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर.
1: अभी अभी बताया आज सुबह पत्नी से डिबेट करके बैठे.
4: अरे हाँ घर पे तो हर किसी की होती होगी डिबेट ना.
1: वो डिबेट
4: कैसे तुम बोल रहे हो कि हम डिबेट करना भूल गए.
1: डिबेट होती है क्या? आर्ग्यूमेंट होता है वो.
4: डिबेट होती है उसको देखो तुम आर्गुमेंट का टैग नहीं दे सकते हो. इट्स नॉट यू आर टैगिंग रॉन्ग थिंग ओवर देयर. उस पे
1: मैं बस पूछ रहा हूँ. मैं पूछ रहा हूँ कि क्या होता है वो. डिबेट होता है या हाँ चलो ठीक है.
4: देखो बाहर वालों से डिबेट है घर पे आर्गुमेंट है.
1: नहीं बाहर वालों से भी आर्गुमेंट ही हो रहा है ना आजकल. डिबेट नहीं हो रहे हैं. मैं वो बोल रहा हूँ
4: वन साइड.
1: डिबेट आई लव डिबेट्स. या क्या इज समवन कीन फॉर अ डिबेट? प्लीज रीच आउट.
4: बट फॉर नाउ पॉडकास्ट सुनने के लिए आपको क्या करना है? ड्राइव लिख के भेजना है 5599 पर.
5: लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.

0: धुरंधर का ये गाना आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वैसे हमने जो पॉडकास्ट किया है रिसेंटली शनील लाल के साथ, जो आज ही हमने रिलीज किया एपिसोड, उसका एक छोटा सा स्निपेट आपको सुनाते हैं अभी। इसका पूरे पॉडकास्ट का लिंक आपको मिलेगा ड्राइव लिखकर 5599 पे, जब आप भेजेंगे तब आपको लिंक हम ऑटो रिस्पॉन्स में भेजेंगे,
1: ऑटो रिप्लाई में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको लिंक यहाँ पे सुनाते हैं जहाँ पे इस टॉकिंग अबाउट
0: उनका, उन्होंने कैसे यूथ पार्लियामेंट में एक ये किया था, प्रेजेंटेशन टाइप किया था, मतलब एक बिल के बारे में बात की थी। लेट्स हियर अबाउट दैट।
2: I was the one who started speaking about it really vocally, and then I went to Youth Parliament, which is a parliament event where young people pretend to be parliamentarians and represent their local MP.
0: Oh, wow.
2: So I was representing my local MP, Jenny Salesa, and I made a 3-minute speech at Parliament about banning conversion therapy, and that at the time went viral on social media and kind of gave life to the movement.
1: Mm.
2: And yeah, then we took it from there, and there was a group of us. There was this guy called Shannon, who's an artist, Max, who was the director of Auckland Pride at the time, Nehana, who's, you know, a Labour Party person, Harry, who's also a Labour Party person, but a lot of people were involved. And, you know, we delivered a petition that was signed by 150,000 people, and we got 100,000 submissions to Parliament written. So it was quite significant. You had to be there, kind of, you know, you can't really explain to people what it felt like.
0: So petitions do work, that means?
2: Sometimes,
0: yeah.
1: In 2022, it did work.
0: You know, honestly, we used to get a lot of like these messages on WhatsApp, like, you know, this is a petition.
2: Yeah.
0: And I always used to wonder that, what is it going to, is it going to really affect anyone? Like, you know, a petition, is it going to change anything? But sounds like it does.
2: I mean,
0: create an impact.
2: It's very difficult to deny a petition in front of you that's got 150,000 signatures, right? I mean, petitioning is probably one of the most common tools that most people use, and I think it's a great way of raising awareness and building momentum. And I think it certainly helped us, because I think over the course of the 5 years, we ran about 4 petitions, and the last one was the biggest one. So the first 2 petitions, I think, got about 26,000 signatures.
1: Okay, well.
2: And, you know, those are the ones that actually resulted in a member of parliament going, actually, there's enough appetite for this. I care about this issue. We should actually act on it. And then that particular member of parliament, who was called Maya Lubeck, she introduced a members bill into the...
0: Well, pura episode, agar aapko check out karna hai, to pura episode aapko mil jayega. Drive, aap likh kar bhejiye 5599 pe, and we'll share the link with you. Agar aapne Unfiltered ko subscribe karke rakha hai on your podcasting platforms, to aapko waise hi notification aa
1: jayegi. Actually, mein bahut baatein ki, inhone 2022 mein conversion therapy ban karwai thi, iske upar inhone kaam kiya tha.
0: Aur wo hota kya hai conversion therapy, kyunki main, dekho, main to... पूछता हूँ भाई सवाल तो मैंने उसको पूछा कि भाई क्या है ये, होता क्या है, और उसने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया शनि लाल,
1: व्हाट इज कन्वर्जन थेरेपी, व्हिच इज स्पेसिफिकली वाज फोकस्ड ऑन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी।
0: या एंड मैं जब सुना वो, मुझे मेरा तो मेरा दिमाग
1: हिल गया। शॉक्ड यार, इवन आई वाज शॉक्ड कि ये सब कुछ झेलना पड़ता है। सो शनि लाल, जो कि खुद को आइडेंटिफाई एज अ ट्रांसजेंडर करते हैं, एंड इन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की, एंड आई थिंक अपने समाज में हम हिंदी में शब्द हो तो हिजड़ा हम ये शब्द बोलते हैं, एंड इन्होंने भी अपने प्रोफाइल में वो शब्द रखा है सबको समझाने के लिए। एंड हमारे बहुत सवाल थे, क्योंकि हमने इस शब्द से जुड़े, जब हम ग्रो अप हो रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है और अपने कंसेप्शंस माइंड में बैठाए हैं कि ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ये है, ये सब चीज़ें, बहुत सारे ऐसा कंसेप्शन और मिथ है, मैं कहती हूँ हमारे माइंड में बहुत सारे, जिन्होंने यहाँ पे इस पॉडकास्ट में क्लियर भी किए हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट गाइज, एंड मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में जब हम रह रहे हैं, जहाँ पे वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कम्युनिटी, तो वहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिटी को, तो इसलिए सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
3: अकड़ी बकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो दिकीरो दिकीरो।

0: Dancing foreign style.
1: Slow down, boys.

0: मैं वापस आऊंगा का ये बहुत ही प्यार सा गाना आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। और न्यूज की अगर बात करें तो भाई ये वॉर फिर से शुरू हो गई है।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ यार, ट्रंप ने कहा है कांग्रेस द यूएस इज ऑफिशियली बैक एट वॉर विद ईरान, ऐसा स्टफ का आर्टिकल है।
1: तो अभी हुआ क्या है, मतलब की सीन क्या है?
0: तो बेसिकली रात को ये लोग जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो थर्ड स्ट्रेट नाइट ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरान यूएस ने कंप्लीट किया है। अब पता नहीं क्या होने वाला है, फिर से शायद से हमारा ये बढ़ जाएगा
1: पेट्रोल
0: का प्राइस और वो सब। या मैन, पता नहीं क्या है मतलब, बट ये एक्सपेक्टेड ही है शायद ट्रंप से कि वो सलमान खान का फैन नहीं है ना, वो एक बार वो कमिटमेंट करता है फिर वो
1: उसको पीस नहीं चाहिए,
0: सुन लेता है फिर से।
1: उसको पीस नहीं चाहिए, उसको वो चाहिए कि मेरा
0: उसको
1: ऐसे हर जगह पे
0: हाँ,
1: उसको पीस चाहिए वो वाला, या
0: उसको एक टुकड़ा चाहिए,
1: या एक्चुअली में
0: हर एक चीज का
1: इज आफ्टर पीस ओनली। एनीवे,
0: डीप
1: यहाँ पे और भी बातें करेंगे बॉलीवुड में क्या हो रहा है रुस्बे, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जैसे कि कॉमेडी नाइट्स विद कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर 18 जुलाई को, इसी सैटरडे को होने वाला है
0: जी, ये आप अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे ग्रेट कॉमेडी नाइट, नॉन स्टॉप लाफ्टर, कुछ हिलेरियस लाइव परफॉर्मेंस होंगे, इंटरैक्टिव ऑडियंस मोमेंट्स भी रहने वाले हैं, तो या ऑडियंस अट्रैक्शन भी रहने वाले हैं काफ़ी, और वो भी मज़ेदार होता है काफ़ी, एंड इट्स अ परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट पैकेज, तो आप अपने फैमिली के साथ वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है अभी भी, और आप इसके टिकट्स चेक कर सकते हैं bookmyevent.co.nz पे जाके।
1: या तो वहाँ पे जाएगा एंड यू कैन ट्राई योर लक, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड सीट्स अभी रह चुकी होंगी जो वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। सो इस इवेंट पे भी आप ज़रूर पहुँचेगा एंड सुनते रहेंगे कुछ और इवेंट्स की जानकारी एंड कॉम्पिटिशन भी आप ले रहेंगे।
2: थोड़ा सा हॉल बना दे।

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now.
1: Hum. Accurate traffic.
2: Farrow Kitchen makes dinners easy.
3: Fog possible overnight for Auckland, a low of 7 on the northern. It's heavy from Oniwa Road through to Northcote and from Oniwa to the bridge. Slow on the northwest and around Rosebank, heading west. The southern is heavy southbound Newmarket to Sylvia Park and heading north from Luke Street to Green Lane. And on the southwestern, it's slow from Puhinui Road to the southern and heading west through Mangere.
2: Put Farrow Kitchen on dinner duty with a delicious, crowd-pleasing ready meal.
4: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
5: Kyun? Kya hua?
4: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents mange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
0: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस ईट बेटर लिव बेटर फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स
10: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
11: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
12: The Cooperative Bank has shared over $25 million in profit with our customers. Switch to the Cooperative Bank today and get a share of $25,000. Better. Bank better, New Zealand. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
13: From Christopher Nolan.
14: No one could stand between me and home.
13: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, with Zendaya and Charlize Theron. The Odyssey, in cinemas July 16. Rating TBC.
15: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
16: IKEA.

0: ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो आपके लिए जारी है 437 on the 14th of July. And यहाँ पे आपको हम बता दें कि करण औजला is coming into a super city very soon. Shortly वो यहाँ पे आएंगे. उनका डबल पास जीतना है अगर आपको और हिस्सा बनना है ये पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर का.
2: Yeah, so, एक बार फिर से स्पार्क अरीना में यहाँ पे धूम मचाने के लिए पहुँच रहे हैं. इकी के साथ स्पेशल परफॉर्मेंस उनकी रहेगी. सो पिछली बार भी जब उनकी परफॉर्मेंस उससे पहले इकी ने परफॉर्म किया था एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग. बहुत मजा आया.
1: आप से ज्यादा इकी के बारे में बात करते हो हमेशा, मैंने नोट किया. आपको इकी बहुत पसंद है ना?
2: नहीं, दोनों मतलब ऐसा कुछ नहीं.
1: ऐसा कुछ नहीं.
2: ऐसा कुछ नहीं. जस्ट लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है. वो बिल्ड अप करते हैं, वाइब अच्छा सेट कर देते हैं टुवर्ड्स करण औजला की जब वो आके देन परफॉर्म करते हैं. सो या अगर ये टिकट जीतनी है आपको करना क्या है, सुनते रहेगा. इसी आवर में आपके लिए करण औजला का गाना प्ले होने वाला है. जैसे ही गाना प्ले होता है आपको के ए स्पेस गाने का नाम और अपना नाम लेके भेजना है 5599 पर बस.
1: जी, और जो करण औजला फैंस हैं उनको तो पता ही है कि करण औजला का गाना जब बजता है.
2: ये जो गाना आज बजने वाला बहुत फेमस गाना है. ये
1: बहुत फेमस है. आपको पता है आज सुबह ब्रेकफास्ट शो में कौन सा गाना बजा है?
2: कौन सा?
1: वो तो और भी फेमस गाना है. फिर भी पूजा को फिर से आके बोलना पड़ा कि भाई प्लीज भेजो मैसेजेस. सो पीपल यू नीड टू लिसन.
2: या यू नीड टू लिसन.
1: क्योंकि डबल पास आपके नाम हो सकता है. और मैंने ये अभी बोल दिया है, मतलब हम अभी ये नहीं बोल पाएंगे आके वापस से. तो आपको सुनना है
2: तो ध्यान से सुनिएगा.
1: जब भी गाना बजेगा आपने के ए लिखकर भेजना है 5599 पे एंड योर नेम विल बी इन द ड्रॉ to win a double pass.
2: Yeah, and वैसे गरबा nights भी शुरू होने वाली है रुजवे. 1st August को एक event हो रहा है जहाँ पे राज गढ़वी आके perform करने वाले हैं.
1: जी, इनके event के बारे में भी बात करेंगे आपके साथ थोड़ी देर में.

आप सुन रहे ड्राइव शो, और ड्राइव शो में आपको बता दूं एलीज फार्म के बारे में। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं फ्रेश क्वालिटी हलाल मीट एट अनबीटेबल प्राइसेस, तो फटाफट एलीज फार्म आप चले जाइए। ये आपके ट्रस्टेड एबेटोर एंड बुचर है, और लिमिटेड टाइम के लिए ये आपको बहुत ही बढ़िया से स्पेशल्स दे रहे हैं। होल गोट कैरकस आपको मिलेगा सिर्फ $15 पर किलोग्राम के हिसाब से। शीप, लैम, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिल सकती है। सारे इनका मीट जो होते हैं वो हलाल सर्टिफाइड होते हैं, एंड दे आर प्रोसेस्ड अंडर MPI रिक्वायरमेंट्स एंड सोल्ड एज होल कैरसेस। तो अगर आपको इसको पीसेस, करी पीसेस में कट करवाना है, तो उसके लिए आपको इनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इनको आप विजिट कर सकते हैं 1319 एल्फ्रिस्टन रोड, एल्फ्रिस्टन, या कॉल करें 027-530-1175।

0: to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: The LifeWise Trust Big Sleep Out. Please donate now.
3: Fog possible overnight for Auckland, a low of 7. On the northern, there's a breakdown before the Oteha Valley Road off-ramp, so the centre northbound lane is blocked. There are delays there. The northwestern slow from Waterview to Rosebank. The southern heavy southbound from Grafton to Highbrook Drive and heading north from Princes Street to Almost Market Road. Southwestern slow, Whitty to Mangere Bridge.
2: Support Auckland's homeless by donating at bigsleepout.org.nz.
4: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
5: Kyun? Kya hua?
4: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
1: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800 564 424.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
7: मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
8: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
9: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
10: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
11: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
12: Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vogue 442 litre side-by-side fridge freezers, $699. Midea heat pump dryers, $499. Comfy 12-place dishwashers, $299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
0: Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good evening, I'm KM Adams with the latest at 6. ACT has high hopes for its newest candidate, broadcaster Paul Henry. Party leader David Seymour expects he'll be in Parliament following the election.
14: He's not only going to give ACT a real boost in getting there, he's going to ensure we keep winning the argument with his communication skills and his infectious enthusiasm.
13: The terms of reference have been released for an inquiry into a unit for intellectually disabled people in Dunedin's Wakari Hospital. The Ombudsman found serious failings in Ward 10A were causing both physical and mental harms to patients, amounting to potential human rights abuses. The independent inquiry will look into areas such as whether legal standards were breached. A proposal to allow student fee increases is being slammed as unacceptable by the Tertiary Education Union. Spokesperson Garrett Cooper says students are already balancing part-time work and full-time study in the midst of a cost-of-living crisis.
15: Not only having to deal with the scrapping of the fees for 1 year, they're now looking at a 6% increase.
13: Christchurch road users are being asked to plan ahead with the Lyttelton Tunnel set to close for the next 3 nights. The fire protection system is being tested between 11 p.m. and 5 a.m. Left-arm spinner Jaden Lennox took 5 for 19 as the Black Caps won the second ODI against the West Indies by 5 wickets. The five-match series is locked at 1-1, Game 3 on Friday morning. And football updates brought to you by Hisense. The first of the World Cup semis is tomorrow morning at 7. France has been the most eye-catching team at this tournament. Spain has been a slow burner and has conceded just 1 goal in making the final 4.
0: Sports News.
5: News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
16: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस.
17: सूचित किया जाता है ननुकु राकी राकी फीजी के स्वर्गीय श्रीमान और श्रीमती सन्यासी रामलू की पुत्री मनुरेवा के परमल नायडू की पत्नी ऑकलैंड इलेक्ट्रिकल सेल्स एंड सप्लाईज के डायरेक्टर मनुरेवा के शनील नायडू और पापा टोयटोय के रेशमा गाउंडर की माँ मनुरेवा की सविता नायडू की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार 15 जुलाई को दोपहर 1 बजे मनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-3946-895 पे कॉल कर सकते हैं. राखी राखी फीजी के स्वर्गीय श्रीमान और श्रीमती सन्यासी रमलू की पुत्री मनुरेवा के परमल नायडू की पत्नी ऑकलैंड इलेक्ट्रिकल सेल्स एंड सप्लाईज के डायरेक्टर मनुरेवा के शनील नायडू और पापा टोटो के रेशमा गाउंडर की माँ मनुरेवा की सविता नायडू की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार वेनसडे 15 जुलाई को दोपहर 1 बजे मनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-3946-895 पर कॉल कर सकते हैं. सूचित किया जाता है डिवीना डिवेन और राकेश लाल के पिता सावित्री लाल के पति तुरक सुवा फीजी के भूतपूर्व निवासी शर्ली रोड पापा टोटोय के छगन लाल की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार 15 जुलाई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-027-13215 पर कॉल कर सकते हैं. देवीना दिवेन और राकेश लाल के पिता सावित्री लाल के पति सुवा फीजी के भूतपूर्व निवासी शर्ली रोड पापा टोटोय के छगन लाल की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार 15 जुलाई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-027-13215 पे कॉल कर सकते हैं.
16: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
18: के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट.

0: Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
3: 6 बज चुके हैं, ट्रेंड मेकर्स में आपका स्वागत है। ट्रेंडिंग बातें आपके लिए यहाँ पे करते हैं और प्लस थीम लेकर आते हैं ट्रेंड मेकर्स में यूजुअली।
4: सो आज की जो थीम है, हम ऐसी मूवीज के गाने आपके लिए प्ले करने वाले हैं जो
3: आज की थीम है रिडेम्पशन।
4: रिडेम्पशन नहीं, रियलिटी बेस्ड मूवीज के ऊपर
3: जी। आज की थीम ये साबित कर देगी कि हम हमारी भारत माता से कितना प्यार करते हैं।
4: ऐसा नहीं कि उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है
3: और ऐसे भी नहीं कि उसकी कोई वैलिडेशन की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम वैलिडेट करेंगे बिकॉज हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया है।
4: द रियलिटी इज जस्ट बिकॉज हम रियलिटी बेस्ड मूवीज के गाने प्ले कर रहे हैं तो आपको रियलिटी भी बताते हैं। द रियलिटी इज कि आज कोई और थीम नहीं थी तो इसलिए ये थीम कर रहे हैं हम।
3: ओके,
4: नाउ लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस।
3: सो बेसिकली आज का थीम है जो रियलिटी बेस्ड मूवीज, उसके गाने आपको सुनाएंगे। तो पहला जो गाना है, इट्स फ्रॉम द मूवी दंगल, रियलिटी बेस्ड मूवी। एंड ओहो, इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था ना,
4: कहां पे? ये तो गलत हो गया उसमें,
3: आपको पता है ना?
4: अरे हाँ, भी याद आया मुझे।
3: हाँ, ये गलत हो गया सैंडी। बट एनीवे, बट दे आर द सिस्टर्स हु मेड इंडिया प्राउड
4: 100%।
3: एंड
4: एंड नई एग्जांपल सेटअप की थी फॉर लॉट ऑफ गर्ल्स आउट देयर एंड पेरेंट्स के लिए भी।
3: और एक ऐसी आइकॉनिक लाइन दी हमें बॉलीवुड की कि मतलब वो आई थिंक मोस्ट सिचुएशंस में बहुत फिट बैठती है। हमारी छोरी का छोरों से कम है वे,
4: या
3: ऐसा समथिंग ऑन दोस लाइंस।
4: तो इट वाज अ ग्रेट एग्जांपल मेरे को लगता है, और ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर मूवीज और भी बननी चाहिए पेरेंट्स को भी मोटिवेट करने के लिए। बच्चे तभी मोटिवेट होंगे जब पेरेंट्स मोटिवेट होते हैं, तो
3: जी
4: तो उनके लिए बहुत जरूरी होती है मुझे लगता है ये मूवीज।
3: या एनीवे, आपको बता दे कि कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर ले रहे हैं सेंटर स्टेज फॉर द ग्रेट कॉमेडी नाइट जो होने वाला है सैटरडे 18 जुलाई को ऑकलैंड में, और परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट इवेंट रहने वाला है ये। बहुत ही कम सीट्स बाकी है, फटाफट टिकट्स आप आपके बुक कर लीजिए, जिसमें आफ्टर पे भी अवेलेबल है। विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर आप जा सकते हैं, और मतलब पहले टिकट्स तो आप घर पर मतलब बुक कीजिए ऑनलाइन, bookmyevent.co.nz। अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत है तो आप एक नंबर देता हूँ आपको, उस पर आप कॉल करके उनसे बात कीजिए, 021-043-2720। ये आपकी मदद भी करेंगे बुकिंग के अराउंड।
4: तो इसी सैटरडे को ये इवेंट होने वाला है, तो जल्दी से जाके अपनी टिकट्स बुक करा लीजिए।
3: और अभी के लिए सुनते हैं दंगल का ये बढ़िया सा गाना।

0: नीरजा का गाना सुन रहे थे आप ट्रेंड मेकर्स में. आज रियलिटी बेस्ड मूवीज के गाने आपके लिए हम सुना रहे हैं, तो नीरजा का बहुत ही बढ़िया सा गाना सुना आपने. एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज फ्रॉम द मूवी एयरलिफ्ट.
1: एयरलिफ्ट का, या सो एयरलिफ्ट का ये जो गाना आप सुनने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया था, लेकिन एयरलिफ्ट रियलिटी बेस्ड मूवी रही है. जहाँ पे काफ़ी पैसेंजर जो थे ये स्टक हो गए थे एक जगह पे, काफ़ी लोग जो थे एक्चुअली में एक जगह पे स्टक थे, तो इंडिया ने एयरक्राफ्ट भेजा था वहाँ पे उनको वापस लेके आने के लिए.
0: करने के लिए या बहुत ही अच्छा हीरोइक वो था.
1: एंड इसमें काफ़ी ऐसे लोग थे जो अभी कुछ ऐसे लोग थे जो न्यूजीलैंड में हैं अभी.
0: हैं?
1: यस, मतलब जिन्होंने वहां पे उस समय पर ये देखा था.
0: ओह वाओ,
1: या
0: ओह यस, वी हैड स्पोकन टू अ फ्यू पीपल ना, मतलब पता नहीं मेरे को याद आ रहा है ऐसा कि किसी से बात हुई थी जो उन्होंने कहा था कि एयरलिफ्ट वाली स्टोरी उनके साथ हुई. आई डोंट रिमेम्बर बट एग्जैक्टली
1: द नेम इज रामैयर.
0: क्या बात कर रहे हो, उनके साथ ये हुआ है?
1: उनके साथ हमने बात की थी, उनके साथ एक्चुअली डिटेल्ड कन्वर्सेशन है एंड वी हैव इट ऑन हम के YouTube चैनल पे.
0: ओह
1: यस,
0: ओह वाओ, दैट्स क्रेजी यार. Nice. Anyway, तो reality based movies तो आपको हम सुना रही है गाने, बट इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि events ढेर सारे हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि राहत फतेह अली खान का भी शो हो रहा है जिसके टिकट्स आप बुक कर सकते हो from drytickets.com. 25 जुलाई को उनका ये शो होगा और इसके टिकट्स आप बुक कर लीजिए फटाफट.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.
1: आज ट्रेंडमेकर्स में आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसे रियलिटी बेस्ड गाने जो आपको आप शायद एंजॉय करो.
2: एंड ये क्या हुआ रुस्बे?
1: नहीं, मैं अभी खो गया हूँ थोड़ा, क्योंकि अब मैं मेरा जाने का वक्त आ रहा है ना पास पास. कल से मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा.
2: स्ट्रेस इसको हो रहा है अर्ली मॉर्निंग उठने का,
1: अर्ली मॉर्निंग उठने का और प्लस अकेले पूरा शो रन करने का. वेरी डिफिकल्ट यार.
2: It's not difficult. It's just ki you just have to be more responsible.
1: More and more responsibilities coming my way. Yeah. Why?
2: And especially with the content change and everything na, even in the breakfast show.
1: वही तो यार. बहुत डर मतलब बहुत ही ज़्यादा काम है. ऐसा मुझे लग रहा है.
2: इसीलिए तो आज तुमसे प्रैक्टिस करवाई मैंने.
1: I need one sick day to cope with this.
2: वेरी गुड. मैंने ये हफ्ता दो शोज किए.
1: हाँ यार, actually,
2: मैंने माय टाइम एंड ड्राइव शो किया है.
1: हाँ, आपने बहुत मेहनत की है.
2: yeah.
1: तो आप मेरे से भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हो
2: 100%
1: कि मैं ब्रेकफास्ट और ड्राइव करूँ.
2: yeah.
1: okay. we will see.
2: एनीवे, उरी का ये जो आप गाना सुनने वाले हैं, ये आदित्य धर का ऐसा डेब्यू था उस समय पर डायरेक्टर.
1: ओह, आदित्य धर पीक डिटेलिंग है.
2: या पीक डिटेलिंग अभी उन्होंने शुरू ही की थी, जो बाद में ये डेब्यू में उन्होंने अपना थोड़ा ऐसा टीजर दिखाया और बाद में मूवी दिखाई उन्होंने धुरंधर में.
1: हाँ, पर धुरंधर आज नहीं प्ले होगी क्या रियलिटी बेस्ड के ऊपर?
2: अगर टाइम मिला तो पता नहीं. डिबेटेबल
1: है ये भी.
2: It's a debatable.
1: Okay. Let's see.
2: For many people, not just us.
1: No, because it is inspired by true events.
2: It is inspired by true events, but not proper reality based.
1: But हाँ, not reality based. और ये तो उन्होंने भी मतलब काफी लोगों ने, makers ने भी बोला है कि they have tried to sum up the stories together. But anyway, Uri में एक हल्की झलक हमने देखी थी उनकी, राकेश बेदी की.
2: Yeah, जो character बाद में हमने यहाँ पे देखा.
1: जो बाद में हमने धुरंधर में एक full fledged character देखा, तो I think it was.
2: I loved that character, man. राकेश बेदी का दोनों movies में.
1: Yeah, it was really class.
2: अंदर में तो like part 2 में तो next level पे ले गए वो character को.
1: yeah, no spoilers now. But anyway, अभी आप सुनेंगे उरी का ये गाना.

0: शेरशाह एक और ऐसी मूवी जो रियलिटी बेस्ड है और बहुत ही लवली ये मूवी थी. आज भी मुझे वो डायलॉग याद है, ये दिल मांगे मोर.
1: या विक्रम बत्रा इनकी लाइफ के ऊपर ये मूवी बेस्ड थी एंड बहुत ही अच्छी. वैसे इसमें सिद्धार्थ ने रोल किया था
0: एंड कियारा आडवाणी थी ना, यही तो उनकी स्टोरी की शुरुआत थी ना शायद से.
1: इससे पहले ही थी लेकिन इस मूवी के बाद काफी लोगों को कंफर्म हो गया था कि यस दे आर डेटिंग.
0: राइट.
1: सो सिद्धार्थ एंड कियारा, इनफैक्ट देयर वाज वन पार्टी जहां पे करण जौहर ने बोला था कि सिद्धार्थ वहां पे था, कियारा वहां पे थी एंड दे वर बॉन्डिंग अ लॉट एंड सिद्धार्थ वाज नॉट वेल बट ही स्टिल केम इन द पार्टी जस्ट टू सी कियारा एक्चुअली. एंड देन कियारा उसका खाना खिला रही थी एंड एवरीथिंग. सो ही सेड कि तभी मुझे समझ में आया कि देयर इज समथिंग कुकिंग ओवर हियर.
0: कुछ तो गड़बड़ है दया.
1: या एनीवे सो बैक टू द मूवी. बहुत अच्छी मूवी मुझे लगी थी. शेरशाह बहुत अच्छे वे से रोल किया था. इसके बाद काफ़ी लोगों ने जो कियारा आडवाणी का करेक्टर था डिम्पल उसको जाके सर्च करना शुरू कर दिया कि वेयर इज शी, हु इज शी.
0: एक्चुअली मूवी में एंड में दिखाया भी था ना कि डिम्पल इज स्टिल अनमैरिड, मतलब वो विडो विडो ही बन के रही
1: थी. एज अ विडो बन के वो अभी भी है.
0: या वेरी वेरी इंस्पायरिंग मूवी. उसी का गाना आपने सुना. बट कमिंग अप नेक्स्ट इज नॉट अ मिलिट्री मूवी बट इट इज मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स मूवी आप बोल सकते हो. भाग मिल्का भाग.
1: अरे क्या फरहान अख्तर था इसमें. फरहान अख्तर ने बहुत मेहनत की थी इस रोल के लिए.
0: हां, यू नो बहुत सारे क्या बॉडी बनाई थी.
1: बॉडी बनाई देन रनिंग
0: एंड ही लुक्ड आल्सो वेरी डिफरेंट. हां
1: या
0: ही लुक्ड वेरी डिफरेंट.
1: उसका जो था वो मिल्खा सिंह के साथ मैच कर रहा था.
0: और मिल्खा सिंह जी ने भी इस मूवी के लिए कुछ पैसे नहीं लिए थे. एक रुपया या ऐसा कुछ तो भी, यू नो लाइक समथिंग.
1: वो जस्ट ऐसा कि अगर कुछ देना है तो.
0: हां बट या इट वाज it was a great, great movie. And I think कहीं ना कहीं ये भाग मिल्खा भाग में भी काफ़ी struggles दिखाई है. You know how going through all the struggles
1: you still
0: Milka
1: achieved,
0: Singh still
1: yeah.
0: achieved.
1: Yeah.
0: And he was also part of military ना. I think military join करके ही फिर वो आगे running में उन्होंने
1: आगे गए थे. इट्स वेरी नाइस मूवी एक्चुअली. अगर आपने नहीं देखी है, बहुत अच्छे वे से इस मूवी को बनाया गया था. इसमें भी जो हर एक चीज़ दिखाई थी कुछ ज़्यादा उसको ड्रामेटाइज नहीं किया था, बहुत अच्छे वे से दिखाया था. सो इफ यू गेट अ चांस जस्ट वॉच भाग मिल्खा भाग.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.
1: You're listening to the Drive Show and Trendmakers. ये आपके लिए जारी है जहाँ पे आज हम reality based movies के गाने आपको सुना रहे हैं. And we heard a classic playlist today. बहुत ही बढ़िया गाने थे. I think very inspiring songs.
2: और बहुत सारी ऐसी movies हैं जो रह चुकी हैं, जैसे कि Mary Kom का हम play करना चाहते थे, वो नहीं हम play कर पाए. बहुत अच्छा role किया था प्रियंका चोपड़ा ने Mary Kom का. Total language के ऊपर भी काम किया, looks के ऊपर भी काम किया
1: था. Looks के ऊपर भी काफी, मतलब बहुत ही very nice movie. उसमें भी, उसके बाद में काफी controversies हुई थी ना, मतलब क्योंकि Mary Kom ने फिर उसके husband के साथ उनका वो हो गया था ना.
2: हाँ, वो तो चलो personal life में जो हुआ, but achievements तो खैर अपनी जगह पे.
1: Yeah, absolutely. और वो तो माँ बनने के बाद उन्होंने वापस से जीते अवार्ड, medals
2: जीते थे.
1: So that is class man, epic.
2: So, इसी नोट पे आपको टाटा बाय बाय कहते हैं, लेकिन जाने से पहले ये गाना तो जरूर प्ले करेंगे, केसरी मूवी जो कि अनदर रियलिटी बेस्ड मूवी थी.
1: तो केसरी का गाना बस हमने जस्ट सुना अभी,
2: केसरी का भी हमने सुना
1: अभी, केसरी का जस्ट सुना अभी. अभी हम सुनाने वाले ये तूने क्या किया,
2: Once Upon a Time in Mumbai,
1: क्योंकि वो भी एक रियलिटी बेस्ड मूवी थी Once Upon a Time in Mumbai, and it is a different kind of a vibe, gangster kind of a movie.
2: Yeah. But लेकिन जो कुछ हुआ है वही characters को उठा के true events के ऊपर उस movie को बनाया गया था.
1: जी, so इस गाने के साथ हम आपको कहते हैं bye bye and मिलेंगे अभी, मतलब मैं मिलूंगा आपको drive show में मैं अगले हफ्ते मिलूंगा आपको.
2: अगले हफ्ते मिलोगे, लेकिन कल सुबह तो मिलने वाले हो यहाँ पे 6 बजे.
1: 6 बजे से 10 बजे तक ना, 10 बजे तक होता है.
2: और
1: 6 से 10 रहूंगा मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट शो में. साथ जरूर देना वहाँ पे यार, आई नीड योर सपोर्ट. बट जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आपका मन है हमारे साथ घूमने का, तो हम जा रहे हैं बाली और बैंकॉक मार्च 2027 ईस्टर की छुट्टियों में. एंड आपको बस 7 दिन की छुट्टी लेनी है.

0: थोड़ा पैसा भी खर्चा करना है, क्योंकि काफ़ी जो जगह है, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, वो करने का मौका आपको मिल सकता है हमारे
1: तो इट्स
0: साथ।
1: अ पैकेज डील जिसमें फ्लाइट टिकट्स है, होटल की अकोमोडेशन है, फूड है तीनों टाइम का, देन कुछ एक्टिविटीज़ भी है. सो इस सारा का सारा पैकेज है. सो इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट टाइप ड्राइव 15599, एक फॉर्म आपको मिलेगा, फिल द फॉर्म एंड दैट्स इट. आप को जो डिटेल्स है अटेंड्री जो है बेसिकली प्राइस के साथ आपको भेज दी जाएगी.
0: जी, और देखिए, मतलब मज़ा आएगा साथ में घूमेंगे तो, एंड इट विल बी अ गुड गुड गेट अवे ऑल्सो। और अभी देखो, लॉन्ग वीकेंड होता है, लॉन्ग वीकेंड पे वैसे भी चीज़ें काफ़ी महंगी होती है। इफ़ यू चेक दिस पैकेज आउट, आई थिंक इट्स अ वैल्यू फॉर मनी पैकेज,
1: या अगर
0: बिकॉज
1: वो भी
0: वी
1: आप
0: आर
1: ईस्टर के टाइम का अगर आप पैकेज चेक करते हैं वहां का, बिकॉज ईस्टर पे हमेशा महंगा होती है चीजें.
0: एंड वी आर ट्रैवलिंग इन स्टाइल, मतलब हमारा सब कुछ 5-star 4-star रहने वाला है, सारा खाना वाना सब इंक्लूडेड रहने वाला है, प्लस एक्टिविटीज जो हम बनाना, बोट राइड या जेट बोर्डिंग या जो भी है, सब कुछ इंक्लूडेड वहाँ उसमें वो भी रहने वाला है। सो या डू ज्वाइन अस एंड हैव वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर वीक। अगर बात नहीं होती है तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं बहुत जल्द।
1: सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।
2: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant, and so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
3: Make long weekend lie-ins longer with Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds with 55% off the Sublime Serenity Breeze. Queen size, now from 1687. Find your best sleep in our long weekend sale at Beds R Us Marikau and Pokekohe, where dreams begin.
4: Māori Ma, have you received a reminder email or text about your role for this year's election or not sure you're enrolled? Luckily, we still have time. If you're Māori and 18 or over, you get to choose Māori role or general role. There's no right or wrong, just right for you. The role you choose affects who you can vote for to represent you and your roe in Parliament. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।

You're listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits. Coke Studio Reloaded आपके लिए जा रही है और मैं क्रिश आपके साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. Songs जो Coke Studio पाकिस्तान में रिकॉर्ड होते हैं इनको महीने लग जाते हैं for rehearsals before filming. Performances को present किया जाता है live, लेकिन artist जो है typically रिहर्स करते हैं एक्सटेंसिवली कहा गया है कभी कभी 3 महीनों तक के लिए बिफोर द फाइनल रिकॉर्डिंग और पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होता है. एक सिंगल रिकॉर्डिंग में 120 क्रू मेंबर्स लगभग होते हैं जिसमें ऑडियो इंजीनियर्स कैमरा ऑपरेटर्स लाइटिंग टीम्स और स्टाइलिस्ट और प्रोडक्शन स्टाफ भी शामिल है. ज़रा सोचिए जो 5 मिनट का गाना हम सुनते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है. इसलिए इस फील्ड को के जो आर्टिस्ट हैं उनको सराहना उनको प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है. सुनते रहो कोक स्टूडियो रिलोडेड और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा. आज मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Studio Reloaded on Hum.
1: टू बैक टू बैक कोक स्टूडियो सॉन्ग्स आपने सुना पिंजरा और साथ में छल्ला हरी और सुखमनी की आवाज़ों में. पिंजरा आपने सुना क्लिंटन कैरेजो और जोनिता गांधी की आवाज़ों में. प्यारा प्यारे प्यारा गाना था दोनों. अभी कोक स्टूडियो रिलोडेड को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट सीजन जो था कोक स्टूडियो भारत का, इट वॉज डेडिकेटेड क्रिएटिव थिंक टैंक से ये बना था. नॉट जस्ट अ म्यूजिक कंपोजर, अंकुर तिवारी जो है इन्होंने लिरिसिस्ट और बतौर कंपोजर के तौर पर काम किया है, सच एज कौसर मुनीर और के जय सिंह के साथ मिलकर इन्होंने इस आर्टिस्टिक डायरेक्शन को आगे बढ़ाया. और कहा गया है कि ऑडियो और विजुअल्स वो हैंडल बाय डिफरेंट स्पेशलिस्ट कंपनीज. पहले जो कोक स्टूडियो फॉर्मेट थे भारत स्प्लिट म्यूजिक प्रोडक्शन विजुअल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स सेपरेट टीम्स, ताकि एक एक टीम में जो काम इन्वेस्ट हो और जिस तरह से तैयारी हो वो भरपूर हो और पूरी तरह से हो. काफ़ी सॉन्ग्स बिगिन विद द स्टोरी रेदर देन ट्यून. पहले एक स्टोरी को रखा गया, फिर उसके अराउंड धुन बनाया गया. क्रिएटिव टीम ने कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट को तैयार किया कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट या कल्चरल नैरेटिव पहले बनाओ और फिर आर्टिस्ट को ढूंढो और फिर उस बैकग्राउंड में जो आर्टिस्ट फिट होता है उनसे गवाओ. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कोक स्टूडियो रिलोडेड आपके लिए जारी है.

0: moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: सुनते रहो कोक स्टूडियो रिलोडेड में क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ अनोखी बातें आज हमारे साथ कोक स्टूडियो को लेकर हो रहा है। कोक स्टूडियो पाकिस्तान के जो अर्ली सीजन्स है इनको प्रोड्यूस किया था रोहिल हैट्स पर्सनल स्टूडियो। ये बहुत लार्ज टेलीविजन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये स्मॉलर सेटअप था जिसमें इंटीमेट लुक और साउंड को रखने के लिए यहाँ पर शूट किया गया था। काफ़ी फैंस एसोसिएट करते हैं विद सीजन्स 1 to 6 और कहा गया है कि द हाउस ब्रांड रिहर्सल्स सेपरेटली बिफोर आर्टिस्ट अराइव। तो जो बैंड होता है इनफैक्ट वो अलग सेपरेटली रिहर्स करते हैं, अरेंजमेंट्स और रिफाइन जितना भी काम करना पड़ता है वो हो जाता है पहले से बिफोर सिंगर्स आते हैं, बिकॉज सिंगर्स कैन फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन रादर देन बिल्डिंग द सॉन्ग फ्रॉम स्क्रैच। इसलिए सिंगर जब आता है तो काफ़ी तैयारियां हो जाती है एंड देन क्रिएटिवली सिंगर्स का जो इनपुट होता है और बैंड का, तब जाकर कोक स्टूडियो के गाने बनते हैं। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

करते हैं, ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो रीजनल आर्टिस्ट को डेलिब्रेटली सेलेक्ट करता है। काफ़ी वेल नोन टैलेंट इंडिया में है लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती, हम उनको जानते नहीं हैं। अभी म्यूजिकल रियलिटी शोज अगर हम देखते हैं तब जाकर पता चलता है कि कितने धुरंधर सिंगर्स इंडिया के अराउंड है, गांव में हैं, अलग अलग जगहों पर, जो मंच तक पहुंच नहीं पाते हैं, जहां पर लोगों तक इन सिंगर्स का नाम पहुंचाया जाता है, इनका काम दिखाया जाता है। तो कोक स्टूडियो का यही मकसद रहा है कि लोगों के सामने लेकर आया जाए ऐसे टैलेंट और उनका कोलैबोरेशन किया जाए कुछ ऐसे आर्टिस्टों के साथ में जिसमें उनका नाम और भी अच्छा हो और गाने भी बहुत अच्छे बनकर निकले। कृष का साथ है, कोक स्टूडियो रिलोडेड आप सुन रहे हैं।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with
2: क्या?
3: The cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा, Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You are listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hu. Global sensation Karan Aujla ko live in Auckland dekhne ka mauka hai because he is bringing his P-pop culture world tour. Aur ye 25th August ko hoga, Spark Arena mein. One of the biggest concerts of the year ye hone ko hai. He will be joined by Ikki, I-K-K-Y, jo unforgettable night aapko dega. Double pass jeetne ke liye Karan Aujla ka gana jab pesh kiya jayega. जैसे आप सुनते हैं गाने का नाम टेक्स्ट करें अलॉन्ग विद कीवर्ड KA ड्रो में शामिल होकर डबल पास जीतने का मौका रहेगा. टिकट इन्फॉर्मेशन के लिए hum.rover.nz या फिर livenation.co.nz आप विजिट कर पाएंगे. करण औजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड हुआ ये 25th अगस्त को होगा स्पार्क अरीना में. डोंट जस्ट हियर अबाउट इट, आपको वहां पर रहना है टू फील द मैजिक. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a shower dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every shower dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
4: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: आपके सामने एक रेड बटन है,
7: दबा दिया।
6: नहीं दबाना था।
8: The madness is back. धमाल 4.
9: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
8: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
10: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
8: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
11: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।
12: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.

0: Cafe on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ka saath hai. This Saturday, 18th July, Oakland witness karega one of the biggest comedy events, jisme Krishna Abhishek aur Rajiv Thakur ko live on stage dekhne ka mauka hai for the great comedy night. India ke do biggest television comedy superstars ko live dekhne ka mauka rahega. Non-stop laughter, hilarious live performances, interactive audience moments, aur aise memories yahan par hoga jo aap cherish karenge with your loved ones. To perfect family entertainment for all ages, family, friends, colleagues, या फिर स्पेशल समवन के साथ यहां पर जाए. शो कुछ ही दिनों में होगा तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रह गए हैं, तो लास्ट मिनट का इंतजार ना करें, टिकट्स आज ही सिक्योर करें बिफोर इट इज कंप्लीटली सोल्ड आउट. आफ्टर पे अवेलेबल है. बुकिंग के लिए असिस्टेंस की जरूरत है तो फिर 021-043-2720 पर आप कॉन्टेक्ट कर पाएंगे. ये शो 18th यानी 18 जुलाई को होने जा रहा है सैटरडे विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. टिकट्स के लिए आप bookmyevent.co.nz पर जाए. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ ओकलैंड गेट रेडी लेजेंडरी राहत फतेह अली खान ओकलैंड आ रहे हैं फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक इनका मैजिक आप एक्सपीरियंस कीजिए ऑफ हिज टाइमलेस हिट्स साउल स्टरिंग कवाली पावरफुल वॉइस जो इनका होता है जिन्होंने ऑडियंस को कैप्टिवेट किया है अक्रॉस द वर्ल्ड इनके गाने इतने मजेदार होते हैं ट्रस्ट अरिना में ये शो होने जा रहा है 25 जुलाई को प्रेजेंटेड बाय जयका स्टार प्रोडक्शंस गोट लाइव ड्रीम्स एंटरटेनमेंट सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन आपके लिए टिकट्स आप dry.com से ले सकते हैं राहत फतेह अली खान लाइव देखने का मौका है ऑन 25 जुलाई ट्रस्ट अरिना में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: माइंड सिर्फ रोवा पर द बीट ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
0: नाइट कैफे
2: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ इमेजिन कीजिए कि आप टुक टुक ड्राइव्स पर जा रहे हैं टू द बीच क्लब वाइब्स ये हो पा रहा है बाली और बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे जो मार्च 2027 में होने जा रहा है ये आपका एक चांस है टू एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ बैंकॉक एंड बाली इन वन इनक्रेडिबल गेटअवे अल्टीमेट टू कंट्री एडवेंचर ये है वाइब्रेंट स्ट्रीट्स ऑफ बैंकॉक एक एंजॉय करने का मौका विद एक्साइटिंग टुक टुक राइड्स मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बसलिंग मार्केट्स देखने का मौका इनक्रेडिबल स्ट्रीट फूड खाने तो बहुत मज़ेदार होंगे अनफॉरगेटेबल नाइट लाइफ भी देखने का मौका है और फिर एस्केप कीजिए टू द ट्रॉपिकल पैराडाइज ऑफ बाली Stunning dry terraces or waterfalls, breathtaking sunsets, देखने का मौका, relax at world famous beach clubs, और picture जो famous swing के साथ होता है, वो भी करने का मौका है, and experience the island's unique culture and beauty. Both of these countries are amazing. आप यहाँ पर जा सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं विद सैंडी और रुस्बे iconic sites, hidden gems, amazing local cuisine, create unforgettable memories together. तो आज इनको ज्वाइन कीजिए आज ही मार्च 2027 में ये होने जा रहा है एंड मेक योर नेक्स्ट एडवेंचर अनफॉरगेटेबल टेक्स्ट करें ड्राइव DRIVE 5599 पर फॉर ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ सुनते रहो हम

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: वेलकम बैक एवरीवन, यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. नाइट कैफे जारी है आपके लिए और ये जारी रहेगा मिड नाइट तक. ये हमारा फाइनल आवर है, सो वेलकम टू आवर फाइनल आवर. अभी तक आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा लगा ऐसा ही साथ मिलता रहे. तो हर जो रास्ता है, सफ़र है, बहुत ही आरामदायक बन जाता है, बहुत ही सरल और ईजी बन जाता है और इन्जॉयबल बन जाता है, जॉयफुल बन जाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कंपनी. इस घंटे पर भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए लेकर आएंगे. द ग्रेट कॉमेडी नाइट पर बातें करेंगे, साथ ही में कुछ सामाजिक सूचनाएं हैं. हेल्थ वेलबींग एक्सपो भी होने जा रहा है, साथ ही में श्री राम मंदिर द्वारा अखंड रामायण पाठ ये होगा और रामलीला पर भी बातें करेंगे जैसे ही हमारे पास समय रहता है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम, बैक टू बैक सॉन्ग्स एंजॉय करने का मौका है 30 मिनट्स के लिए. योर फेवरेट सॉन्ग्स अभी आपके लिए.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, Hum Playing Bollywood's Biggest Hits, Krish Ka Saath Hai. This Saturday, 18th July, Oakland witness karega one of the biggest comedy events, jisme Krishna Abhishek aur Rajiv Thakur ko live on stage dekhne ka mauka hai for the Great Comedy Night. India ke do biggest television comedy superstars ko live dekhne ka mauka rahega. Non-stop laughter, hilarious live performances, interactive audience moments, aur aise memories yahan par hoga jo aap cherish karenge with your loved ones. To perfect family entertainment hai for all ages, family, friends, colleagues, या फिर स्पेशल समवन के साथ यहां पर जाए. शो कुछ ही दिनों में होगा तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रह गए हैं, तो लास्ट मिनट का इंतजार ना करें, टिकट्स आज ही सिक्योर करें बिफोर इट इज कंप्लीटली सोल्ड आउट. आफ्टर पे अवेलेबल है. बुकिंग के लिए असिस्टेंस की जरूरत है तो फिर 021-043-2720 पर आप कॉन्टेक्ट कर पाएंगे. ये शो 18th यानी 18 जुलाई को होने जा रहा है सैटरडे विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. टिकट्स के लिए आप bookmyevent.co.nz पर जाए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: कैफे ऑन हम। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Skeejee. It's a word now. Verb. To stop in Fiji on your way to or from skiing. Because why fly straight to the snow when paradise is on the way? Soak up the sun in Fiji and then go shred the slopes. Or relax and recover in Fiji on your way back home. Skeejee flights are on sale now. Fly to Vancouver return from $1,799 or Japan from $1,299. FijiAirways.com.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
4: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
5: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
4: Saturday, 18th July, 7 p.m. at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.

0: Coffee on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. आप सुन रहे हैं हम और बॉलीवुड के गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे. Biggest hits for you. Fiji Pyramid Foundation NZ in association with Ann's Funeral Home and On-Site Cremations present कर रहे हैं annual community health well-being expo जो होने जा रहा है Sunday 26th July को. A1 Event Center में होगा, 731 Great South Road, Papatoy. Time 10 a.m. to 3 p.m. होगा. ये free event है, free for everyone. Free screening होगा, blood pressure, diabetes, kidney, ECG, eye test. इसके अलावा info on cancer screening और early symptoms. Practical learning पर बातें होंगी. CPR, EpiPen, breathing exercises और easy yoga. Mental health and well-being पर बातें होंगी, self-care और stress, gambling and alcohol जैसे problems, education, information और career, information on diabetes, hypertension, kidney stroke, elder care, free fun for the whole family यहाँ पर होने जा रहा है. और भी जानकारी के लिए आप सरोजनी दयाल से बातें करें, sarromich @hotmail.com या फिर शनीला महराज को आप कॉल कर सकते हैं, shanila.afgfnz@gmail.com. Fiji Pyramid Foundation और Ann's Funeral Home द्वारा ये Health Wellbeing Expo आपके लिए लेकर आया जा रहा है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: Flight on Hum.
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: सिर्फ रोवा पर।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
5: Night Flight

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आशा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.

लहू लहान हुआ है फलक, ये कैसा लोहा पिघला है। एक सूरज डूब गया पीछे, एक सूरज सामने निकला है।

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Media.
1: Streaming on Rover.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
6: Playing Bollywood's biggest hits.

0: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
5: आपके सामने एक रेड बटन है,
6: दबा दिया,
5: नहीं दबाना।
7: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4।
8: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
7: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार।
9: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
7: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमाज नाउ।
10: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में?
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: weekdays 6 to 10 a.m.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: MediaWorks complaints. How can I help?
4: My kids won't shut up.
3: I'm not sure that's our problem.
4: They keep reciting lines from one of your radio ads.
3: Aw, cute.
4: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
5: What do you want, son?
6: I want me some of that real southern chicken.
4: 28 times.
3: So where are you now?
4: Eating chicken.
7: Advertise with
8: MediaWorks.
7: New Zealand listens to us.

हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

मीराबाई से लोगों ने प्रश्न किया कि चलो हमने माना कि तुमने गोविंद मोल लिया, तो जब भी कुछ मोल लिया जाता है तो उसका कुछ मूल्य होता है, तभी तो खरीदा जाता है। तो तुम्हारे गोविंद का मूल्य क्या है हमें भी बता दो, हम भी खरीद लाएं। अब मीराबाई का भक्तिपूर्ण उत्तर सुनिए।

0: पीपल हु लिव अराउंड द होनुआ एरिया, वहाँ पर 1 डिग्री है टेम्परेचर।
1: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
0: कौन है?
1: होनुआ और वेटाकरे।
0: अच्छा, होनुआ वेस्ट में।
1: किधर है होनुआ?
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: नील नायडू और पापा टोटो के रेशमा गौंडर की माँ मनोरेवा की सविता नायडू की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार वेनेसडे 15 जुलाई को दोपहर 1 बजे मनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 022-3946-895 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है, डिवीना डिवेन और राकेश लाल के पिता, सावित्री लाल के पति, तुरक सुवा फीजी के भूतपूर्व निवासी शर्ली रोड पापा टोटोय के छगन लाल की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार 15 जुलाई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-027-13215 पर कॉल कर सकते हैं। देवीना दिवेन और राकेश लाल के पिता, सावित्री लाल के पति, सुवा फीजी के भूतपूर्व निवासी शर्ली रोड पापा टोटोय के छगन लाल की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार 15 जुलाई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-027-13215 पे कॉल कर सकते हैं।
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
4: गुड मॉर्निंग, 6:03। वेदर का हाल आज काफ़ी कमाल, ब्यूटीफुल डे एक्चुअली। गाड़ी संभाल के चलाइए अगर आप रास्ते पर है, क्योंकि फॉग कवर है काफ़ी जगहों पे, लाइट विंड्स का साथ रहेगा। सनसेट होगा 5:24 पे, उससे पहले सनराइज होगा ना 7:31 AM पे।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
5: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smugco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Breakfast catch up.
4: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं ब्रेकफास्ट शो। आज 6:04 और मैं हूँ रुजबे आपके साथ। आज मैं हूँ इस सुबह के सफ़र में, एंड आई होप कि ये जो आपका सफ़र है, ये मैं हिंदी वाला सफ़र अमेजिंग बनाऊँ और ना ही इसको इंग्लिश वाला सफ़र कराऊँ आपको। बढ़िया, मेरा होप तो यही रहेगा कि मैं आपको बढ़िया से गाने सुनाऊँ, कुछ इधर उधर की बढ़िया सी बातें आपको सुनाऊँ और आपका मनोरंजन करूं, जैसे मैं यूजुअली करने की कोशिश करता हूं। तो ऐसे ही साथ देते रहिए, यहाँ पे मैसेज कीजिए 5599 पे। सम मॉर्निंग मैसेजेस वुड बी रियली नाइस। कुछ मैसेजेस ऑलरेडी आ गए हैं। मिस्टर माटा माटा ने ऑलरेडी मैसेज कर लिया है, राम राम, जय श्री कृष्णा, हैप्पी वेनसडे एवरी वन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच मिस्टर माटा माटा, आपने यहाँ पर मैसेज किया। मैंडी का भी मैसेज आ गया है, और ये हमारे रेगुलर्स है जो मुझे लग रहा है कि सुबह 4 बजे ही ये जाग जाते हैं। कैसे जागते हो यार इतने जल्दी? बट एनी वे, इनका भी मैसेज आया, गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ गुड डे। आज विजय एंड पूजा अवे और एंड दे आर गोइंग टू बी अवे फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। तो मैं हूँ आपके साथ अभी, और मैंने ये नोटिस किया है कि विंटर में एक हफ्ता तो मुझे मिल ही जाता है ब्रेकफास्ट शो करने का, और विंटर में ब्रेकफास्ट शो करने का जो आनंद है, ओहो वो तो अलग ही आनंद है। इसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस आवर विद सतिंदर सरताज।

0: Sunnyside Up.
1: सही साइड अप में हम आपके लिए एक अपबीट न्यूज़ लेकर आते हैं जो आपकी सुबह को रिफ़्रेश कर दे। और मेरी सुबह, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी रिफ़्रेश करने की, क्योंकि देखो पहली सुबह है, मैं भी इतनी जल्दी आके यहाँ पे बात करना मज़ेदार तो है, बट एनीवे अपबीट न्यूज़ ये है कि द फांगानुई रिवर जो है, ये हमारे यहाँ की एक रिवर है, दिस इज़ द फर्स्ट रिवर इन द वर्ल्ड टू बी ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड। अब इस पे से हो रहा ये है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है, इन्होंने एक लॉन्च किया है इंटरनेशनल सर्च फॉर 10 PhD रिसर्चर्स जो हेल्प करे शेप अ मोर नेचर पॉजिटिव इकोनॉमी। तो एक नया रिसर्च शुरू होने वाला है विच इज़ टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और कैसे हम और ज़्यादा सस्टेनेबल बना सके इस एनवायरनमेंट को। सो नेचर पॉजिटिव का मतलब ये है कि इट इज़ गोइंग बियॉन्ड रिड्यूसिंग एनवायरनमेंटल हार्म एंड एक्टिवली रिस्टोरिंग बायोडाइवर्सिटी एंड रीजेनरेटिंग इकोसिस्टम्स। तो जो रिसर्चर्स हैं वो एग्जामिन करने वाले कि ऑर्गेनाइजेशंस, मार्केट्स और गवर्नमेंट्स ये कैसे रीडिज़ाइन कर सकते हैं अपने सिस्टम्स एंड वेज ऑफ वर्किंग, और सपोर्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। काफ़ी बार हम देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हम एज अ कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं ये एनवायरमेंट के लिए इतनी खास नहीं होती है, जैसे कि सॉफ्ट प्लास्टिक। हम अगर अब हम अवॉइड करें, लाइक लेट्स से इफ़ वी डिसाइड कि हमें बिना सॉफ्ट प्लास्टिक का कुछ मतलब यू नो, हम हमारे डेली कंजम्पशन में वी डोंट वांट टू यूज़ सॉफ्ट प्लास्टिक, तो हम लिटरली भूखे मरेंगे। कुछ है ही नहीं ऐसा जिसमें बिना प्लास्टिक के हम सस्टेन कर पाए। मैं बीच में देखा था काफ़ी लोग ये ड्राइव पे गए थे जहाँ पे वो बोल रहे थे कि वी आर नो वील अवॉइड प्लास्टिक एंड वी विल जस्ट कंज्यूम एनीथिंग दैट डजंट हैव प्लास्टिक ऑन इट। एक चीज़ का पीस भी खाने के लिए वी कांट हैव दैट बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद अ सॉफ्ट प्लास्टिक। या अगर आप बोलोगे कि वो यू नो एक छोटा सा फॉइल वाला भी होता है, वो फॉइल इज ऑल्सो इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं इट ऑल गोज़ इनटू लैंडफिल एंड लैंडफिल ऑनेस्टली इज़ नॉट दैट ग्रेट, यू नो वो वेस्ट ही कर रहा है लैंड को। सो या देर इज़ सम मोर रिसर्च गोइंग ऑन कि कैसे हम चीज़ों को मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड मोर सस्टेनेबल बनाएं। इसके अराउंड एक और न्यूज़ हाथ लगी है, और वो ये है विच इज़ अराउंड अगेन सस्टेनेबिलिटी, कि पहली बार ऐसा हुआ है US में कि जो कोल का मार्केट है ये अब नीचे चला गया है कंपेयर टू द सोलार एनर्जी मार्केट। सो जो पावर मार्केट है US का पावर मार्केट, उसमें सोलार पावर हैज़ क्लाइम्ब 12.8% इन द टोटल एनर्जी मिक्स, जहाँ पे कोल है उनका एक ड्रॉप हुआ है एंड हिस्टोरिक लो ऑफ 12.2% कंट्रीब्यूशन रहा है उनका कोल का कंपेयर टू सोलर पावर। सो या द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड सो आर वी। दैट्स एन अपबीट न्यूज फॉर दिस मॉर्निंग।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
3: क्या? कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा, Hunua west में?
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
5: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Manuka, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Hey, dekho maa gaye.
8: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real, और conversations होते हैं बिना mask के।
9: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
10: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
11: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
12: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
13: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses mein available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
14: अपनी विंटर को वार्म अप कीजिए विद हॉट डील्स एट लाइफस्टाइल फर्नीचर। सोफास, रिक्लाइनर्स, डाइनिंग और लिविंग रूम फर्नीचर पर पाइए मैसिव सेविंग्स। विजिट कीजिए उनके तीन ऑकलैंड स्टोर्स, मनुकाओ, वेस्टगेट या माउंट वेलिंगटन। लाइफस्टाइल फर्नीचर, स्टे इन स्टाइल।
15: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate leaf protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
0: The beat of Bollywood.
16: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Bollywood's most wanted.
17: Kundi khadda. Ya seedha andar aao.
18: Main laun apna A-game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Global Headlines.
1: ग्लोबल हेडलाइंस में क्या चल रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसकी न्यूज ये खबर आपको आप तक पहुंचाते हैं एकदम ही क्विक टाइम में. कोशिश करूंगा, मैं कम बात करने की आदत नहीं है मेरे पास, लेकिन कोशिश है. सो बेसिकली हुआ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वाकई टेंशन फिर से स्काई रॉकेट हो चुका है. अगर आपने मिस आउट कर लिया है, US और ईरान के बीच में फिर से थोड़ी अफ्तार तफरी हो रही है, जिसके कारण ऑयल प्राइसेस जो है ये 9% बढ़ गए हैं फिर से. इंडिया ने समन किया है ईरान के एनवॉय को ओवर अटैक्स ऑन इंडियन सेलर्स. गर्मी काफ़ी बढ़ गई है ग्लोबल पॉलिटिक्स में. मूविंग टू न्यूजीलैंड, एंड न्यूजीलैंड ने बोइंग 777 का नया बिजनेस क्लास स्वीट्स अनवील किया, जिसमें प्राइवेट डोर्स एंड ब्लूटूथ ऑडियो और पूरी लग्जरी नेक्स्ट लेवल होने वाली है. बट हाँ, टिकट खरीदने के लिए शायद एक हाथ दो किडनी बेचनी पड़े. इंडिया में IMD ने इश्यू किया है मेजर वेदर अलर्ट. बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर की वजह से ओडिशा और बिहार में हैवी मानसून रेन हो रही है, बट कुछ पार्ट्स है साउथ में जो अभी भी हीट वेव्स के साथ बैटल कर रही है. हाँ, वेदर का अलग ही ड्रामा चल रहा है आजकल. फीजी में नया इकोनॉमिक डाटा ने ये दिखाया है कि इंटरनेशनल लायबिलिटीज़ जो है इन्होंने हिट कर लिया है $23.7 बिलियन. और फाइनली US से भी कुछ अच्छी खबर आ रही है. कह रहे हैं इन्फ्लेशन जो है ये कूल डाउन कर रहा है फास्टर देन एक्सपेक्टेड. अब ये कब तक रहने वाला है ट्रू, इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि अब फिर से वॉर का जो ड्रामा शुरू हो चुका है.
2: थोड़ा सा हॉल बना

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Breakfast show में आपका स्वागत है. आप drive show नहीं सुन रहे, breakfast show ही सुन रहे, क्योंकि आज मैं रुजबे आपके साथ हूँ breakfast show में. और बॉलीवुड की खबरें भी आप तक यहाँ पे मैं पहुँचाता हूँ. अब माधवन इज इन न्यूज अगेन. और माधवन ये कह रहे हैं कि उनके पास इनफ मनी होता टू फीड जनरेशंस अगर वो अभी भी थ्री इडियट्स और रंगदे बसंती का रेसिडुअल इनकम अगर कमाते होते तो. एंड यही जो चीज़ है, ये चीज़ ने शायद शाहरुख खान को फोर्स किया टू बिकम अ प्रोड्यूसर, ताकि वो जो उनकी मूवीज़ अच्छी की उसके ऊपर रेसिडुअल इनकम कमा सके. तो बेसिकली हमेशा जब ये मूवीज़ जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाती है तो उसका एक काइंड ऑफ पार्ट पोर्शन रेसिडुअल इनकम जो है ये जो प्रोड्यूसर्स के पास जाता है. एंड अनफॉर्चुनेटली माधवन बोल रहे हैं कि ये बॉलीवुड में ये मॉडल नहीं होता है जहाँ पे एक्टर्स को भी इसका पैसा मिले. और मैंने इसके बारे में सुना भी है, क्योंकि फ्रेंड्स जो सीरीज़ बहुत पॉपुलर हुई थी 90s में और अभी भी आई थिंक काफ़ी पॉपुलर है कुछ जनरेशन के बीच, उनके जो एक्टर्स हैं उन्होंने वो अभी भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं. और वो इसलिए क्योंकि काफ़ी स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे आज भी जब फ्रेंड्स स्ट्रीम होता है तो उसका एक पोर्शन इनके पास जाता है, एक्टर्स के पास जाता है. हाउएवर बॉलीवुड में ये अब तक नहीं है, जिसके कारण माधवन बोल रहे हैं कि मुझे आज भी अपनी चप्पल घिसानी पड़ रही है. वेल, थ्री इडियट्स की अगर बात करें तो थ्री इडियट्स जिसके ऊपर फीचर्ड थी सोनम वांगचुक, वो अभी भी आई थिंक हंगर स्ट्राइक पे है. काफ़ी समय से हंगर स्ट्राइक पे है, जिसके बारे में पता नहीं बात करना शायद अलाउड है या नहीं है, लेकिन है anyway, मेरा तो काम है ये बोलना है इसके बारे में. अगर आपको जानना है और इसके बारे में तो आप ऑनलाइन जाके सर्च कीजिएगा ज़रूर कि वो क्यों है एक्चुअली हंगर स्ट्राइक में. थोड़ी देर में आपके साथ यहाँ पे मैं खेलने वाला हूँ मिस्ट्री सॉन्ग में आपके लिए थोड़ा गाना मैं प्ले करूँगा और फिर आपको गेस करना है कि ये गाना है कौन सा. क्या आप है तैयार?
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
3: Accurate traffic.
4: Kitchen Mania, 17th birthday.
5: A high of 17, fighting cloudy today, but a very foggy start, and it's impacting that regional flights. A few have been cancelled, plenty delayed due to fog, plenty coming in, just a few impacted going out, but it's mostly for arrivals. If you're driving, Northern Motorway slowing down at Constellation to Sunnynook, still pretty quick. Northwestern, patchy from St. Luke's, Southern, slow Papakura to Papatoetoe.
4: You could win 10K when you order your new Kitchen Mania kitchen. T's and C's apply.
6: Professional by Ninjas है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846 9934 और सर्च PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Good morning breakfast show aapke liye ja rahi hai. Waise abhi time aa gaya hai ki main aapke sath yahan pe game khelu, and I want to hear from you. 0800-004-866 subah subah call kijiye yahan pe, baat karte hain. Lekin main aapke liye ek gana yahan pe play karunga. Gaane ka start play karunga. Aapko yahan pe guess karna hai ki ye gana hai kaun sa. Theek hai? To here you go. बताइए मुझे, मैं बहुत कम टाइम प्ले करूँगा. देखते हैं कौन है हमारे एक्टिव लिसनर्स, एक्टिव बॉलीवुड फैंस जो गाना पहचान पाएंगे. लेट्स सी. इज दैट टू शॉर्ट कि थोड़ा और प्ले करूँ? देखते हैं. 0800-004-866 हाउ क्विकली कैन यू गेस दिस सॉन्ग, या फिर 5599 पे आप मैसेज करके भी यहाँ पे बता सकते हो. फटाफट बताइएगा, ठीक है? मैं थोड़ा कम टाइम के लिए प्ले कर रहा हूँ अभी के लिए. लेट्स सी ना इफ यू कैन गेस इट. वेल, इट इज काइंड ऑफ अ टफ वन. अभी मैं जब सोच रहा हूँ इसके बारे में. बढ़िया, गिव मी अ कॉल 0800-004-866 या फिर 5599 पे मैसेज कीजिए अगर आपको कोई हिंट इसका पता लग रहा है. एनी गेसेस अगर आप करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो. बट या डू लेट मी नो, व्हाट डू यू थिंक, विच सॉन्ग इज आर मिस्ट्री सॉन्ग टुडे?

0: Well, this is giving it out, यार. ये तो बहुत ही अवीज़ी हो जाएगा. फटाफट भेजिए मैसेज 5599 पे और बताइए मुझे क्या लगता है आपको कौन सा गाना है ये. और इसको मैं आपको इस गाने के बाद फिर से थोड़े और हिंट्स दूंगा इस गाने के अराउंड. बट फॉर नाउ लिसन टू दिस ब्यूटीफुल ट्रैक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में. वैसे राहत फतेह अली खान आ रहे हैं हमारे सुपर सिटी में यहाँ पे एक बहुत ही आइकॉनिक नाइट लेकर. अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो ट्रस्ट अरीना में 25 जुलाई को इनकी ये अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूज़िक होने वाली है जहाँ पे आपको सोल स्टरिंग कव्वाली इन्जॉय करने का भी मौका मिलेगा और उनकी पावरफुल वॉइस लाइव एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. एंड ट्रस्ट मी अगर आपने इनकी आवाज़ पहले अगर एक्सपीरियंस नहीं की है लाइव इनका परफॉर्मेंस अगर पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है देन ये शो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि यू विल लव इट. इट्स नॉट जस्ट हिज वॉइस हिज साउंड लाइक वो ऑब्वियसली बहुत अमेजिंग है बट ऑल्सो जस्ट इन जनरल द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द होल इवेंट इज जस्ट फैबुलस. लाइटिंग से लेकर साउंड एंड एवरीथिंग एल्स इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग. विजुअल्स आर रियली गुड. सो 25 जुलाई को ट्रस्ट अरीना में राहत फतेह अली खान आ रहे हैं द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं. एंड द शो इज़ प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस गोट लाइव ड्रीम्स एंटरटेनमेंट सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस. dryTickets.com पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे तो फटाफट इसके टिकट्स बुक कर लीजिए. श्योरली दिस शो इज़ गोइंग टू बी अ सोल्ड आउट शो तो टिकट्स फटाफट बुक कर लीजिएगा dryTickets.com पे जाके. और डेट याद रखिएगा इट इज़ द 25th of July.
1: Let's go.
2: Straight from the heart.
0: रोनल्ड आपका आंसर एकदम ही परफेक्ट आया है. आपने लिटरली वो गाना जो वर्डिंग्स है वो यहाँ पे लिखकर भेजा है. थैंक यू सो मच फॉर दैट.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. हमारे साथ यहाँ पे कोई जुड़ना भी चाह रहा है. Hi, good morning. आपका स्वागत है on air.
1: Okay, thank you. Hi, Rusby. How are you?
0: I'm good. How are you doing?
1: Good, thanks. Actually, आपने जो song बताया था mystery song, so उसका answer है हम हेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते.
0: क्या बात है, आपने पहचान लिया वो दो तीन सेकंड में.
1: Yeah, I think just first time आपने बजाया था ना तभी मैंने पहचान लिया. But I was driving, so I thought I'll just करना कि भी call लेता.
0: अच्छा, क्या बात है, क्या नाम है आपका?
1: हेतल.
0: हेतल, हेतल, thank you so much. आप usually early start करते हो सुबह सुबह?
1: हाँ, मैं अभी start करती हूँ about 6:30.
0: क्या बात है, चलो ठीक है.
1: Yeah, और मैं mostly breakfast so सुनती हूँ just in between 6 to 6:30. And and when I finish, I think I'm listening Ketan.
0: अरे क्या बात है. मैं बाद में आता हूँ, मैं शाम को आता हूँ usually.
1: Yeah, I know. कोई कोई बार मैं आपको भी सुनती हूँ, आपको और सैंडी को.
0: अच्छा ठीक है.
1: हाँ,
0: ज्यादा मिस मत करना विजय पूजा को. मैं हूँ यहाँ पे बस अभी एक ही हफ्ता हूँ.
1: ओके, ना कोई नहीं, आप कल भी आने वाले हो?
0: जी, मैं कल भी आने वाला हूँ. ट्यून आउट मत करना.
1: ना, डेफिनेटली, नो वरीज. चलो,
0: थैंक्स हेतल, नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक्स, यू टू, बाय. वेल, अगर आपने मिस आउट कर लिया है तो जो गाना मिस्ट्री सॉन्ग में आपको सुना रहा था वो ये था. हेतल ने अभी आंसर तो दे दिया है, लेकिन आप भी यहाँ पे गेस कर सकते हो 4599 पे, अगर आपको भी पता चल रहा है ये कौन सा गाना है. मुझे लगा था ये काफी इजी रहेगा, बट एनीवे दिस इज जस्ट डे वन ना. अभी आप इंतजार कीजिए, कल देखना, अभी कल चैलेंज एक्सेप्टेड है अभी. बट फॉर नाउ सम मैसेजेस एंड उसके बाद आपके लिए आज का मिस्ट्री सॉन्ग.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Chup ho jao papiyo, chup ho jao.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Traffic. Experience fun at Snow Planet.
2: A foggy start, finding cloudy, high of 17. Fog has impacted a number of domestic flights, particularly in terms of delays. That's going on airport-wise. Motorway-wise, we're fine. Southern, 30 minutes, Manukau to the city. Slow Papakura to Mount Wellington. Northwestern, 25 in from Massey. Slow at the Causeway in St. Luke's to the city. Northern, 25 from Constellation. Slow patches there to the bridge.
1: Ski, board, slide, tube. Fun for the whole family at Snow Planet. Not a million miles away.
3: Discover the magic at Go Bananas Jaike, where आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो। हम हमेशा आपके पास हैं।
4: गो बनानास चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस।
3: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
4: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
6: Now's the time to book your next tour with House of Travel. Save $500 per couple on Globus small group tours to Japan, Vietnam, South Africa and more. See the very best of every destination without the stress. Talk to our team today, only at House of Travel. T&Cs apply.
7: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
8: Neighbourly News. Local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
9: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: Breakfast Catch-Up. Throwback.
11: Throwback में आपके लिए आज का मिस्ट्री सॉन्ग जो आप लोगों ने यहाँ पे ही सही गेस किया है एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट। वेल सोनू निगम ने गाया इस गाने को फ्रॉम द मूवी रब ने बना दी जोड़ी। इस गाने में आपको पता चलता है कि सोनू निगम कितने वर्सटाइल सिंगर हैं। बढ़िया गाना गाया है, एंजॉय कीजिएगा। गुड मॉर्निंग।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: गुड मॉर्निंग. आज का वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि कोई हिल स्टेशन पे आके बैठे हैं. फॉग कवर है काफ़ी जगहों पे और गाड़ी संभाल के चलाइएगा. फाइन होने वाला है आफ्टरनून में. लाइट विंड्स का साथ रहेगा. सनराइज 7:31 AM पे होगा. फील्स लाइक 7 डिग्रीज राइट नाउ.
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेडजरस मनको. इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड furniture for everyday luxury living.
0: Morning madness.
1: गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग मैडनेस में आपका स्वागत है. हाय, मेरा नाम है रुजबे और मैं हूँ आज ब्रेकफास्ट शो में आपके साथ. और सिर्फ आज ही नहीं, ये पूरे हफ्ते मैं आपके साथ रहने वाला हूँ. एंड मैं इसलिए हूँ क्योंकि विजय और पूजा छुट्टी पे है और एक हफ्ते के लिए उनकी छुट्टी रहेगी. तब तक मेरे नाजुक कंधों पे ये जिम्मेदारी आई है कि ब्रेकफास्ट शो चलाना है. तो बहुत सारे काम होते हैं, आप मेरा साथ देते रहिएगा. बट एक इम्पॉर्टेंट मतलब मेरा फेवरेट सेगमेंट जो है, काफ़ी समय बाद मेरे को करने का यहाँ पे फिर से मौका मिल रहा है

0: और जो थोड़े लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं किस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ. सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट सेगमेंट. एंड इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैसेज करके बताइए यहाँ पे 5599 पे, या फिर आप यहाँ पे कॉल करके भी बता सकते हो 0800-004-866. ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसके लिए मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड होता हूँ, और वही एक प्रॉबेबली रीज़न है जिसके कारण मैं यहाँ पे सुबह आके ब्रेकफास्ट शो करता हूँ. अपार्ट फ्रॉम यू, यू आर ऑल्सो अनदर रीज़न, बट आप मेरे को बताइए यहाँ पे, अगर आप आई वॉन्ट सी कोई है क्या हमारे लिसनर्स जिन्होंने पहले सुना है ब्रेकफास्ट पे मुझे. 0800-004-866 इज द नंबर, आप यहाँ पे कॉल कीजिए और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कीजिए. वेल, थोड़ी देर में आपके लिए वो सेगमेंट यहाँ पे लेकर आऊँगा, लेकिन हाँ काफ़ी बातें चल रही है अभी बिकॉज सेमीफाइनल्स जो है फीफा वर्ल्ड कप के, ये अभी थोड़ी देर में किक ऑफ, एक्चुअली ऑलरेडी किक ऑफ हो गई है, शुरू हो गया है सेमीफाइनल्स, एंड काफ़ी लोग उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड है कि आज कौन सी टीम जीतने वाली है. वेरी क्रिटिकल मैच. आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेन या फ्रांस? सैंडी ने देखो फ्रांस पे पैसे लगाए, पैसे नहीं लगाए बट फ्रांस के ऊपर बेट लगाया है, और अभी देखते हैं. स्पेन भी वैसे काफ़ी स्ट्रांग तो है, लेकिन हाँ फ्रांस इज गोना बी, या इट्स गोना बी अ टफ वन. बट हम इनसे बात करते हैं. हाय, गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग
0: रुपे जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मोनिका.
0: हाय मोनिका. मोनिका बताइए आपने कैसे कॉल किया, मतलब पहले तो बताइए कि आप ने वो क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो आंसर करने के लिए कॉल किया या?
1: हाँ, आपका फेवरेट सेगमेंट है राशिफल बताना.
0: अच्छा, राशिफल बताना, ठीक है. तो आपका भी फेवरेट है वही, ऐसे मेरा ही फेवरेट है?
1: नहीं नहीं, फेवरेट है, लेकिन द वे यू यू एक्सप्लेन ऑल द राशिज, इट्स लुक लाइक कि अभी चलता रहेगा ये राशि सेगमेंट रादर देन तो वेट करते हैं अभी कब तक अपनी आएगी, तब तक वेट करते रहते हैं.
0: हाँ, थोड़ा लंबा चलता है ना. ओके, मैं कोशिश करूंगा आज थोड़ा, नहीं नहीं आज ब्रीफ ब्रीफ रखूंगा.
1: अच्छा, नहीं नहीं, इट्स ओके.
0: Okay. Thanks, Monica. Thank you so much, yeah, for your call.
1: Thank you. Bye-bye.
0: Yeah, that's absolutely right. Rashifal coming very soon for you. But usse pehle, let's start off with some Dhurandhar track. Rashi Vibe is the segment. Yes, yahan pe bhi ek message aa gaya. Yes, yes, it is Rashifal segment. Rashi Vibes, jo aapke liye thodi der mein main lekar aaunga. Tab tak ke liye enjoy kijiye.

0: राशि वाइब्स।
1: राशि वाइब्स का टाइम आ गया है और राशि वाइब्स में हम आपके लिए लेकर आते हैं कि आज आपकी राशि क्या वाइब कर रही है। शुरुआत करते हैं एरीज मेष राशि से। आज क्रिएटिव एनर्जी आपकी एकदम पीक पर है, रोमांटिक लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आज। बस शॉपिंग करते वक्त थोड़ा डबल चेक कीजिए आपके बजट को, क्योंकि आप आज शायद थोड़ा ओवरबोर्ड जा सकते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि आपके लिए कहा है कि आपकी वाइब घर में और फैमिली में बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है और आपको एकदम ही फील लाइक होम ऐसा फील होने वाला है और आपके लिए फैंटेस्टिक डे है। आपके रूटीन पे आप लगे रहिए और जो आपकी स्टेडी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उस पे उससे आप आज खुश रहिए, ज़्यादा इधर उधर मुँह मत मारिए। जेमिनी आपके लिए ये कहा गया है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आज प्योर मैजिक है, बातों से ही आप सबका दिल जीत लोगे और आपकी जो क्विक अडेप्टेबिलिटी है काम पे वो आपके बॉस को बहुत सीरियसली इम्प्रेस करने वाली है। सो मिथुन आप अपने बॉसेस को आज इम्प्रेस कर दोगे। कैंसर यानी कि कर्क राशि आपके लिए कहा है कि मून आपके साइन में है, इसका मतलब ये है कि जो आपका इंट्यूशन है और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो एब्सोल्यूट पीक पर है आज और सब कुछ एकदम ही स्मूदली जगह पर प्लेस हो जाएगा। स्पेशली आपकी जो फैमिली है उनके साथ या फिर अगर कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट्स को आप रैप अप करने के इसमें हैं तो वो भी आज बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सकता है। लियो यानी कि सिंह राशि आपके लिए कहा है कि आपके पैरों के नीचे आज ऐसी एक स्प्रिंग लगी है कि आप जहाँ जहाँ पैर रखोगे फुल ऑफ स्टार पावर एंड मैग्नेटिज्म आज होगा वहाँ पे, तो आज तो आप छाने वाले हो हर जगह। आप इसी एनर्जी को चैनल कीजिए आपके काम पे और थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि शायद कोई ऐसा सडन स्नीकी एक्सपेंस आ सकता है आज। वर्गो यानी कि कन्या राशि आपके लिए कहा है थोड़ा आज टाइम लीजिए आप अपने आप के लिए, ये क्वाइट टाइम लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये क्वाइट टाइम आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी और पीस लेकर आएंगे एंड आपको कुछ हाईली फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में और इन्वेस्टमेंट में ये भी दे सकते हैं, तो क्वाइट टाइम आज बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट लिब्रा यानी कि तुला राशि आपके लिए एक फैंटास्टिक डे है आज। आप सोशली अपने दोस्तों के साथ बहुत कनेक्ट करने वाले हैं, कम्युनिटी गैदरिंग में आप शायद जा सकते हैं आज और आप उनकी एडवाइस शायद आपके लिए एक नया ब्रिलियंट सा डोर खोल दे। अब देखो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने बनाया है अपने मन से, लेकिन नहीं, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, मेरी पार्टनर भी स्कॉर्पियो है, बट ये जो आया है वो आया है, अपनी पार्टनर की सुनिए ऐसा वो राशिफल में कह रहे हैं। सेजिटेरियस धनु राशि आपका जो फेमस वॉन्डरलस्ट और एम्बिशियस गोल्स है ये बहुत बड़े हो रहे हैं और आज के दिन इसको एक लकी बूस्ट भी मिल सकता है, तो अपनी आंखें है उसको वाइड खुली रखिए क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रैवल या लर्निंग आपकी तरफ आ रही है। सो यस, योर वॉन्डरलस्ट एंड एम्बिशियस गोल्स आर गोइंग टू सी समथिंग स्पेशल। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि आपके लिए कहा है कि एक हिडन डोर है जो खुल रहा है आपके लिए आज और एक डीपर इमोशनल हीलिंग एंड शेयर्ड रिसोर्सेस की तरफ आपको ले जा रहा है। आपको जो आपके बिहाइंड द सीन्स एफर्ट है उसको बस आप पे आपको भरोसा रखना है, उसके ऊपर आपकी डेडिकेशन जो है इसको आप कायम रखिए क्योंकि ये कुछ बड़ा बिल्ड करने वाला है आपके लिए, सो लगे रहिए। कुंभ यानी कि एक्वेरियस आपके लिए कहा है कि आप शायद किसी इंस्पायरिंग इंसान से आज मिलने वाले हैं, तो आप अकेले मत घूमिए, इट्स ओके टू बी अराउंड पीपल टुडे क्योंकि आज कोलैबोरेशन में ही आपका लकी चार्म छिपा है, आपका हार्डवर्क जो है ये नोटिस हो रहा है। बस थोड़ा स्क्रीन से आज आप ब्रेक ले लेना और इधर उधर थोड़ा टी पॉइंट पे कॉफ़ी पॉइंट पे थोड़ा जाके लोगों से मिलना आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। Pisces, finally, मीन राशि आपके लिए कहा है कि आपके लिए एक बहुत ही बैलेंस्ड डे है, ये वंडरफुली बैलेंस्ड डे रहने वाला है आपका, और जैसे आपको चाहिए वैसा ही ये दिन आज फ्लो होगा. आपको कुछ नए रियलाइजेशंस होंगे, उसको आप ट्रस्ट कीजिए, और फ्यूचर के बारे में आप काफ़ी सोचेंगे, और एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि अल्लाह ये तो बस इधर ही तो था, ऐसा भी

0: हो सकता है. सो या हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड हैव अ स्टेलर डे अहेड. ये आप सभी के लिए. एंजॉय.
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
0: देखो अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है शील की. उन्होंने कहा है स्कॉर्पियो वन मोर टाइम, एंड आई वुड लव टू डू स्कॉर्पियो वन मोर टाइम. इसी उम्मीद से कि शायद मेरी भी बीवी सुन ले. स्कॉर्पियो आपके लिए ये कहा है कि आप टेक चार्ज लीजिए, लीड द वे, क्योंकि यूनिवर्स आपको पुश कर रही है टूवर्ड स्पॉटलाइट. इट्स योर टाइम टू यू नो टेक ओनरशिप. और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने पार्टनर की एडवाइस सुनिए, क्योंकि उनकी एडवाइस आपके लिए एक ब्रिलियंट नया दरवाज़ा खोल सकती है. This was for Scorpio.
3: 80s ke retro gaane.

0: सेलिब्रिटी अलार्म में आपके लिए मैं यहाँ पे एक सेलिब्रिटी की आवाज प्ले करूंगा और आपको गेस करना है कि ये कौन से सेलिब्रिटी है। अच्छा, तो आज देखो मैं हूँ तो थोड़ा सा हटके कुछ अलग ही लेकर आऊंगा आपके लिए, तो आई एम ट्राइंग इट आउट, लेट्स सी कितने लोग इसको गेस कर पाएंगे। बताइए ये किसकी आवाज़ है। ठीक है, आपको मैं एक चीज सुनाने वाला हूँ, यहाँ पे एक ऑडियो क्लिप सुनिएगा।
1: चल बजाते हैं।
0: बताइए ये आपको पता है किसकी आवाज है। एनीवे, थोड़ा और सुनिए।
1: एक बच्चा है, उसकी लगी पड़ी है।
2: हार्ट वर्कआउट मिलेगा,
1: कितना त्रास देगा थैनोस।
0: देखो अभी ये तो बहुत अच्छा हिंट हो गया है। ओके, लेट्स सी। हाय, आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। आप नाम मत लीजिए सीधा, आप इस सेलिब्रिटी के अराउंड थोड़ा हिंट दीजिए ताकि दूसरे भी कोई गेस कर सके ना। गुड मॉर्निंग।
3: हेलो, आई थिंक
0: नाम मत लीजिएगा, बस हिंट दीजिएगा।
3: नाम नहीं, ओके, सो बॉलीवुड का हीरो है।
0: चला, बढ़िया। और आपका क्या नाम है?
3: उसकी वाइफ भी काफी फेमस हीरोइन है।
0: क्या बात है। और आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम प्रभजोत कौर।
0: प्रभजोत, थैंक यू सो मच यहाँ पे कॉल करने के लिए। यार आपने कैसे इतने जल्दी पहचान लिया यार इनको, आप मतलब फैन हैं इनके?
3: आई थिंक सबको पता चल जाएगा, इट सीम्स लाइक क्वाइट इजी।
0: अच्छा, ऐसा बोलते हो आप, सबको पता चल जाएगा?
3: हाँ जी।
0: अच्छा, अब तक मेरे को एक भी मैसेज नहीं आया। थैंक यू सो मच प्रभजोत, थैंक यू यार,
3: थैंक यू,
0: बाय, हैव अ गुड डे। तो बताइए आप, अगर आपको पता चल गया, देखो प्रभजोत को तो यार लिटरली एक डायलॉग में ही पता चल गया, वो बहुत बड़ी फैन भी है ऐसा लग रहा है, बट आपको अब तक कोई हिंट आया है? डू यू नो हु इज दिस सेलिब्रिटी दैट यू आर लिसनिंग टू? एक और बार सुनाऊं आपको? चलो कोशिश करते हैं, एक और बार आपको सुनाए यहाँ पे, लेट्स गो।
1: चल बजाते हैं। एक बच्चा है, उसकी लगी पड़ी है।
2: हार्ट वर्कआउट मिलेगा,
1: कितना त्रास देगा थैनोस।
0: देखो काफी हिंट है इसमें। अच्छा, काफी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सिमिलर मैसेज आए। चरिशा आपका मैसेज आया, अमित गोस्वामी आपका भी मैसेज आया, लेकिन देखो जो हिंट हमें प्रभजोत ने दिया है वो है कि ये एक बॉलीवुड हीरो है और इनकी वाइफ भी एक हीरोइन है, मतलब एक्टर है। तो जो आपने यहाँ पे आंसर भेजा वरुण धवन, उनकी वाइफ तो नहीं है हीरोइन। हाँ, ये है हीरो वरुण धवन, बट उनकी वाइफ नहीं है। सो आई गिव यू सम टाइम, यहाँ पे मैसेज कीजिए आप मुझे 5599 पे, बताइए क्या लगता है आपको कौन है ये। ये जो एक्टर है इन्होंने रिसेंटली काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। हाँ, मतलब काफ़ी चर्चे में रहे हैं ये पिछले 6-8 महीनों से काफ़ी। अभी वो वर्ड नहीं बोल सकता हूँ मैं ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा, बट आप गेस कर सकते हो। 5599 पे आप मैसेज करके यहाँ पे गेस कीजिए। अंकुर बोल रहा है रितेश देशमुख। ओके, नंदिनी आपका आंसर यहाँ पे सही आया है, आपने फाइनली गेस कर लिया। ओके, लुक एट द हिंट्स ऑल्सो, मतलब हिंट्स भी दे रहा हूँ मैं आपको, हिंट्स भी आप थोड़ा हिंट्स पे भी ध्यान रखिए, और जो आवाज़ है आवाज़ के ऊपर ध्यान रखिए, और जो टोन बोल रहा है ना, जो बातें बोल रहा है उससे भी आपको शायद पता चल जाए।
1: चल बजाते हैं।
0: सो या, चल बजाते हैं एक वन है।
1: कितना त्रास देगा थैनोस,
0: ये भी जो वर्ड्स है ये काफ़ी टिपिकल है विद दिस एक्टर। सो या, दैट इज़ आई थिंक द सेलिब्रिटी अलार्म फॉर द डे। आप यहाँ पे गेसेस आपके भेजिए 5599 पे। दोनों जो ये पर्सन है ये भी एक बॉलीवुड हीरो है और इनकी वाइफ भी एक बॉलीवुड हीरोइन है, और मैंने एक हिंट दिया था कि पिछले 6-8 महीनों में इनने बहुत रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और इनकी बहुत वाह वाह हो रही है, जो डिज़र्व भी करते हैं। विकास, थैंक यू सो मच, आपका भी आंसर आ गया यहाँ पे सही है, और एक और आंसर आया है वो भी सही है, आरे आपने लिखा है। तो भेजिए आप भी आपके आंसर्स 5599 पे। थोड़ी देर में आपके लिए न्यूज़ हेडलाइंस ओनली ऑन हम

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. वैसे आज का जो सेलिब्रिटी अलार्म था वो सही गेस किया है काफी लोगों ने. दैट वॉज रणवीर सिंह. रणवीर सिंह ने एक्चुअली डेड पूल का जो हिंदी वर्जन है उसमें आवाज़ दी थी, और वो जो मैं ट्रेलर आपको सुना रहा था वो डेड पूल 2 हिंदी वाला ट्रेलर था, जहाँ पे रणवीर सिंह की आवाज़ थी. वो तो थोड़ी सी अलग थी, बट या रणवीर सिंह फैंस डिड आइडेंटिफाई दैट वेरी इजीली. सो वेल डन. कल आपके लिए और एक कुछ लेकर आऊँगा, अलग सा नया सा. बट या फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर न्यूज़
1: हेडलाइंस.
0: न्यूज़ हेडलाइंस आपके लिए यहाँ पे लेकर आते हैं. सो काफ़ी कुछ हो रहा है. वैसे हमारे न्यूजीलैंड और इंडिया के रिलेशन के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट लेवल पे चला गया ये रिलेशन, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स लक्सन और मोदी ने ऑफिशियली अपग्रेड कर लिया हमारे टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. और एक और ट्रीट है, मैसिव ट्रीट फॉर फुटबॉल फैंस. To celebrate 100 years of sports unity, Indian men's football team, the Blue Tigers, New Zealand tour करने वाले हैं पहली बार इस नवंबर में, और उसकी जो डिटेल्स है ये आप तक हम पहुँचाएंगे जैसे हमें और भी मिलते हैं. बट या फुटबॉल फैंस, ब्लू टाइगर्स आर गोइंग टू बी टूरिंग न्यूजीलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर. ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखें तो जो ऑयल प्राइसेस है ये वापस से हाई पे जा रहे हैं, एंड दे हैव हिट 1 month हाई ड्यू टू राइजिंग टेंशंस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. इंडिया ने ऑफिशियली समन किया है ईरान के एनवॉय को ओवर सेफ्टी कंसर्न्स एंड ओवर इंडियन सेलर्स इन द शिपिंग लेन्स. थोड़ा टेंशन का माहौल है वहाँ पे. स्पोर्ट्स की अगर बात करें, जसप्रीत बुमराह ने एक रोरिंग कमबैक किया है, और जो इंग्लैंड में अभी सीरीज चल रही है उसके आगे जसप्रीत बुमराह ने धूम मचा दी है. फीजी की अगर बात करें तो स्टैट्स है, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज़ की बात की है, के बारे में थोड़ी टच किया है. अराउंड 23.7 बिलियन डॉलर्स की लायबिलिटी है. ऑन अ लाइटर नोट, नाउआ ने रिकॉर्ड किया है इट्स एब्सोल्यूट कोल्डेस्ट जुलाई नाइट एवर. क्या बात है. वेल स्पोर्ट्स में और भी अगर बात करें तो फुटबॉल को हम कैसे अभी इग्नोर कर सकते हैं. स्पेन और फ्रांस के बीच भिड़ंत चल रही है, जहां पे स्पेन करंटली लीड कर रहे हैं. वेल अभी एग्जैक्ट डिटेल्स तो है नहीं मेरे पास, बट उसकी डिटेल्स भी आप तक पहुंचाऊंगा मैं बहुत जल्द.
1: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड Indelible Homes, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स. विजिट indelibleHomes.co.nz.
0: So yes, Spain is leading right now 1-0. France ke aage hai, but we are right now just into the game. Pehla half hi ho raha hai abhi tak. To iske details bhi aap tak pahunchayenge. Sunte rahiye The Breakfast Show.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living. Hum. Accurate traffic.
3: Switch to AMI car insurance.
4: High of 17, fine and cloudy today. Fog will clear. That fog has impacted domestic flights coming into the airport in particular. Lots delayed and a few cancellations. Northern motorway flowing well. 27 minutes Constellation Drive to the city. We're heavy at Constellation, slow to the bridge, a little heavy at Esmond as well. Northwestern, slow from the causeway, but heavy at times. 32 in from Massey. Southern, slow from Papakura, 43 in from Monaco.
3: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
5: Ski Jeep. Yeah, it's a real word now. Verb, to stop in Fiji before you hit the slopes. Because why fly straight to the snow when your island paradise is on the way? Land in paradise, soak up the sun, and then go shred Japan. Or hit the slopes in Vancouver. Rather unwind a pre-ski? Relax and recover in Fiji on your way back home. This winter, don't just ski, ski G. Check out fijiairways.com/ski G.
6: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary राहत फतेह अली खान live in concert along with शाहजमान अली खान Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6477.
7: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
8: Sorry about that.
7: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
8: Kogan Mobile, true Aussie value.
7: Terms and conditions apply.
9: The Cooperative Bank has shared over $25 million in profit with our customers. Switch to the Cooperative Bank today and get a share of $25,000. Bank better, New Zealand. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
10: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
2: The beat of Bollywood.
11: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Birthday greetings.
12: Iska birthday bhai?
13: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
12: Happy birthday to you.
0: आज 15 जुलाई आज का दिन अगर आपके लिए खास है, आज के दिन अगर आप आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आज अपना बर्थडे मिहिर सेलिब्रेट कर रहे हैं. मिहिर, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आपके दोस्तों की तरफ से, आपके चाहने वालों की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू. आप बहुत ही टैलेंटेड एक म्यूजिशियन है, सिंगर है, और आपकी जो म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है ये भी आपको बड़े प्यार से विश करना चाह रही है. आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. इसके साथ साथ आज अपना बर्थडे तेजस सेलिब्रेट कर रहे हैं. तेजस, आपको भी ढेर सारी बधाई आज के दिन की. हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू. आपको भी आपके दोस्तों की तरफ से ढेर सारा प्यार एंड लॉट्स ऑफ लव. आज अगर आप भी आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा यहाँ पे 5599 पे मैसेज करते हुए.

0: Future.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Traffic. Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
3: High of 17, fine and cloudy today, fog will clear. That fog has impacted domestic flights coming into the airport in particular. Lots delayed and a few cancellations. Northern motorway flowing well, 27 minutes Constellation Drive to the city. We're heavy at Constellation, slow to the bridge, a little heavy at Esmond as well. Northwestern, slow from the causeway but heavy at times, 32 in from Massey. Southern, slow from Papakura, 43 in from Monaco.
2: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
4: Coffee? The usual?
5: How about the unusual?
6: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
7: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate Bed, now half price. Queen size from 2799. Find more birthday deals in-store and online. Beds R Us, Medical and Poke Kohe. Celebrating 36 years of great sleep.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
11: Skeegee. Yeah, it's a real word now. Verb, to stop in Fiji before you hit the slopes. Because why fly straight to the snow when your island paradise is on the way? Land in paradise, soak up the sun, and then go shred Japan. Or hit the slopes in Vancouver. Rather unwind a pre-ski, relax and recover in Fiji on your way back home. This winter, don't just ski, Skeegee. Check out fijiairways.com/Skeegee.
12: Zabardast hits.
13: Shuru ho jaye to rukte nahi.
12: Playing Bollywood's biggest hits.
0: The Breakfast Show.

थ्रोबैक में आपके लिए एक गाना लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसी सैटरडे 18 जुलाई आप हंस हंस के लोटपोट होने वाले हैं, क्योंकि द ग्रेट कॉमेडी नाइट हो रहा है आपके लिए। कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर ले रहे हैं स्टेज, तो इंडिया के वन ऑफ द टू बिगेस्ट टेलीविजन कॉमेडी सुपरस्टार्स को आप लाइव परफॉर्म करते देख सकते हैं। नॉन स्टॉप लाफ्टर होगा, हिलेरियस लाइव परफॉर्मेंस तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट इवेंट ये होने वाला है। इसके टिकट्स बहुत ही कम टिकट्स बाकी है, तो सोल्ड आउट होने से पहले आप इसके टिकट्स फटाफट ले लीजिए। विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ये शो होगा ऑन सैटरडे 18th of July। bookmyevent.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे। आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन फटाफट टिकट्स आप बुक कर लीजिए, बिकॉज बहुत कम टिकट्स बाकी है। एंड विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर एक बढ़िया वेन्यू है, जहाँ पे आप एक मंजे हुए जो कलाकार हैं हमारे जो आने वाले हैं यहाँ पे, कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर, इनको आप लाइव देख सकते हैं। और जो स्टैंड अप कॉमेडी ये करते हैं, जो कॉमेडी ये लेकर आते हैं, ये टीवी पे तो बहुत मज़ेदार होती है, और लाइव का अलग ही मज़ा होता है। ये आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आप अटेंड करेंगे इस इवेंट को। bookmyevent.co.nz is where you'll get the ticket.

0: accurate traffic.
1: Wardrobes Direct, great value wardrobes.
2: High of 17, a foggy start, should be fine and cloudy today. That fog has impacted flights coming into the airport, domestic mainly, with lots of delays and a few cancellations. Driving, Northern Motorway, 27 minutes in from Constellation Drive, slow all the way from there, a few heavy patches. Northwestern, 32 in from Massey, slow from the causeway, heavy close to the city. Southern, 43 in from Monaco, slow from Papakura, heavy at times.
1: Wardrobes and sliding doors for all budgets. Visit Wardrobes Direct, Mount Wellington and Silverdale showrooms.
3: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर, T's and C's apply. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: गुड मॉर्निंग, 8:02 और वेदर का हाल, ओहो बहुत ही कमाल भाई, फील्स लाइक 6 degrees राइट नाउ, इट्स गॉट इवन कूलर. मैं जब सुबह सुबह आया था तब 7 degree फील हो रहा था, अभी 6 degree हो गया. 7:31 को सनराइज हो गया, 5:24 को आज होगा सनसेट.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो. मैं हूं रुसबे, आपके साथ मैं हूं यहाँ पे 10 बजे तक. आपको सुनाऊंगा एक से एक गाने और ट्रेंडिंग क्या चल रहा है. अभी एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है और वो है जो सेमीफाइनल चल रहा है फीफा का, फ्रांस और स्पेन के बीच. हाफ टाइम पे हम आके पहुँचे हैं एंड करंटली इज इट लुकिंग लाइक एन अपसेट और इज इट वॉट वॉज प्रिडिक्टेड. स्पेन और फ्रांस की भिड़त में स्पेन लीड कर रहा है 1-0. Well, predictions were France was going

going to be in the finals. But let's see. Second half mein kya hota hai. सैंडी और मेरे बीच में हमने बेट किया था. मेरी टीम तो बाहर निकल गई थी, सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंची. बट या सैंडी वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि फ्रांस इज गोइंग टू बी इन द फाइनल्स एंड फ्रांस इज गोइंग टू विन द कप. बट अभी का जो हाल है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि स्पेन मे बी ऑन द टॉप बिकॉज 1-0 लीडिंग. बट एनी वे वी हैव सीन अ लॉट ऑफ अपसेट्स इन दिस वर्ल्ड कप ऑलरेडी. सो लेट्स सी आज क्या होता है. इसके अपडेट्स आपके लिए यहाँ पे हम लेकर आते रहेंगे. But for now, let's start off this hour with some pumpy tracks. आज आपके लिए मेरे को टॉपिक ऑफ द डे लेकर आना है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. काफ़ी टाइम के बाद मैं सुबह यहाँ पे आपके साथ एक टॉपिक लेकर आऊँगा और आपके व्यूज़ जानूँगा, डिस्कशन करूँगा. अब मुझे आपसे जानना है कि इज देयर एनीथिंग दैट इज़ ऑन टॉप ऑफ योर माइंड जिसके बारे में आपको बात करनी है. 5599 पे मेरे को मैसेज करके यहाँ पे आप बताइए ऐसे कोई टॉपिक्स जो आपको चाहिए मैं आज छेड़ू, इफ यू नो व्हाट आई मीन. 5599 पे आप मैसेज करके बताइए, ठीक है. BF कीवर्ड के साथ आप यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हो ऐसे कौन सा टॉपिक है जो आपके अराउंड आप बहुत सोच रहे हो इसके बारे में और आपको चाहिए कि यार इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की जाए. लेट्स गिव इट अ शॉट.

0: गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो। आज मैं रुजबे आपके साथ हूँ ब्रेकफास्ट शो में, और अभी टॉपिक ऑफ द डे की बारी आ गई है। एक मैसेज हमारे पास यहाँ पे आया है और अराउंड द टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। नाउ आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है, क्योंकि इसमें पता नहीं, लेकिन मैंने कल ड्राइव शो में बात की थी कि यू नो आई एम ऑल इन फॉर अ हेल्दी डिबेट, अ हेल्दी डिस्कशन, सो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस एंड वी शुड एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। तो ये जो मैसेज आया है, दिस इज अराउंड द रिएक्शन टूवर्ड्स इंडियंस ड्यूरिंग मोदीज विजिट। इट इज डेफिनेटली समथिंग टू टॉक अबाउट हाउ मच अंडरलाइंग रेजिस्टेंस देयर एग्जिस्ट। ये है जो हमें मैसेज आया है, एंड टॉपिक इज अराउंड दिस ओनली कि अभी रिसेंटली यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, उन्होंने विजिट किया, एंड देन उसके अराउंड काफ़ी कुछ प्रोटेस्ट भी हुए। आई वॉन्ट स्टार्ट अ टॉपिक अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक कि क्या ऐसा परसेप्शन था, हाउ डिड यू फील देर वॉज इनफ रेजिस्टेंस, लाइक देर वॉज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, या डिड यू फील जो व्यू है आपका डे टू डे वर्क लाइफ में वो कुछ चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। 0800-004-866 इज द नंबर, गिव मी अ कॉल ओवर हियर और बताइए आपका क्या व्यू है ये जो भी हुआ वीकेंड पे, यू नो सच अ हिस्टोरिक मोमेंट जो हुआ, इसके अराउंड आपका क्या व्यू है, व्हाट वाज योर टेक अवे आउट ऑफ इट। 0800-004-866 is the number. You can give us a call over here and you can share your thoughts. वैसे भी हमें कुछ messages आए थे हमारे group पे कि हमने इसके बारे में बात नहीं की, या ये नहीं किया या वो नहीं किया, तो वो उसका हमने explanation हमारे groups में और Facebook पेज पे दे दिया है। But right now we are opening the phone lines 0800-004-866. Give us a call and yeah, share your thoughts. Hi, आपका स्वागत है।
1: Hi, good morning, Rishme.
0: Good morning. How are you? Very good. How are you?
1: Very good, thank you. I think this is, I'll tell you, it's a very sensitive topic.
0: Very,
1: to me.
0: Very sensitive topic.
1: मैं आपको बताती हूँ क्यों? क्योंकि मैं इंडियन भी हूँ और मैं अपने आप को अब की बीवी मांगती हूँ, ठीक है। मैं 15-16 साल से इधर अब रह रही हूँ, अब यही कंट्री है, राइट, यही देश है। अब हम कहीं जाते हैं तो हम अपना न्यूजीलैंड का पासपोर्ट दिखाते हैं, आईडी न्यूजीलैंड का है, रहते कहाँ है, यहाँ
0: दिस इज होम आल्सो ना, लाइक इन सम एस्पेक्ट
1: दिस इज होम, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। और मैं हूँ भी, मैं कहती हूँ मैं हूँ, मैं इंडियन भी हूँ, मेरी रूट्स इंडिया की है, मेरी मम अभी भी इंडिया में है, मैं बोर्न वहाँ पे हूँ।
0: आप हिंदी बात कर रहे हो,
1: वेरी प्राउड ऑफ इट, बिल्कुल, तो क्यों ना हिंदी में बात करें।
0: एग्जैक्टली, नहीं नहीं, मतलब वही है, मतलब आई एम जस्ट प्रूविंग योर पॉइंट, लाइक यू आर इंडियन आल्सो, या एग्जैक्टली, या
1: एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। सो अगर कल को न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है और उसको ऐसा रेजिस्टेंट मिले, आपको कैसा लगेगा अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लिए? ऑफकोर्स आपको बुरा लगेगा, राइट। उसने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो विजिट के लिए गया, उसने कुछ वहां जाके उखाड़ लिया, उसने कुछ वहां जाके किसी को कुछ बदतमीजी से कह दिया, कुछ बोल दिया। हाउ वुड यू फील अगर आपके प्राइम मिनिस्टर को ऐसा रेजिस्टेंस दिया जाए? आई एम नॉट अ मोदी फैन, मैं पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करती, पर वो आया तो मेरी कंट्री से है ना, जहाँ पे मैं पैदा हुई थी।
0: एब्सोल्युटली, या
1: उसके लिए इतना रेजिस्टेंस क्यों? आपको नहीं पसंद है, आपको हर नेशनैलिटी को पसंद करना जरूरी नहीं है, यू डोंट हैव टू बी फ्रेंड्स विद एवरीवन। बट अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत बोलो और अपना मुंह बंद रखो।
0: बट ये तो एक आइडियल वर्ल्ड में होगा ना, आइडियल वर्ल्ड में तो रह रहे नहीं है।
1: देखो, आइडियल बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब हम तो, हम इंडिया, हमारी इंडियन कम्युनिटी ऐसी है, मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा इंडियन होगा जो कल को कहीं जाके बोलेगा कि भाई मैं आपकी गवर्नमेंट को नहीं मानता या मैं आपकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। अब हमने पीछे माचारी की सेलिब्रेट करा ऑफिस में, हम चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, मेरा फेस्टिवल तो नहीं है, पर मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं फॉलो करती हूँ क्योंकि वो दिवाली फॉलो करते हैं,
0: राइट।
1: ये तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ना। सो इसीलिए मेरे हिसाब से कि रेजिस्टेंट होना ही नहीं चाहिए। आपको नहीं पसंद है, आप मत जाओ, आप न्यूज पे देखो, आप चैनल बदल दो, मैं तो कई बार यही करती हूँ, मुझे कुछ नहीं पसंद आता मैं तो चैनल बदल देती हूँ।
0: लेकिन तो फिर ये बात से मैं अग्री करता हूँ कि ये तो सही बात बोल रहे हो आप कि अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है आप चैनल बदल लो, लेकिन फिर यही जगह पे फिर ये जो प्रिंसिपल है ये हर जगह नहीं अप्लाई होता ना। लाइक फॉर एग्जांपल बीच में स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर काफ़ी आलोचना आए थे कि यू नो ये संस्कृति को भंग कर रहे, जो भी ये सारी चीज़ें आ रही थी, तो वहाँ पे भी फिर यही लॉजिक यूज़ हो सकता था कि भाई चैनल बदल लो मत देखो, बट फिर वहाँ पे फिर बच्चे अफेक्ट हो रहे थे, वहाँ पे वो सारी रैशनल आ रहे थे कि हमारे बच्चे गलत तरीके से प्रभावित हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं।
1: Absolutely. In respect for up to a certain point, I think we as adults are responsible for what we put out there in front of our kids and how do we, I think, project it. My son is 11 years old. He'll be 12 years old this year. And according to me, agar koi aisi cheez sunta hai ya usko lagta hai ki ye galat hai, to we sit and have a discussion about it. Kyun galat hai? Aapko kyun nahi ye words use karne hai? Aur isse kya hoga? Wo as a parent आपको देखना है कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हो। मैं हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकती है, ना आई एग्री ऑन दैट, पर जो मेरे कंट्रोल में है वो तो मेरे कंट्रोल में है।
0: राइट,
1: आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू नॉट, वेदर इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट हाउ यू प्रोजेक्ट योर डे इन दैट वेदर इज इन योर कंट्रोल।
0: या यू कैरी एन अम्ब्रेला विद यू और नॉट इज इन योर कंट्रोल। या परफेक्ट,
1: इज इन योर कंट्रोल।
0: या
1: ठीक है ना, तो अगर आपको बारिश नहीं पसंद है तो आप बाहर मत निकलो, निकलना है तो छाता लेके निकलो। अब उसके लिए क्राई करने का क्या फायदा है कि बारिश हो रही है मेरा काम रुक गया? काम नहीं रुकेगा, काम तो चलते रहेंगे। तो ये तो आपकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे हो गया ना।
0: लेकिन फिर ऐसा भी, अगर इसको हम एक अलग इसमें देखें कि बारिश हो रही है, बारिश के कारण, बारिश आपको क्यों नहीं पसंद? बारिश आपको इसलिए नहीं पसंद क्योंकि बारिश के कारण रस्तों पे कीचड़ हो जा रहा है और कीचड़ में आपको चलना नहीं पसंद, और अब आप इस बात से विरोध कर रहे हो कि यार बारिश हो रही है, यहाँ पे कीचड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सफाई होनी चाहिए, और
1: तो अब
0: उस
1: तो,
0: बात पे
1: तो
0: नहीं नहीं नहीं तो यही होता है ना कि पॉइंट ये है कि विरोध किस बात का हो रहा है? विरोध उस बात का हो रहा है कि बारिश हो रही है, या विरोध उस बात का हो रहा है कि नहीं बारिश तो हो रही है, बारिश होने दो कोई बात नहीं, लेकिन जो कीचड़ है एटलीस्ट वो कीचड़ तो मत रखो, होने दो ना वहाँ पे। आई थिंक दैट इज वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या विरोध का पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों हो रहा है विरोध, और काफी बार उसको भी अलग तरीके से कन्वे किया जाता है। But thank you so much.
1: I think it's an energy. Yeah, no problem. No worries. No worries.
0: Thank you. Sorry, मैं इनका भी बात इनसे भी कर लेता हूँ, ये भी रुके काफी टाइम से। हाय, आपका भी स्वागत है।
2: Hello.
0: जी, हाय, नमस्कार।
2: Hi. So आपने बहुत interesting topic share किया है, and I would like to say कि what we're seeing when Modi ji is traveling across different countries is a larger normalization of, you know, being against a certain race. I think especially in New Zealand mein ye problem Indians ya kisi particular race ki wajah se nahi hai. I think ye problem isliye hai kyunki New Zealand ne apne economy ko mismanage kisi tarah kiya, ya strategically unhone they didn't apply better rules towards say immigration or economy or housing, and uski wajah se they need people to come in, but yet within their own population there lies like a resistance towards the people who are coming in, who are the people who actually abide by all their laws, pay all of their taxes, work hard towards, you know, leading a normal life here. So what I don't understand is now with how, like, I agree with the previous caller that agar hamari country mein koi aur prime minister visit kare to I don't think there would be such a rude resistance against them. And is it really about Indians in general, or is the problem larger? Is it immigration? Are they unsatisfied with their own government? But of course it's a bit difficult not to take it slightly personally.
0: So aap bol rahe ho ki jo resistance hai wo aap personally le rahe ho?
2: Well, obviously, because it's directed towards a certain race of people. I mean, New Zealand has had immigrants since the 60s when the Pacifica people started coming in, then the Asian people started coming in, and now just because it's Indians, why is the finger specifically pointed towards them? I mean, and it's not just New Zealand that had these resistances.
0: But mujhe ek baat batao.
2: It also happened in Melbourne.
0: बट मुझे एक बात बताओ, ये जो रेजिस्टेंस है, आप इसको रेजिस्टेंस कैसे बोल सकते हो जब जो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन, ये खुद अपनी बाहें फैला के अगर इनवाइट कर रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और हर वहाँ पे जाके स्पीच भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग हो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द इकोनॉमी. वो एक्नॉलेज कर रहे हैं हर एक चीज़ के. उन्होंने उनके स्पीच में ये भी कहा है कि कोई भी सेक्टर ले लो, वहाँ पे बिना तुम्हारे कोई कुछ हो नहीं सकता. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है.
2: Exactly. And I have deep pride for Indians because अगर कोई एक सेक्टर है, मतलब अगर कोई एक रेस है ऑफ पीपल, वी डू गो टू डिफरेंट कंट्रीज, बट वी आर द फर्स्ट वंस टू अबाइड बाय ऑल द लॉज, वर्क एज हार्ड एज रिक्वायर्ड. सम पीपल आर वर्किंग टू जॉब्स, थ्री जॉब्स. एवरीवन जस्ट हैज अ स्मॉल ड्रीम, बाय अ फर्स्ट होम, लिव द कीवी लाइफ. सो व्हाट, एंड व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर डज एक्सेप्ट दैट, it's important to see that that may not be every single person's sentiment, and that there is a huge difference.
0: वो तो हर कोई तो मतलब नॉट ऑल फिंगर्स आर सेम, राइट? लाइक वो तो हर कोई अलग रहेगा. बट व्हेन द गवर्नमेंट इज विथ यू, लाइक व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज बैकिंग यू, देन आई थिंक व्हाट आर फोकस इज बेसिकली ऑन, आई डोंट थिंक वी शुड फोकस मच ऑन द रेजिस्टेंस.
2: तो प्राइम मिनिस्टर के ऑपोजिशन में भी पॉलिटिकल यू नो फिगर हेड्स हैं. सम ऑफ देम आर आल्सो नॉट, लाइक व्हाई वाजंट विंस्टन पीटर्स प्रेजेंट देयर,
0: इवन दो ही
2: इज द फॉरेन मिनिस्टर, बट ही डिडंट वांट टू बी.
0: बट दैट इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? यू शुड हैव पीपल विद डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिफरेंट व्यूज.
2: Exactly, but when democracy moves beyond argument to a form of hatred, then, I mean, I just don't want, like, you know, because I'm Indian, I was born in India, I came here 12 years ago, I have a child with a Kiwi, and we have a half Indian, half Kiwi boy, and I worry about him, like, you know, what will the future hold for him, and it's just something to think about, that a country where you come, where you think it's extremely peaceful, the people are extremely accommodating, that may not be the entire truth going forward in the future.
0: I don't know. I don't agree with that point, because मुझे ऐसा लगता है कि we have come way ahead now. I think it has been an historic visit. 40 years में पहली बार there's a prime minister that has come here, and not just come, but he is felicitated, he is greeted. मुझे लग रहा है कि US के prime minister को इतनी इज्जत नहीं मिली थी जितनी यहाँ पे हमारे Indian prime minister को मिली है, which is great.
2: Absolutely, and for all the right reasons. I 100%. Mean, with being the world's fastest growing economy.
0: 100%.
2: It is an advantage for this country to tie up with India.
0: And 100%. So I believe that there is that recognition, and there is that it is a better future for your children for sure in that aspect. But then looking at the other side, are we also doing justice to the land that we are at? अगर हम बोल रहे हैं कि हम hatred नहीं चाहते हैं हमारे against, क्या हम भी hatred को promote नहीं कर रहे हैं in any way? We have to ask this question to ourselves as well.
2: Because it is an important responsibility
0: for us also to make sure that we are not just being like, अरे भाई हमारे ऊपर hatred हो रहा है और फिर हम भी hatred देंगे, because an eye for an eye will make the world blind.
2: Absolutely, I completely agree with that, and that is probably where I would like to conclude, that just because we feel like there might be some level of that and we are at the receiving end of it, that is just not how we should reciprocate, because that's firstly not part of our culture, and secondly that's not the future we want for our children.
0: Absolutely. Thank you so much for participating in this discussion this morning.
2: Thank you. Very interesting topic, Rizvi.
0: Thank you. And I just want to reiterate, when we talk about Indians, or when we talk about people with Indian ethnicity, because over here, it's not just Indians that have contributed in all the sectors. It's also people jo yahan pe Fiji se aaye hai, jo yahan pe dusre parts se aaye, Nepal se aaye hai, Pakistan se aaye. I think all people with the origin, I think, have contributed a lot towards not just the economy, but also towards the culture that we have right now in New Zealand. And I think I'm very proud of that. Thank you so much for participating. Aur bhi baatein karenge aapke saath. Sunte rahiye hum.
3: Mornings made better.
4: Two frienda, char toast, butter, jam, aur ek special chai.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
6: Flooring Extra. Adore your floor.
7: Right now, many of NZ Blood's regular donors can't donate due to sickness, school holidays, and the short week. So please, come off the bench and give blood and help save up to 3 lives. Book now at nzblood.co.nz.
8: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
9: Right now, your team could be winning, sprinting, pitching, kicking, sin-binning, and you need to know about it.
10: Join the Tribe!
9: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport, in your pocket, on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
10: join the Tribe!
11: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest Flowmate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
3: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
13: What's your take?
0: Well, what's your take में अभी आज का जो टॉपिक था उसके ऊपर काफी कम टाइम था, मतलब डिस्कशन तो हो गया, लेकिन अगर आपके पास और भी कोई टेक है तो जरूर आप मैसेज कीजिएगा यहाँ पे, मैं जरूर पढ़ूंगा. 5599 पे यू कैन सेंड अस योर टेक अबाउट द टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड दिस मॉर्निंग, मतलब अभी थोड़ी देर पहले. 5599 इज द नंबर. थोड़ी देर में और भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन भाई ये तो अभी कुछ अलग ही हो रहा है. फीफा में स्पेन लीड कर रहा है 2-0. फ्रांस क्या हो गया भाई, इतनी स्ट्रांग टीम फाइनल, मतलब कप वप जीतने के प्लान्स थे, बट स्पेन आज भारी पड़ रही है इन पे. सो या स्पेन इज लीडिंग राइट नाउ 2-0.
3: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
15: Now,
3: brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नेहा कक्कड़ की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही बढ़िया सा गाना जो रिक्रिएट हुआ गया है था और अभी भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ये गाना। वेल आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया इवेंट होने वाला है ऑकलैंड में लाइव, और वो है गरबा विथ राजगढ़वी। अब ऑगस्ट का महीना जैसे ही शुरू होगा, मतलब गरबा सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट्स ऑफ इन ऑकलैंड एंड महात्मा गांधी सेंटर में सैटरडे 1st ऑगस्ट को आने वाले हैं राजगढ़वी गरबा सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ। तो जी आप भी यहाँ पर पहुँच जाइएगा। अगर आपको टिकट्स चाहिए तो eventtickets.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे, eventstickets.co.nz, या फिर आप स्वप्निल शाह को कॉल कर सकते हो 0224394736 पे। सैटरडे 1st ऑगस्ट 2026 गरबा विथ राजगढ़वी, आप ज़रूर इसका हिस्सा बनिएगा। देखो टिकट्स सोल्ड आउट हो जाती है ऐसे इवेंट्स की बहुत जल्द, तो इसलिए अभी जाइए eventstickets.co.nz एंड गेट योर टिकट्स नाउ।
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: चुप हो जाओ पापी हो, चुप हो जाओ।
3: Accurate traffic.
4: Kitchen Mania, 17th birthday.
5: Fog clearing, fine and cloudy today, a high of 17. That fog, though, has got restrictions at the airport and a number of delays to flights coming in and also a couple of cancellations. If you're driving in on the southern motorway, we've had a crash recently blocking lanes near the Ellerslie-Pamure on-ramp. It's slow from Takanini, very heavy through Mount Wellington, 48 minutes in from Monaco. Northern and northwestern, slow patches, but not too bad.
4: You could win 10K when you order your new Kitchen Mania kitchen. T's and C's apply.
6: Auckland, tayyar. हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6477.
7: Whites separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
8: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
9: अपनी विंटर को वार्म अप कीजिए विद हॉट डील्स एट लाइफस्टाइल फर्नीचर। सोफास, रिक्लाइनर्स, डाइनिंग और लिविंग रूम फर्नीचर पर पाइए मैसिव सेविंग्स। विजिट कीजिए उनके 3 ऑकलैंड स्टोर्स, मनुकाओ, वेस्टगेट या माउंट वेलिंगटन। लाइफस्टाइल फर्नीचर, स्टे इन स्टाइल।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
0: वेल करण औजला इज़ कमिंग टू आर सुपर सिटी, और करण औजला के कॉन्सर्ट के डबल पासेस आप जीत सकते हैं ओनली ऑन हम। आपको करना ये है कि आपको बस सुनते रहना है, क्योंकि कभी भी बच सकता है करण औजला का एक कोई गाना। जैसे ही वो गाना बजता है रेडियो पे, आपको यहाँ पे मैसेज करना है KA, एक साथ लिख कर भेजना है आपने KA स्पेस आपका नाम या फिर गाने का नाम, 5599 पे आपने लिख कर भेजना है। एक्चुअली गाने का नाम और फिर आपका नाम, ये दोनों आपको लिखकर भेजने हैं KA के साथ, और ये अगर आप भेजोगे तो आपका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, डबल पास जीतने का मौका आपको मिल रहा है ऑन हम। सो या स्टे ट्यून्ड, पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर होगा स्पार्क अरीना में ऑन August 25th एंड यू कैन बी देयर। हमने ये लास्ट ईयर अटेंड किया था ये शो, और अलग ही वाइब होती है भाई ये शो की, इट इज़ नेक्स्ट लेवल। इफ़ यू हैव नॉट अटेंडेड दिस शो then definitely you should check it out. और अगर आपको यहाँ पे फ्री में पास मिल रहा है तो क्या ही बात है। बट टिकट्स अगर आपको बुक करनी है तो टिकट्स भी आप जाके बुक कर सकते हैं livenation.co.nz पे या hum.rova.nz पे भी आपको इसके और डिटेल्स मिल जाएंगे. बट या करण औजला इज कमिंग टू आर सुपर सिटी ऑन द 25th August एट स्पार्क अरीना. सो या गेट योर टिकट्स सून. अभी के लिए बस सुनते रहिए क्योंकि कभी भी बच सकता है करण औजला का गाना.

0: accurate traffic.
1: Faro Kitchen Ready Meals.
2: Fine and cloudy today, a high of 17. We had a foggy start and it's impacted domestic flights into the airport with a number of delays and a few cancellations. Driving on the southern motorway, a crash near Ellerslie Panmure has been cleared of lanes. We are slow from Otahu, heading most of the way to Ellerslie, 45 minutes Manukau to town. Northwestern, 24 in from Massey, slow even heavy from Point Chev. Northern, slow from Constellation, 25 there to town.
1: Main side, soups and desserts. There's a deliciously easy Faro Kitchen Ready Meal for every occasion.
3: Smart Pay is now. Shift 4, Dakota NZ. Global commerce, local service.
4: Waiting weeks for your FPOS setup? That's lost revenue. Shift 4 gets your business up and running and taking payments in under a week. Tailor your setup from day one with flexible plans and customizable options that can bring business costs down. Make the shift today.
3: Shift 4.
5: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
6: No way.
7: We in trouble?
5: Nah, it's BP Plus.
7: What is that?
5: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
8: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
9: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
10: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
11: Please use your imagination for the following ad.
12: If I won Powerball, the first person I'd tell would be... And would surprise all our friends by...
11: Imagine winning $28 million this Wednesday. Play in store or online.
13: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
13: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
15: You're listening to Rush Hour. आज मैं हूँ आपके साथ, मेरा नाम है रुजबे. बॉलीवुड की खबरें भी आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आते हैं. आज बॉलीवुड की खबर में मैं आपको ऐसी खबर देने वाला हूँ जैसे मतलब यूजली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो डिज़र्व करते हैं उनकी खबर दूंगा मैं. तो बेसिकली हो रहा यह है कि सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर थ्री इडियट्स का वो जो कैरेक्टर ना रैंचो वो इंस्पायर था, वो धरने पर बैठे हैं, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर. एंड राइट नाउ इज़ डे 17 गोइंग ऑन. डे 17 से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, हंगर स्ट्राइक चल रही है इनकी. एंड ऐसे मौके पे ओमी वाइद्या, जो चतुर का रोल जिन्होंने प्ले किया था थ्री इडियट्स में, इन्होंने भी एक वीडियो बनाई है सोशल मीडिया पे और कहा है कि प्लीज़ इनको अभी सुन लेनी चाहिए इनकी बात. हो रहा ये है कि ये क्यों हंगर स्ट्राइक पे है, क्योंकि ये इन्होंने डिमांड किया है एक डायलॉग विद द गवर्नमेंट. और उन्होंने कहा है कि जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, इनका रेजिग्नेशन चाहिए. और वो इसलिए चाहिए क्योंकि बार बार लगातार जो पेपर्स है वो लीक हो रहे हैं, नीट के पेपर्स लीक हो रहे हैं या जो भी, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ के लिए. तो उनको एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए उसके लिए, और वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका रेजिग्नेशन चाहिए. अब इसमें नसीरुद्दीन शाह ने स्टैंड लिया है, उनकी वाइफ रत्ना पाठक शाह ने भी स्टैंड लिया है, राइटर अरुंधति रॉय ने सोशल मीडिया पे डाला है, जयति घोष इकोनॉमिस्ट है उन्होंने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, जीना तमान, उमी वाइद्या, प्रकाश राज, ये कुछ नाम है जिन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किए है इन लाइक यू नो जस्ट टू स्प्रेड सम अवेयरनेस अबाउट दिस, क्योंकि बाकी न्यूज़ चैनल्स इसको ज़्यादा कवर नहीं कर रही है. बट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आमिर खान, राजू हिरानी, ये इन लोगों से कुछ अब तक सुनाई नहीं दिया है. सो दैट्स द बॉलीवुड न्यूज़ फॉर यू टुडे.

भरे सिटी में कोई बिल्डिंग पे या कोई किसी पे इंसान पे नहीं गिरा, बिकॉज दैट वुड हैव बीन क्वाइट फेटल फॉर श्योर. बट या मे बी ये शायद ओशन से फ्लो होकर आके बीच पे आ गया है, शायद ऐसा भी हो सकता है. बट एनी वे देर वॉज समथिंग वियर दैट हैपेंड एंड आई फेल्ट लाइक शेयरिंग दिस मॉर्निंग. अभी इस घंटे आप सुनते रहना क्योंकि करण औजला के टिकट्स जीतने का मौका आपको मिल सकता है, उसका डबल पास आप जीत सकते हैं. अगर आप ने पहचान लिया जब करण औजला का कोई गाना प्ले हो रहा है, आपने बस यहाँ पे मैसेज करके लिखना है KA, गाने का नाम और आपका नाम, 5599 पे आपने लिखकर भेजना है, एंड योर नेम विल बी इन द ड्रॉ. इसके साथ साथ आपको बता दूं कि सैटरडे 18 जुलाई, इसी सैटरडे को कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर आ रहे हैं लेकर द ग्रेट कॉमेडी नाइट. इसका हिस्सा अगर आपको भी बनना है तो bookmyevent.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे. टिकट्स बुक कर लीजिए फटाफट. सैटरडे 18 जुलाई को इनका ये शो होगा एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो। मैं हूं रुस्बे आपके साथ, और इस पूरे हफ्ते मैं आपके साथ रहने वाला हूं यहां पे। बस कम्युनिटी की बातें भी आपके साथ यहां पे शेयर करते हैं। कम्युनिटी में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। फिजी गवर्नमेंट फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 2026, जो संडे 26 जुलाई को होने वाला है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें विटनेस करने का मौका मिलेगा। ये मुझे लग रहा है ये ईयरली इवेंट होता है, और लास्ट ईयर भी ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ था। इस साल ये हो रहा है A1 इवेंट सेंटर, 731 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोयोटा। सुबह 10 से 3 बजे के बीच आप जा सकते हैं, एंड इट्स फ्री फॉर एवरीवन। अगर आपको भी आपका यू नो फ्री स्क्रीनिंग कराना है, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ या किडनी ECG, आई टेस्ट भी, तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आपको कैंसर स्क्रीनिंग के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, अर्ली सिम्टम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलेगी। प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिलेगा, CPR कैसे यूज़ होता है, EpiPen, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या होती है, ईजी योगा कैसे आप कर सकते हो। सो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट्स फॉर द एंटायर फैमिली। तो आप ज़रूर यहाँ पे पहुँच जाइएगा, क्योंकि बच्चों के लिए भी वहाँ पे फन एक्टिविटीज़ रहने वाली है, जैसे कि फेस पेंटिंग होगी, कुछ थोड़ी किड्स एक्टिविटीज़ होंगी, लाइट रिफ्रेशमेंट्स भी मिलेंगे आपको। And yeah, there's definitely a lot of hampers and giveaways for you. So, iska aap hissa ban sakte hain. Iske saath saath New Zealand Carrom Association aapko invite kar rahe hai for 4th New Zealand Carrom Tournament. Ye hone wala hai 22nd aur 23rd August at Birkenhead Scouts Hall. Idhar bhi aap pahunch sakte hain, aur yahan pe har ek level, skill level jo players hai, unko invite kar rahe hai New Zealand Carrom Association. Unka Facebook page bhi aap check out kijiye, ya fir aap Pankaj Monga ko call kar sakte ho 021 090 85067 पे।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, देखो हम आ गए।
5: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real, और conversations होते हैं बिना mask के।
6: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
2: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
7: And it's looking ugly out there on the roads with severe delays on all motorways into the city.
8: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and grab a barista-made coffee in minutes. The perfect traffic jam remedy at BP.
9: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in-store and online. Beds R Us, Medi-Cal and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
10: It's easy to see signage as a cost. The smart businesses see it as leverage. A clean, professional sign can bring in new customers every single day. If one extra job covers the investment, everything after that is upside. Speedy Signs design signage that builds credibility and drives action without ongoing fees. Ready for signage that pulls its weight? Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
11: What if your next holiday wasn't just a holiday,
12: but the adventure everyone talks about?
11: Imagine chasing waterfalls,
12: wandering lush rice terraces,
11: catching unforgettable sunsets,
12: and relaxing at iconic beach clubs.
11: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
12: discovering incredible temples,
11: tasting world-famous street food.
12: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
13: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
14: आपके सामने एक रेड बटन है,
15: दबा दिया,
14: नहीं दबाना था।
16: The Madness is back, धमाल 4.
17: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
16: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी. Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार.
18: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
16: वो Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
4: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: आप सुन रहे हैं हम ब्रेकफास्ट शो आपके लिए जारी है और वैसे हमारे पॉडकास्ट अगर आपने अब तक चेकआउट नहीं किए हैं तो हमारे पॉडकास्ट आप जरूर चेकआउट कीजिए. अनफिल्टर्ड पे हमने रिसेंटली बात की है अबाउट ब्रेकिंग बैरियर्स. हमने शनील लाल के साथ बात की है अबाउट LGBTQ+ राइट्स, रेसिज्म के अराउंड थोड़ी बात हुई है, रिप्रेजेंटेशन एंड सर्च फॉर इक्वालिटी. शनील लाल एक बहुत ही उनको एक्चुअली यंग न्यूजीलैंडर का अवार्ड भी मिला था 2023 में और ये झिझकते नहीं है, मतलब टू हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन. अभी भी रिसेंटली कुछ न्यूज़ में काफ़ी चर्चे में है ये. इनके मन की बात जो होती है ये कह देते हैं खुल के. हाँ, मन की बात ये भी करते हैं. बढ़िया. एनीवे, एक ऑनेस्ट एंड आई ओपनिंग कॉन्वर्जेशन अगर आपको सुनना है अबाउट आइडेंटिटी, एक्सेप्टेंस एंड द राइट टू बी योर सेल्फ, देन आप जरूर ट्यून इन कीजिएगा. ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे, आपको पूरा ऑडियो वहाँ पे फुल ऑडियो मिल जाएगा. ड्राइव ऑन 5599. वैसे ड्राइव आप जब लिखकर भेजोगे ना तो आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेगी. एक तो हमारा पॉडकास्ट का लिंक मिल जाएगा, एक और एक आपको लिंक मिलेगा, वो है हमारा फॉर्म वाला लिंक जहाँ पे आपको अगर आना है हमारे साथ बाली और बैंकॉक तो वो भी आप कर सकते हो. सो बेसिकली सैंडी और मैं, हम ड्राइव शो होस्ट है और हम जा रहे हैं बाली और बैंकॉक अगले ईस्टर, विच इज़ मार्च 2027. और ये फन ट्रिप में अगर आपको भी शामिल होना है, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, देन ड्राइव जब आप लिखकर भेजोगे आपको एक फॉर्म का लिंक भी मिलेगा. उस गूगल फॉर्म पे आपको बस आपके डिटेल्स फिलअप करने हैं एंड वी विल गेट इन टच विथ यू. एंड एक्चुअली अनिल फ्रॉम संतोष विल गेट इन टच विथ यू and we'll tell you about the pricing, the package and everything that's included with it. Agar aapko aana hai hamare sath to zarur aiyega, maza aayega, for sure maza aayega. Bas drive likhkar bhejna hai aapne 5599 pe. Agar aap Vijay aur Pooja ki aawaz miss kar rahe ho aur agar aapko unke kuch conversations ko sunna hai to aap BF likhkar bhejiye 5599 pe, wahan pe aapko unke podcast ka link bhi mil jayega. To BF on 5599. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो वेरी टैलेंटेड केतन है, जो एक बढ़िया से सिंगर भी है और एडिटर भी है, वीडियोग्राफर भी है, इन्होंने एक नया गाना अपना खुद का बनाया है, सफ़ायर 2.0, गिविंग ट्रिब्यूट टू एड शेरन एंड अरिजीत सफ़ायर. लेकिन इसको थोड़ा न्यूजीलैंड के अंदाज में इन्होंने क्रिएट किया है और इन मनप्रीत ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, जिन्होंने पापा टोई टोई गाना भी बनाया था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था. सो या दिस ट्रैक इज़ आउट नाउ. इसका वीडियो बहुत कमाल है, मैंने खुद ने इसके वीडियो को आई थिंक 10 बार देखा होगा क्योंकि मज़ेदार वीडियो है. तो इसके वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो एंड इसको थोड़ा प्यार दीजिए यार, ज़रूरत है, बहुत मेहनत की है बंदे ने. सो या केतन का ये जो वीडियो है इसको आप चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब पे या आप ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे इसका गाना भी सुन सकते हो.
0: Bollywood's most wanted.
3: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ.
4: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 104.2 FM और सिटी ऑकलैंड सिटी के आसपास अगर आप हैं तो 87.7 FM पे भी आपको सुनने का मौका मिलेगा. हम तो ट्राई कीजिएगा अगर अब तक आपने ट्राई नहीं किया है. और रोवा ऐप से तो काफ़ी लोग हमें सुनते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड बट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. सो वेलकम टू द शो. मैं रुजबे आपके साथ आज हूँ ब्रेकफास्ट शो में और पूरे हफ्ते मैं ही रहूँगा आपके साथ. यहाँ पे बॉलीवुड की खबरें भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा. तो अल्फा मूवी रिलीज हुई रिसेंटली एंड ऐसा कह रहे हैं कि इतनी नहीं चली ये मूवी जितना एक्सपेक्टेड था. और अब मुझे लग रहा है बॉलीवुड में कोई भी मूवी नहीं चल रही तो उसका दोष हर कोई धुरंधर को ही दे रहा है कि धुरंधर जैसी कमाल नहीं है मूवी, क्योंकि एक बेंचमार्क सेट हो गया ना धुरंधर के साथ. बट एनीवे, धुरंधर जैसी मूवी यार एक ही बनती है, या शायद दो, चलो दो पार्ट बने उसके तो. बट अल्फा ऑनेस्टली मैं भी नहीं देख पाया हूँ इस मूवी को. बट अल्फा का कलेक्शन हैज़ नॉट बीन दैट ग्रेट. अराउंड 55 to 60 crores ही उन्होंने कमाया है, विच इज़ या नॉट दैट ग्रेट. यूजुअली 100 crore क्लब होता है ना. एंड इट्स वेरी सैड यार, इट्स वेरी सैड बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि यार फीमेल लेड मूवीज़ चाहिए, फीमेल लेड मूवीज़ चाहिए. एंड अब जब फीमेल लेड मूवीज़ आई तो दो फीमेल लेड मूवीज़ एक साथ ही आ गई, एक अल्फा और दूसरी बेबी डू आई डू. बेबी डू आई डू एक छोटी मूवी थी लेकिन उसको ज़्यादा प्यार मिला, मुझे लग रहा है क्रिटिकल अक्लेम ज़्यादा मिला उस मूवी को. बट आपने कौन सी मूवी चेकआउट की? एंड अभी रिसेंटली मुझे लग रहा है अभी धमाल 4 की काफ़ी बात हो रही है. आपने क्या धमाल 4 अभी तक चेकआउट की है? और विच इज़ द लेटेस्ट मूवी दैट यू हैव वॉच्ड इन द सिनेमाज? यहाँ पे 5599 पे आप मैसेज करके मुझे जरूर बताइए.
1: Mornings made better.
2: Do frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Driving you home.
4: The drive show with Sandy and Rusby.
0: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि आज ही मेरे को जहाज मारा किसी ने.
6: वो भी आई लव यू वाला.
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दूसरी को बना रहा था बेटा.
6: अच्छा आप तो
5: आए आए बताओगे यार.
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Karanga Ahape Station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Puhinui in just 32 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
9: Now's the time to book your next tour with House of Travel. Save $500 per couple on Globus small group tours to Japan, Vietnam, South Africa and more. See the very best of every destination without the stress. Talk to our team today, only at House of Travel. TNCs apply.
10: At Woolworths, we go to great lengths to ensure only the finest quality meat makes the cut. Like our frozen lamb leg roast, bone in, just $16.99 a kg. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
11: Fresh or quality halal meat, unbeatable prices per Ali's Farm, Auckland. Aapka trusted licensed abattoir or butcher. Limited time offer. Whole goat carcass, sirf $15 per kilo. Spring lamb carcass, $17.50 per kilo. Or 30 kilo se zyada sheep carcass, sirf $12.50 per kilo. Halal certified, processed under MPI requirements or whole carcasses may available hai. Curry pieces cutting bhi available hai. T's and C's apply. Ali's Farm, 1319 Alfriston Road, Alfriston. Call 027-530-1175.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
12: What's going on?
0: You're listening to Ham playing Bollywood's biggest hits. Breakfast show aapke liye jaari hai. Vaise news ki agar baat kare to नेशनल और लेबर दोनों पार्टीज जो है ये थोड़ा अभी के लिए सफ़र कर रही है, क्योंकि पोल में इनका जो जो बाइन है वो थोड़ा कम आ रहा है। नेशनल का लोएस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट मिला है उनको जब से क्रिस्टोफर लक्सन ने चार्ज लिया है इन द लेटेस्ट पोल, एंड क्रिस हिपकिंस ने भी काफ़ी अपना जो ग्राउंड है उसको लूज़ किया है। सो अब बातें ये हो रही है कि इज़ इट टाइम टू हैव न्यू लीडर्स एंड होपफुली, जो मतलब होपफुली नहीं, ऐसा कह रहे पूछ रहे कि जो नए लीडर होंगे क्या वो नेशनल और लेबर के जो इलेक्शन के चांसेस है उनको बूस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों पार्टीज डाउन लग रही है अभी के लिए और इलेक्शन इस साल होने वाले हैं ऑन 8th of November। मुझे तो लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इतनी जो मेहनत की नेशनल ने और क्रिस्टोफर लक्सन ने ड्यूरिंग द लास्ट वीक, तो यार उस पर तो पूरा पानी फिर जाएगा यार। मुझे लगता है कि अभी अगर नेशनल नए लीडर कोई लेकर आते हैं तो इट कुड गो इधर वे। बट व्हाट डू यू थिंक, डू यू थिंक वी नीड न्यू लीडर्स नेशनल के क्रिस्टोफर लक्सन एंड लेबर के क्रिस हिपकिंस? क्या हमें नए क्रिस की ज़रूरत है, आई मीन नए लीडर्स की ज़रूरत है, नए फेसेस की ज़रूरत है, या यू थिंक इनसे काम चल जाएगा? आपका देखो आपका ही टेक होना चाहिए क्योंकि आप ही हो जो वोट करेंगे और पार्टीज़ को पावर में लेकर आएंगे। सो या टेल अस व्हाट इज़ योर थॉट्स ऑन दैट। बट या इट इज़ गोइंग टू बी, पता नहीं है, बट यूजली ऐसे लास्ट मिनट पे ही चेंजेस होते हैं ना, जब होते हैं फेस चेंजेस। लास्ट टाइम भी मुझे याद है जसिंदा के टाइम पे काफ़ी लास्ट मिनट पे काफ़ी चेंजेस हुए थे और नेशनल भी काफ़ी लास्ट मिनट पे कुछ चेंज किए थे लीडरशिप रोल्स। सो या लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स द ईयर ऑफ इलेक्शन फॉर अस हियर इन न्यूजीलैंड।

104.2 FM और रोवा ऐप के जरिए आप सुन रहे हैं हम। और देखो, आपका और मेरा सफर आज का अभी तक का यहीं तक का था। थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी ब्रेकफास्ट शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और सुनते रहिए हमारे शोज़। अभी आज आज रिटर्न आने वाली है हमारी कम्युनिटी वर्कर काशिका। काशिका इज़ गोइंग टू बी बैक आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, और उनका भी आप साथ दीजिएगा आज माय टाइम में। उसके बाद लंच बॉक्स में केतन का साथ दीजिएगा और फिर सैंडी का साथ दीजिएगा कॉफ़ी ब्रेक और ड्राइव शो में। आज वो अकेली रहेगी। बस इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। बाय।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में।
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsoras, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
7: And it's looking ugly out there on the roads with severe delays on all motorways into the city.
8: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and grab a barista-made coffee in minutes. The perfect traffic jam remedy at BP.
9: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
10: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना।
11: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
12: And award goes to Indelible Homes.
11: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
13: Kahani of Indelible Homes.

0: So the hybrid Toyota Hilux Utes.
1: Auckland Airport has lifted fog restrictions after it caused chaos for passengers this morning. Flight flights were canned and 12 others were delayed. A smoother journey's on the horizon for passengers at Queenstown Airport. Construction has started on a new heavy taxiway. Chief Executive Shane O'Hare says it'll improve efficiency.
2: Less delays because with the current runway, the aircraft land and then they have to backtrack back to the terminal. Same for takeoff, and that increases the taxi times.
1: In sport, the first FIFA World Cup semi-final on TVNZ+.
3: Spain, the European champions, will play the World Cup final.
1: Spain have outplayed France 2-0 in Dallas to book their place in the decider for the first time in 16 years. They now await the winner of tomorrow's semi-final between England and Argentina. Football updates are brought to you by Hisense.
4: Sports news.
5: Brought to you by Sona Sensar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
6: The highs of 17, overnight temperature of 8. Aaj ka forecast bataya ja raha hai low clouds ya fog. Aapko nazar aa rahe hain din waise suhana rahega. Halki hawaon ke saath saath is samay aap 10 degree temperature mehsoos kar pa rahe hain 5:24 par. Sunset bataya gaya ja raha hai.
5: Non-stop Bollywood.
7: Jo ki karte shiddat ke saath karte hain.
5: Hum. Playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
8: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
4: My Time with Kashika.
6: Namaskar and a very, very good morning to you people. Kaise hai aap? How have you been? Arey, main toh bilkul badhiya hoon. And as Ruzbe has rightly said, kuch community work karke main aayi hoon, kuch logon se toh mulaqat bhi hui thi. And it was a matter of prestige when you are actually associated with the Indian Prime Minister's event. It wasn't that a great experience. I think unka aana ek bahut bada experience tha apne aap mein. And yes, to be part and parcel of the committee and doing things was really good. जहाँ मैं मुझे लगा मैंने कम्युनिटी के लिए कुछ सेवा ज़रूर की थी तो यस टोटली एलिवेटेड टोटली ग्रेट एंड अब आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं हाँ भाई तबीयत मेरी तो ठीक ठाक ही चल रही है बहुत हेक्टिक रहा ये पूरे जितने भी दिन मैं थी थोड़ा कम्युनिटी वर्क भी किया थोड़ा अपना एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की थोड़ा सा चिल आउट भी किया अब मुझे लगता है टाइम आ चला है जहाँ मैं ईजी होके बैठूँ और आप लोगों के साथ बातचीत करूँ भाई मौसम ठंडा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका जोश ठंडा पड़ जाए क्योंकि आपका जोश जो है वो गर्मा गर्म होना चाहिए गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ कशिश फूड्स के प्रोडक्ट्स के साथ वैसे कशिश फूड्स आपके लिए माय टाइम लेकर आ जाते हैं मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के दरमियान आज थोड़ी बहुत थतम बतम होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना क्योंकि हाँ कभी 15 जुलाई हो गई आधा महीना निकल गया यानी कि 1.5 months वी आर अवे जब हम विंटर को वो करते हैं ना बाय बाय तो यही कह सकती हूँ देखो कितना पॉजिटिवली सोच रही हूँ कहाँ से सुन रहे हैं कैसे सुन रहे हैं रोबा ऐप के जरिए सुन रहे हैं या फिर आप 104.2 FM के ज़रिए सुन रहे हैं भाई हमें ज़रूर बताइए थोड़ी देर बाद हमारा साथ निभाने के लिए अशोर वान से आ जाएंगे नान अदर देन नितेश हीरा कोई सवाल हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं फिलहाल के लिए
5: बचाओ क्या
6: ऑफिस शाउट आउट के लिए 5599 पे मुझे जरूर टेक्स्ट करें

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो एक्सपर्ट अड्डा में मेरा साथ निभाने के लिए स्टूडियो लाइन पर बस अब थोड़ी ही देर बाद आने वाले हैं नितेश हीरा जी, एंड इनके साथ सवाल पूछने के लिए मेरा वक्त भी हो चला है, लेकिन लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट वी कैन डू।

0: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज में।
1: अभी तो नहीं।
2: एक्सपर्ट्स अड्डा।
3: एब्सोल्युटली एक्सपर्ट अड्डा है और यहाँ पर अशोर वन से मेरा साथ निभाने के लिए नितेश हीरा जी भी आए हैं एंड टेलीफोन लाइन पर। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम। हाउ आर यू?
4: Good morning, Kashika ji, and to all the listeners. I'm very, very good. How about you?
3: I'm doing great. And yes, I'm back from my holiday. So, iske baad fresh hoon ekdam se. Aapse baat kar li to bahut hi acha laga. Aur mere paas ek text aaya hai. To main is text ke liye aapse ek sawal poochna chahti hoon. Agar aap jawab de paaye to, I do not know. I'm sure it's your field.
4: Like always.
3: So, they've asked that could you please ask Nitesh ji, what has the risk of an health event, premature death or loss of income has to do with future financial goals of people? Matlab isko thoda sa hindi mein bhi agar aap explain kar paaye to it will be very very nice.
4: Absolutely Kashika ji, that's a very very good and important question actually. So basically wo jisne bhi ye question pucha hai wo basically puch rahe hain ki jo risk hota hai kisi bhi health event ka, jaise ki bimari, cancer, heart attack, stroke ya premature death ka, या फिर अगर किसी की इनकम लॉस हो जाए, उस रिस्क का आपके फ्यूचर फाइनेंसेस, फाइनेंशियल प्लानिंग से या फाइनेंशियल गोल से क्या कनेक्शन है या कितना वो इम्पैक्ट करते हैं? आई थिंक दैट इज द होल पॉइंट। जब आप इंश्योरेंस देखते हैं, टू अंडरस्टैंड द रिस्क इज द बिगेस्ट थिंग। अभी व्हेन आई से अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मीन्स, जो भी फैमिली है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, यंग पेरेंट्स हैं, कपल है, सिंगल पेरेंट है, जब वो लोग अपने मिड थर्टीज में होते हैं, देयर किड्स आर स्मॉल, देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद अ फैमिली, राइट? एंड एंड द लाइफ टाइम फ्रॉम द एज ऑफ 30 ऑनवर्ड्स टिल द एज ऑफ 50-55, दैट टाइम पीरियड इन एनीबडीज लाइफ, आई थिंक जर्नी, दैट्स अबाउट ग्रोथ, बिल्डिंग वेल्थ, बट ऑल्सो मेकिंग श्योर के आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस वेल्थ को फ्रॉम नॉट ओनली थिंग्स लाइक स्टॉक मार्केट, ग्लोबल क्रैशेज, वॉर, बट ऑल्सो यू हैव टू थिंक एंड प्रोटेक्ट के अगर आपका हेल्थ इवेंट, जैसे कि इस टेक्स्ट में पूछा कि किसी को इमीडिएट कैंसर डायग्नोसिस हो गया या हार्ट फेलियर हो गया एंड दे हैव टू बी हॉस्पिटलाइज, क्योंकि जब ये बीमारियां होती हैं देन द पर्सन हैज एब्सोल्युटली got to take time to recover. It could be 3 months, वो 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है कई बार, या even more. दूसरा चीज, loss of income. Loss of income means, इन बीमारियों की वजह से, obviously they are not working, that means there is a loss of income. So, in the worst case scenario is a premature death. In that age, anybody passing away is a very, very sad story for the family. Apart from obviously emotionally tragic time, it leaves a big financial impact. अगर आपकी फैमिली के ऊपर mortgage है, उनके पास बच्चों की education के लिए goals थे future में कि उनको university भेजना है, all of that when a person goes away, that leaves a big financial gap in their system. So, जब भी लोग insurance लेते हैं, and that is one thing that I try and educate. A lot of time people just think of one factor. सबसे चीप इंश्योरेंस हमें दे दो नितेश भाई, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस, बट जब वो क्लेम का टाइम आता है, वी हैव सीन जब क्लेम होता है व्हेन दे लूज जॉब, अगर उनको रिडंडेंट बना दिया गया, एंड देन दे थिंक ओह बट हमारे पास तो इंश्योरेंस है. नो, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड द रिस्क, किस चीज के लिए आपने इंश्योरेंस लिया, इट हैज टू अप्लाई. मींस अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल नॉट पे यू फॉर अ रिडंडेंसी. जस्ट सो For example, I'll give you a real case story of a person who reached out to me on Google and my Meta ad, and they were like, "Mare paas insurance tha, life cover, aur humare ko diagnose jab hua, heart attack. That was his wife basically who got a heart condition. They were under the impression ke, arey, humare paas life insurance so will be shorted, but." Eventually, they had to rely on public healthcare system because life cover does not cover you for those conditions. It covers you for death. So, what I'm trying to say is, understanding kya risk aap resume karte hain aur aapki policy kya cover karti hai, that is very, very important. Kyunki wo sara aapka financial plan, financial goals can be impacted massively with a wrong insurance policy. If you don't understand your policy, you got to talk to an advisor.
3: Absolutely.
4: If you think that you are covered, Then you should definitely check with the advisor.
3: Absolutely. And the advisor could be none other best than Nitesh Hira from Assure One, from jo inka toll free number hai 0800-77-HIRA 0800-77-HIRA. Aap inse contact kare aur bilkul puri ki puri baat cheet kare. This is my request. And aap se bahut jald phir baat cheet hogi. Thanks for joining in
4: Thank
3: today.
4: You. Thank care. You so much, Kashika.
3: Take it easy. Bye bye.
4: Thank you. Bye.

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: डू यू नो व्हाई सो मेनी ऑफ योर नेबर्स आर इंस्टॉलिंग अ शावर डोम शावर टॉप? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer. Shower.

0: At Flooring Extra, they don't just sell floors, they transform homes. From luxurious carpets to show-stopping hard flooring, you get expert advice and installers who get it right the first time. They make it effortless. Visit in-store or they'll bring the showroom to you. Measure, quote, install, done. All backed by solid warranties for total peace of mind. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
1: Flooring Extra. Adore your floor.
2: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
3: MediaWorks complaints. How can I help?
4: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
3: Thank you.
4: It's all I can think about.
3: What does it sound like?
4: Yeah, I'd rather not.
3: Go on, why don't you have a crack?
4: Okay, got a plumbing problem.
3: Oh, I need a bit more than that.
4: They've got your back.
3: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
4: Oh, okay.
5: There's no better plumber to give it a crack.
3: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
4: No, I want a plumber.
6: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
7: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
8: वैसे एक्साइटमेंट अब बिल्डअप हो चुका है क्योंकि आने वाले सैटरडे के दिन कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर ये लाइव परफॉर्म करने वाले हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट. एंड ये दो बिगेस्ट टेलीविजन के सुपरस्टार्स आपके लिए यहाँ आने वाले हैं. इमेजिन आप इन्हें टीवी पे देखते चले आ रहे हैं और अब आपके सामने इन पर्सन ये अपने विट्स को बिल्कुल दिखाने वाले हैं. सो नॉन स्टॉप लाफ्टर होगा, ज़बरदस्त लाइव परफॉर्मेंसेज इनकी होगी, एक इंटरैक्टिव ऑडियंस के साथ कुछ मोमेंट भी होने वाले हैं, एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट होगा. बहुत कम सीट्स बची हैं तो जल्दी जाइए बिफोर दे गेट सोल्ड आउट. आफ्टर पे की फैसिलिटी भी अवेलेबल है. धर्मेंद्र शाम से आप कन्फर्म कर सकते हैं, बात कर सकते हैं ट्राई विजन एंटरटेनमेंट में 2021-04-32720 पर. और 18 तारीख को ये विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है. लास्ट मिनट टिकट्स हैं, bookmyevent.co.nz के जरिए आप टिकट खरीद सकते हैं. ऑफिस शाउट आउट कमिंग अप नेक्स्ट.
9: ऑफिस शाउट आउट.
8: सो ऑफिस शाउट आउट में भाई मेरे दोस्त वेलिंगटन से, आपके बहुत से दोस्तों से मेरी ओवर द वीकेंड भी मुलाकात हुई थी. एंड यस, मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचा दिया है, शायद वो आपके कैफे में जरूर आएंगे. सो गुड मॉर्निंग काशिका जी, वेलकम बैक फ्रॉम योर हॉलीडेज. इट फील्स नाइस टू हैव यू बैक. यू वर ट्रूली मिस्ड. होप यू हैड अ ब्यूटिफुल एंड रिलैक्सिंग ब्रेक. विशिंग यू हैप्पीनेस एंड अ वंडरफुल डे अहेड. एश फ्रॉम वेलिंगटन, थैंक यू सो मच. दिस मीन्स सो मच टू मी एंड आई मिस्ड यू ऑल टू. एंड आई मिस्ड यू टू एश.
7: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: एक बात तो है कि कभी कभी कोई गलती करता है तो उसके बाद कुछ लोग माफी मांगने लग जाते हैं। ऐसे में फूड स्टफ्स जो है उनका न्यू क्लब और लॉयल्टी प्रोग्राम, उन्होंने डिस्काउंट वाउचर्स फ्यूल के भेजे हैं टू कस्टमर्स जिनको हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू द वाउचर, और फिर उनको पहले कह दिया था, डिसरिकार्ड कर दिया था। सो ओरिजिनली जो एक ईमेल गया था वहाँ पे कस्टमर से कहा गया था दे हैड शॉप्ड एट पैक एंड सेव एंड दे आर एलिजिबल फॉर अ 15 सेंट पर लीटर डिस्काउंट एंड दैट वॉज नॉट अप्लाइड टू देयर अकाउंट। तब जब इन्होंने देखा कि जब आप शॉप करते हैं पैक एंड सेव में स्कैन करते हैं अपना क्लब कार्ड ओवर द वीकेंड तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 15 सेंट्स पर जो फ्यूल का जो चार्ज है डिस्काउंट मिलता है। अनफॉर्चुनेटली दिस वॉजन्ट अप्लाइड ऑटोमेटिकली टू सम अकाउंट्स। अब ये क्या हुआ था, एक फॉलोअप ईमेल जब पहुँच गई कि एक एरर हुआ और रेसिपियंट्स को कहा गया कि सॉरी, तो दैट्स अ बिग थिंग। और उन्होंने कहा कि दे आर सॉरी अबाउट दैट 15 सेंट्स का जो फ्यूल वाउचर जो था, इट हैज़ बीन रीइश्यूड, और साथ साथ डिसरिगार्ड कीजिए पहली वाली चीज़ एंड वी वांट टू अपोलोजाइज। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जब होती हैं ना, उससे लगता है वाकई चलो कह देते हैं माफ़ किया, हुआ ना ऐसा। अच्छा, अब आपकी ड्रीम के लिए कुछ रिलेटेड है तो ज़रूर मुझे बताओ, आई विल बी वेरी वेरी कीन। And Ajay from Phuket Koe, आपने कहा we definitely miss you and saying Kashish Foods के सौजन्य से, oh thank you so much, बिल्कुल Kashish Foods के सौजन्य से काशी का आपका साथ निभा रही है my time में 10 से 12 बजे तक।

0: eat better, live better.
1: वैसे मैं जाने की बात ही करने वाली हूँ. अब ये जाने की बात इसीलिए करने वाली हूँ क्योंकि ग्लोबल सेंसेशन करण औजला जो आ रहे हैं अपने पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर को लेकर, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सर्ट्स. स्पार्क अरीना, या आई वाज देयर ऑन 11th, एंड ऑनेस्टली टू बी एट स्पार्क अरीना इज इटसेल्फ अ बिग ट्रीट. तो समझ लीजिए ये ट्रीट अब आपको हम की तरफ से मिलने वाली है, जहां पर आपको एक मौका मिलेगा करण औजला को देखने का, एंड एक स्पेशल गेस्ट उनके साथ हैं इकी, जो इनको ज्वाइन करने वाले हैं स्टेज पे. यू कांट मिस दिस आउट. ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर टिकट लेनी है आपको तो हम .nz पर आप जाके टिकट ले सकते हैं या livenation.co.nz के जरिए. नाउ अगर आपको ये टिकट जीतनी है हमारे साथ तो आप क्या कर सकते हैं. ओके, इस घंटे में कहीं पे भी हो सकता है आपको करण औजला का कोई गाना सुनाई दे. जैसे ही आपने गाना सुना आपको KA लिखना है, आपको गाने का नाम लिखना है 5599 पे, आपका चांस जो है उस समय बढ़ जाएगा. आप एक लकी विनर भी बन सकते हैं अगर आपको गाने का नाम समझ में आता है. तो बिल्कुल ध्यान से सुनते चले जाइएगा, ये कहीं पे भी मैं गाना आपके लिए बजा सकती हूँ.
0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो.

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: पॉइंट सिर्फ रोवा पर। फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
1: Right now, in midwinter with ills, chills, the short week and school holidays kicking in, many of NZ Blood's regular donors are out of the game. So if you can, please make time to give blood this week. The team would really appreciate your donation. Come off the bench and make a real impact. Your donation of blood could help save up to 3 lives. Bloody legend. Give blood, save lives. Book now at nzblood.co.nz.
2: Winter को वार्म अप कीजिए विद हॉट डील्स एट लाइफस्टाइल फर्नीचर। सोफास, रिक्लाइनर्स, डाइनिंग और लिविंग रूम फर्नीचर पर पाइए मैसिव सेविंग्स। विजिट कीजिए उनके 3 ऑकलैंड स्टोर्स, मनुकाओ, वेस्टगेट या माउंट वेलिंगटन। लाइफस्टाइल फर्नीचर, स्टे इन स्टाइल।
3: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate leaf protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
4: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
5: ये Dream Diary एक ऐसी चीज है जहां पर हमें लगता है कि कोई हमारा ड्रीम जो होता है वो कैसे कैसे पूरा हो रहा है या कैसे कैसे ड्रीम्स हमें आ रहे हैं, और कभी कभी स्पेसिफिकली आपको किसी सेलिब्रिटी के ड्रीम आने लग जाते हैं। अगर आप किसी सेलिब्रिटी को सपने में देखते हैं तो ये आप उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई इस सेलिब्रिटी के साथ मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कोई एक पुराना क्रश हो, या कभी आप किसी तरह किसी लाइफ की सिचुएशन में उनको आपने देखे हैं, आपने उनको देखा है या आप उनको मिले हैं, या करंट लाइफ में आपके लिए वो कितना एक महत्व रखते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ऑल्टरनेटली आप थोड़ा रियलिस्टिक हो सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कुछ जैसे हमें शुरू से मतलब बचपन में हमें लगता था कि एक पर्टिकुलर स्टार को मैं देखती थी, एंड आई वॉज जस्ट टोटली इन ऑ, टोटली इन लव, एंड जिस समय मैं उस बॉलीवुड के स्टार को मैं मिली, आई वॉज स्पीचलेस, मुझसे कुछ हुआ ही नहीं रहा था। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इज ही द सेम पर्सन जिनके बारे में मैं सोचती चली आ रही हूँ, जिनका पोस्टर मैंने अपने बेडरूम में लगा रखा है, या जो मैं जिनको देख के हमेशा अपने गाने बजाती हूँ या मतलब गाती हूँ या जो भी कुछ करती हूँ, ऐसा ही कुछ होता है। और एक ठीक इसी तरह से मेरे पास टेक्स्ट आया कि उन्होंने एक बहुत ही फेमस मॉडल को उन्होंने देखा। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े इनसे बहुत ज़्यादा वो ऑब्सेस थे, बट वो जब छोटे थे बचपन में उन्होंने इस मॉडल को देखा था, लेकिन सडनली वो उनके ड्रीम्स में कहाँ से वापस आ गई उनको पता नहीं। सो अगर मैं कहती हूँ आज की ज़िंदगी को लेके, मे बी जो मेरे साथ हुआ, हो सकता है वो अपने जो पिक्चर्स होती मॉडल की जो होती होंगी, शायद वो वॉल्स पर लगाते होंगे या कहीं लगाते होंगे। इन इस करेंट लाइफ शायद उनकी लाइफ में वो नहीं हुआ जो वो चाहते थे कि अरे ये उस मॉडल से मुलाकात हुई या नहीं हुई, थिंग्स लाइक दैट कुड हैपन। अब इसी तरह की बातें जो होती हैं ना, ये रिलेट करती हैं कई बार आप कहाँ किसी हद तक आगे पहुँच जाते हैं जब आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई कुड रिलेट माई सेल्फ एज वेल इस ड्रीम के लिए। लेकिन अभी मेरे पास जो टेक्स्ट आया है, इट्स रियली मेकिंग मी फील वेरी इमोशनल। आप जब लोग लिखते हैं सबके आपने मिस किया। सो गुड मॉर्निंग काशिका जी, वी फील फ्रेश आफ्टर हियरिंग लवली वॉइस, कीप एंटरटेनिंग अस, यू आर अमेजिंग एंड हम रॉक्स। Thanks, Web Fit News. Thank you so much. That means a lot to me. Thanks a ton, Ravi.

ये पर्टिकुलर सॉन्ग जो मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत कुछ रिलेट करता है विद द डायरेक्टर्स पर्सनल स्टोरी, जहाँ उन्होंने कहा था कि ही वॉज बॉर्न टू अ मुस्लिम मदर एंड उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल हाइड करके रखी थी एक हिंदू एरिया में, और उसके बाद जब उनके फादर ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ही वॉज अ हिंदू मैन, ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, ही हैड हिज ओन फैमिली, बट उनकी मदर को वो एक वो राइट नहीं दे पाए थे, लेकिन उनको ये याद था कि 1998 में जब उनकी मदर गुजर गई थी, उनकी लास्ट विश थी कि भाई उनके फादर यानी जो महेश भट्ट की मैं बात कर रही हूँ कि वो उनको आके यू नो रिकॉग्नाइज करें। तो महेश भट्ट जी के फादर ने वहाँ आकर पहली बार उनकी मांग में उस समय सिंदूर भरा, एंड यू नो इट वॉज अ मोमेंट व्हेन आई कैन से दैट इट वॉज टू लेट एज पर महेश भट्ट जी, एंड ही ब्रोट लिटरली ब्रोक डाउन। ये पब्लिकली शी वॉन्टेड हिम टू एक्सेप्ट टू गेट एक्सेप्टेड, बट ठीक है, ये कहानी बहुत खूबसूरत थी। फिल्म थी जख्म, और इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी पूजा भट्ट, उन्होंने जब इसे कैरेक्टर को अदा किया था, और जिस समय वो पर्टिकुलरली दिस सॉन्ग व्हेन दिस वॉज पिक्चराइज, आई एम वेरी श्योर आप जब देखेंगे तो आपको गाने के साथ वो इमोशंस भी अब सुनाई देने लग जाएंगे आफ्टर हियरिंग व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। सो लेट्स जस्ट हियर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक अलका याग्निक जी की आवाज़ में, जो खुद इस समय एक हेल्थ के एक फेज से गुजर रही हैं। Praying for her as well.

0: Hollywood's biggest hits.
1: तो याद रहे ऑकलैंड डांस करने के लिए तैयार हो जाए. लोटस प्रोडक्शन श्री इवेंट न्यूजीलैंड विनय मेहता प्रांची ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहे हैं गरबा विद राज गढ़वी. ये लाइव है 1st of August के दिन सैटरडे को महात्मा गांधी सेंटर में. इवेंट टिकट जो है आप ये इवेंट्स टिकट .co.nz के जरिए टिकट ले सकते हैं, नहीं तो स्वप्नील शाह से बातें करें ऑन 0224394736 पर.

0: Motorists across Queenstown are battling black ice and snow melt. The council says there's surface flooding from yesterday's warm weather on State Highway 85, and there are multiple reports of black ice around Arrowtown, Shotover Country and Lake Hayes Estate. In sports, Spain are through to the FIFA World Cup final for the first time in 16 years. They've beaten France 2-0 in Dallas. French legend Thierry Henry says the Spanish dominated.
1: We were not at it. We were not in the game, but mainly because when the Spanish team gets the ball, they don't give you the ball back.
0: The second semi-final is tomorrow morning, with England taking on defending champions Argentina. Football updates brought to you by Hisense.
2: Sports news
3: brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
4: Hum par shok suchnaye aap tak late hai, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
5: सूचित किया जाता है कि नानुकू राकी राकी फिजी के स्वर्गीय श्रीमान श्रीमती सन्यासी रामलू की पुत्री मानोरिवा के परमल नायडू की पत्नी ऑकलैंड इलेक्ट्रिकल सेल्स एंड सप्लाईज के डायरेक्टर मानोरिवा के शनील नायडू और पापाटोई के रेशमा गौंदर की मां मानोरिवा की सविता नायडू की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे मैनेकॉम मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0223946895 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने. नानुकू राकी राकी फिजी के स्वर्गीय श्रीमान श्रीमती सन्यासी रामलू की पुत्री मानोरिवा के परमल नायडू की पत्नी ऑकलैंड इलेक्ट्रिकल सेल्स एंड सप्लाईज के डायरेक्टर मानोरिवा के शनील नायडू और पापाटोई की रेशमा नगाउंदर की माँ मानोरिवा की सविता नायडू की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे मैनेकॉम मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए 0223946895 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचित किया जाता है कि देवीना देवीन और राकेश लाल के पिता सावित्री लाल के पति तुरक सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी शर्ली रोड पापाटोई के छगन लाल की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसेट क्रिमेशंस में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 0210271315 पर आप संपर्क करें. सूचना दोबारा सुने. देवीना देविन और राकेश लाल के पिता सावित्री लाल के पति तुरक सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी शर्ली रोड पापाटोई के छगन लाल की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 0210271315 पर आप संपर्क करें.
4: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.

and a very very good morning to you people. How are you? Studio ke ghade mein 11:05 hone wale hain as I speak. And aap sab log kaise hain? Kashish Foods ke saujanya se aapke liye my time lekar main Kashika 12 baje tak aapka saath nibhane wali hu, hum karne wali hu aur saath saath aapko dher sari baatein bhi batane wali hu. Ab bhai in baaton mein ek baat to aur hai, sabse important hai that aapka मुझे कोई 6-word स्टोरी बताइए और साथ में अगर आपको कुछ यू नो रिसाइकल मी रीयूज मी कुछ पता है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. इधर उधर की बातें कुछ गॉसिप वॉसिप अरे ये भी बातें करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. मगर मुझे इम्पॉर्टेंट बात आपसे एक करनी है. साइकोलॉजी के हिसाब से जो लोग लेट सोते हैं उनकी कुछ यूनिक ट्रेट्स होती हैं. क्या आप जानते हैं उन ट्रेट्स के बारे में? वैसे मैंने पता लगाया और सोचा कि चलो मैं कुछ इन बातों को करती हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने वो एक्सपीरियंस खुद किया. लेट नाइट करके मेरी क्रिएटिविटी किस लेवल पर जाती है, आई वॉज ट्राइंग दैट आउट एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, यही सोचा मैंने कि आपके साथ इसे ज़रूर शेयर कर सकती हूँ. अच्छा, पिछले घंटे में मैंने आपसे कहा था कि अगर करण औजला का कोई गाना बजे आपको उस गाने को बताना है और आइडेंटिफाई करना

है के ए लिखना है तो आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड करूंगी। सो नॉर्थ शोर से अनुराधा, आप सुन रही हैं बिल्कुल सही जवाब। टेल मी इज द सॉन्ग, इट ब्यूटिफुल सॉन्ग। नीलेश आपका भी आंसर सही है, अजय आपका भी आंसर सही है, आपका नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर लिया है। बचाओ क्या?

0: Eat better, live better.
1: Eat better, live better, but what is your productivity? How better is it? How better does it get? वैसे psychology ये कहता है कि जो लोग जो late night तक सोते हैं उनकी बड़ी unique traits होती हैं और ये इनकी जो creativity होती है बहुत हद तक बढ़ती चली जाती है. अगर आपको पता है कोई रात के समय light on कर देता है और आप सोचते हैं oh my god what is this, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो idea शायद उस समय उनके best मोमेंट्स जो होते हैं वो निकल कर आते हैं. अगर आप नाइट आउल हैं तो आपको लगता है कि एनर्जी जो पीक लेवल पर होती है इन द लेट नाइट रादर देन द मॉर्निंग. कभी कभी मेंटली आप अलाइव होते हैं जब दुनिया क्वाइट होती है, जब दुनिया सो रही होती है. अर्ली बेड टाइम अगर आपका होता है वो आपको फोर्स करता है, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, सो नहीं पाते. लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो चाहते हैं उनकी रात की नींद इंटरप्ट ना हो और वो सोशल एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. बट एक बात बताऊँ, अगर आप इसे अपसाइड डाउन देखें, जो नाइट आउल इनको इसलिए कहूँगी क्योंकि वो रात के समय थिंकिंग कैप्स अपना पुट ऑन कर लेते हैं, और ऐसे में अगर मैं कहूँ ये इनके पास ज़्यादा स्पेस मिल जाती है इनको क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, कुछ आइडियाज़ इनके और बढ़ते चले जाते हैं. ये कुछ एक इमेजिनेटिव थिंग्स जो होती है, चाहे वो आर्ट, राइटिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग या क्रिएटिविटी से कंसर्न होती हैं, वो ज़्यादा निकल कर आती है. कुछ राइटर्स, कुछ डिज़ाइनर्स, कुछ फाउंडर्स ओरिजिनल काम जब करने शुरू करते हैं तब वो रात के समय करने शुरू करते हैं, और इनका माइंड जो है स्लाइटली ऑफ द रेल होता है, हल्का भी होता है. नाइट आउल्स जो होते हैं इनकी रिलेशनशिप के गोल्स, इनके खुद के पर्सनल गोल्स जो होते हैं इन्हें बिल्कुल पता होता है. इनको पता है कि इनकी पर्सनल ग्रोथ कहाँ से शुरू होती है. आप क्या अपने आप को इससे रिलेट कर पाते हैं? वैसे कभी कभी ओवर टाइम आप लैक ऑफ स्लीप के साथ साथ लगता है मेंटल प्रोसेसिंग कम होनी शुरू हो जाती है, और सडनली आप उन लोगों से कहें ना अरे तुम चेंज करो अपना रूटीन, ये करो वो करो ये करो, तो उस समय आप उनके डिसीशंस में बाधा डाल रहे हैं. आप नोटिस करेंगे जिस समय वो बात कर रहे हैं उनके लिए हर एक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, वो उनको फोकसिंग करने में प्रॉब्लम होती है और ये छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज इनको एक मेंटल बफर नहीं मिला था. अगर ये डिसीशंस आप इन पर ही छोड़ दें, हो सकता है नाइट आउल्स जो हैं रात के समय अच्छे डिसीशंस लें. सी आई एम एक्चुअली, अगर आप देखा जाए, मैं आप लोगों को सबको बढ़ावा दे रही हूँ जो नाइट आउल्स हैं, क्योंकि मैंने खुद अभी पिछले 10 दिन में जब काम जितना भी किया कम्युनिटी के लिए उस समय मेरी क्रिएटिविटी भी रात के समय ही निकल कर आती थी. एंड दैट्स व्हेन आई रियली थॉट मैन का एक रूटीन है कि रात को 9:30-10 बजे लाइट्स ऑफ करो, सो जाओ, ये करो. बट द लास्ट 10 डेज एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्रिएटिविटी लेवल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे. आई कुड टेक डिसीजंस, आई कुड डू थिंग्स, आई कुड एक्चुअली वर्क ऑन थिंग्स. मेरा नर्वस सिस्टम मेरे को काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो चुका था उस समय, एंड आई फेल्ट वेरी ब्रिलियंट वर्किंग एट दैट आवर. हाँ, डेफिनेटली आई एम नॉट गोना कंटिन्यू डूइंग दैट, बट हाँ, एक लिमिट के लिए मैंने अपने आप को वो कर लिया, खुद को कर्फ्यू लगा दिया कि ठीक है भाई, इंस्टेड ऑफ बेड टाइम लेट मी गेट अप and go close to somewhere 12 o'clock, 1 o'clock aur kaam karo, and I respect that, but maine apni boundary nahi chhodi kyunki 2 din se I'm trying to struggle to come back to my normal self and I have managed somehow. I can only say night owls are not wrong. Inki strength jo hai, inka structure jo hai, bina strain ke inhe karne dijiye. Ek mind jo creativity ki richness lekar aata hai wo ek apne aap mein steady rehta hai. क्लियर डिसीजन विंडोज होती हैं इनके पास, इनको लिमिट मत कीजिए. दैट्स व्हाट वुड आई वुड लाइक टू ऐड. 6-word story. ओहो, आ चुकी ऑलरेडी, क्या बात है.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.
3: अरे बबीता, टाइम के यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
6: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support, and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
7: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.in से.
8: करण औजला ब्रिंग्स हिज पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू न्यूजीलैंड. ऑकलैंड स्पार्क अरेना दिस ऑगस्ट. टिकट्स एट livenation.co.nz. डोंट मिस करण औजला.

0: The Meat Box delivers restaurant quality meat right to your door. And in July, all purchases go in the draw to win free meat for a year. That's a prize worth over $5,000. T's and C's apply.
1: TheMeatBox.co.nz. Fresh meat delivered fresh to your door.
2: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
3: हाँ, अच्छा?
2: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं.
3: Mrs. Singh.
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
6: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
7: तो आज की सिक्स वर्ड स्टोरी भी मुझे भी बहुत अच्छी लगी. एंड 0003, आई थिंक आप अजय हैं, पुकेकोए से, इफ आई रिमेंबर, या अजय फ्रॉम पुकेकोए. तो आपने लिख के भेजा, उसने रोका उसने टोका मैंने सीखा, उसने रोका उसने टोका मैंने सीखा. आई लव इट. एक्चुअली हम ये हमेशा बात जो होती है इसी तरह से सीखते हैं, इसी तरह से करते हैं. वैसे मैंने जो था, जो मैंने बताया ना, मैं लेट नाइट काफ़ी काम कर रही थी पिछले कुछ दिनों में, तो मेरे साथ कुछ हुआ, तो मैंने उसी समय एक सिक्स वर्ड स्टोरी अपनी टेक्स्ट पे डाल दी थी, द डोर ओपन इट सेल्फ लास्ट नाइट. एक्चुअली ये मेरे साथ हुआ, तो मैं काम कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया. भाई साहब, मैंने तो पूरी घर की लाइट्स ऑन कर दी. मैं कहा, कौन है? अब पता नहीं वो कैसे दरवाज़ा खुल गया, बट उसके बाद मुझसे काम नहीं हो पाया, थोड़ा सा डर गई थी मैं. बट या आई रोट दैट माई सेल्फ. उससे मैं कहा, द डोर ओपन इट सेल्फ लास्ट नाइट, और मुझे खुद नहीं पता वो डोर कैसे खुला, कहाँ से खुला. या तो पंगा लिया या किसी ने प्रैंक की घर में, आई हैव नो आइडिया. मगर आज तक किसी ने इस बात को ओन नहीं किया. बट येस, दिस वॉज माई स्टोरी एंड आई लव्ड वॉट यू सेड, उसने रोका उसने टोका मैंने सीखा. वैसे एक बात बता देती हूँ आपको, मैं कुछ बताना चाहती हूँ. लेजेंडरी राहत फतेह अली खान हमारे ऑकलैंड में दोबारा आ रहे हैं. इनकी टाइमलेस हिट्स, कव्वाली, इनके सूफी अंदाज आप मिस आउट नहीं करना चाहते. ट्रस्ट अरीना में 25 जुलाई को ये परफॉर्म करने वाले हैं. dryTickets.com के जरिए आप ये टिकट्स खरीद सकते हैं. JK Star Productions, Goat Live, Dreams Entertainment, Simran Productions एंड शहजादा Productions की ये प्रस्तुति है.
6: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: So, yes, Spain ka second World Cup final hoga, and they're on their way to visit the big show. Back in 2010, I think they went the whole distance. जहाँ पर ये इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था. बट अगर जूड ब्लेमिंगहम जो है, ही कैन पुल ऑफ मोर हेरोइक्स अगेंस्ट अर्जेंटीना टुमारो मॉर्निंग, देन इट विल ऑल्सो बी इंग्लैंड सेकेंड ट्रिप टू द वर्ल्ड कप फाइनल. अगर आपको पता नहीं, वैसे इफ़ यू हैव नॉट हर्ड द दैट दे हैड वन इन 1966 एज पर द रिकॉर्ड ऑफ हेरल्ड.

0: सका।
1: वाह,
2: हाँ।
1: अद्भुत।
3: वैसे बात तो अद्भुत ये है कि जब आप हम तक पहुंचाते हैं अपने कम्युनिटी के इवेंट्स, तो 5599 पे तो टेक्स्ट नहीं करना, उस समय buzz@hamfm.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं अगर आप का इवेंट बिल्कुल फ्री है। सो न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए 8 अगस्त के दिन लेकर आने वाले हैं द डिवाइन रामलीला। इसके साथ साथ आप के लिए अखंड रामायण पाठ श्री राम मंदिर जो है 1 और 2 अगस्त के दिन करने वाले हैं। आप सुबह 7 बजे से वहां पे पहुंच सकते हैं। सैटरडे संडे का ये आयोजन है, महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया है। हेल्थ वेलबींग एक्सपो जो है फिजी गिरमिट फाउंडेशन एंड एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसेट क्रिमेशंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं 26 जुलाई के दिन एट द AI इवेंट सेंटर, और सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर आप बिल्कुल पहुँच सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको एक कम्युनिटी 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट में इनवाइट करना चाहती है ऑन द 22nd एंड द 23rd एट द बर्कनहेड साउथ स्काउट्स हॉल में। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 021-090-8506 पर 85067 पर संपर्क कर सकते हैं।
2: Keep calm because Punjabi swag is on.
4: Hey, hey, maajdiye, moombatti hai, pehle dino tere utte akh rakhiye, tere bina area ch, aur kudi da, na dil mangiye te

इसके पहले मैं थ्रोबैक में पहुंचू, वैसे एक थ्रोबैक बात यह है कि हेरिटेज लिस्टेड बिल्डिंग, उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये ऑकलैंड की क्वीन स्ट्रीट में मैकडोनल्ड्स हुआ करती थी, और ऐसे में ये एक रेस्टोरेंट था और 19th सेंचुरी में ये हुआ करता था, लेकिन यहाँ रिडेवलपमेंट होके 32 लेवल की स्टूडेंट अकोमोडेशन टावर बनकर आ रही है। चलिए खबर तो आप तक मैंने पहुँचा ही दी है, लेकिन इसी के साथ साथ इसी सैटरडे के दिन होने वाला है नन अदर देन कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर की द ग्रेट कॉमेडी नाइट। आपने इसकी टिकट नहीं ली तो 18 जुलाई को यह है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में, bookmyevent.co.nz के जरिए आप टिकट खरीद सकते हैं।

0: कितना ब्यूटीफुल ट्रैक था। चलिए इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है हम पर। आपसे मेरी मुलाकात होगी, दिन कल कहलाएगा गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार। अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा, आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस आए हैं, उसके लिए आई एम ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। क्या करें, दिल आप के पास ही है मेरा, तो जब आपके साथ बात करती हूँ तो बहुत मजा आता है। चलिए कल मिलती हूँ। दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ।
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Danny didn't think he needed a DVS system.
2: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
1: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
2: Nah, only one room. It was just too noisy.
1: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: Max is the all-killer, no-filler.
4: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
3: Exactly.
4: Right, we'll see. What are they called?
3: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another. And then there's Friends, The Big Bang Theory.
4: Whoa, okay, I get it. Fair call.
3: HBO Max, all-killer, no-filler. Stream now.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
6: Parents, I see you. You need to make a quick pop to the shops, then boom! One kid has a last-minute birthday invite, another kid has gum in their hair, and you've got work calls up the wazoo. That quick trip to the shops? Not happening. Don't go out. Tap in. Get Prezi's cards and hair stuff from the warehouse and dinner from your local delivered to your door with DoorDash. Now that's a good call. Dash!
7: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश हीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज़ द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800-77 हीरा नॉर्थ एंड वेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइस provider.
8: हम टाइम चेक
9: टाइम हो चुका है दिन के ठीक 12।
8: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
10: Good afternoon. I'm Heather McCarron with the latest at 12. Around 60 jobs are set to be lost in the far north, with confirmation a large timber mill is shutting down. The Workers' First Union says Juukan will close by mid-August. Union organiser Marcus Coverdale says they processed the final batch of logs last week.
11: Those that stay on will probably have some clean-up jobs to do, but for the majority of them, they'll be made redundant by the end of next week.
10: Emergency services are at the scene of a crash between a bus and a car near Cadrona. Police were called out to the Crown Range Road just after 10 this morning. One occupant in the car is said to have serious injuries. Motorists should expect delays. Women are being urged to avoid social media exercise tips. Otago University researchers are concerned that claims are not evidence-based, especially around protein needs. Co-author Professor Catherine Black says it's damaging.
12: The big thing for women is to see what works for them. If they're exercising for health, they probably don't